0: किंतु आंख हमको घसीट करके ले जाती, कान हम जहां लगाना चाहते वहां नहीं लगता किंतु कान हमको घसीट ले जाता, मन जहां हम लगाना चाहते वहां नहीं लगता किंतु मन को हमको घसीट ले जाता। ये नियम है। तो ये क्या है? ये तो शत्रु। तो संकेत किया और इसको कबीर दास ने तो बड़ी सरल भाषा में लिख दिया। कबीर ने क्या लिखा? उन्होंने पद ही बना दिया। उन्होंने कहा, यतन बिन मृगनन खेत उजारे, तारे नाही तरत निशवासर, बिडरत नहीं बिडारे, यतन बिन मृगनन खेत। अपने अपने रस के लोभी, कर्तव्य न्यारे न्यारे, यतन बिन मृगनन खेत। क्या संकेत किया उन्होंने भी? ये इंद्रियों को ही मृग शब्द सीखा। ये जो है इन्होंने क्या है, हैं? तो भगवान ने जो कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्ति, यही खेत है। इसमें हम चाहें तो सुंदर फसल पैदा कर सकते हैं, और इसीलिए इसकी दुर्लभता भी बतला दी गई कि बड़ा दुर्लभ है, हैं? तो ये संकेत करते हुए वहां भी उन्होंने कहा, अपने अपने रस के लोग, आंख जो है क्या उसका आहार है? तो रूप को देखती। कान का क्या आहार है? का शब्द। नाज का क्या क्या आहार है? का सुगंध। और यहां इनको देखती है तो वहां हमको खींच ले जाती। हम जहां आंख को लगाना चाहते हैं वहां आंख जाती नहीं है। बोलते तो है हम लोग, शास्त्र कहता भी है, आंख वही है, अनूप जलोठा ने भी कह दिया है, आंख वही जो भगवान का दर्शन, पे हैं सुख कान सुने बतियां, फल लोचन आफन तो लहे। तुलसीदास ने भी लिखा, कानों की सार्थकता क्या है? जो सुंदर कथा सुन। और इस बात को संत कुमार के विषय में लो तो तुलसीदास ने क्या लिखा? तुलसीदास ने लिखा कि ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखे बालक बहु काली। तो बालक भाई, ये नियम है, शरीर की अवस्था में परिवर्तन होगा। शरीर कभी बालक नहीं रह सकता, लेकिन वो बालकपना क्या है? किसको संकेत किया वहां? देखे बहुकालीन, बहुकाल पर्यंत, अर्थात मने उनके अंतर्गत वो बाल्य भाव था, इसलिए वो बाल्य भाव में स्थित थे, इसलिए उन्हें बालक शब्द से कहा। तो क्यों थे? तो सदा ब्रह्म के आनंद में ही आनंदायत थे। तो ब्रह्मानंद सदा लैलीन, देखे बालक बहुकालीन। और क्या कहा? रूप धरे जन चारियो वेदा, समदर्शी मुनि विगत। ये है समत्व दृष्टि, है पढ़ते हैं गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सुपाके च पंडितः समदर्शना। तो वो सम क्या? सम का मतलब बराबर नहीं। और आज हमारे समाज में जो उपद्रव हो रहा वो क्यों? उस सम शब्द का अर्थ क्या है? उस सम शब्द का अर्थ बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी उपाधि कभी सम नहीं हो सकती, किंतु उस उपाधि में एक समता बैठी हुई, उस पर हमारी दृष्टि जाती नहीं। वही पंखा है, क्या करता है? वायु देता है। बल्ब क्या करता है? प्रकाश देता है। लेकिन बल्ब और पंखे को हम बराबर कहना चाहें, सम कहना चाहें, ये कभी हो ही नहीं। आंख भी एक बल्ब है ना? और नासिका से प्राणवायु आती है, पंखा ही समझ लो। कान जो है शब्द को ग्रहण करने वाला, आप ट्रांजिस्टर टीवी आदि समझ लो, और जो है ये सारी क्रिया। लेकिन इनमें समता नहीं है, विषमता भी, लेकिन समता भी है। वो समता क्या है? इनके अंदर जो भी ये प्रकाश हो रहा है, जो चक्कर काट रहा है, ये जो हमारी आवाज को है विवर्तन कर रहा है, ये किसके बल से कर रहा है? तो इसमें बल किसका है? क्या ये स्वयं करने में समर्थ है? कहा नहीं। ये प्रकाश करने में समर्थ है? नहीं है। और पंखा क्या वायु करने में समर्थ? कहा नहीं। लेकिन फिर भी कर रहा, और इनमें भेद भी है, लेकिन फिर भी एक समता बैठी। वो समता क्या है? विद्युत। विद्युत रूपी बल जो है वो इसमें भी विद्यमान है, बल्ब में भी विद्यमान है, पंखे में भी विद्यमान है। उस विद्युत रूपी बल के द्वारा ही ये सारी क्रिया हो रही। इसी प्रकार से यहां पर भी संकेत किया, चाहे विद्यावान हो और चाहे हाथी गऊ आदि हो, और इतना कह दिया कि इतना ही नहीं चांडाल ही क्यों न, कुत्ता भी हो चांडाल उसको पका करके कुत्ते को खाने वाला क्यों, सब में वह बल है। तो उस समता को, उसको यदि जब देख लेते हैं तो वही है समर्थ। उस सत्ता को यदि देखना हमारे अंदर आ गया तो उसी को सम कहते हैं। यही कहा समा सर्वेश भूतेश आदि गीता में नाना प्रकार से कहा, समत्व दृष्टि की भी चर्चा की। तो इस प्रकार से ये है क्या बल, और इसी को चर्चा की समदर्शी मुनि विगत विभेदा। उन ऋषियों के अंतर्गत क्या थी, समत्व दृष्टि थी, माने एक जो कारणात्मना सत्ता थी, कारण रूप जो था, उस कारण रूप सत्ता को ही सर्वत्र वह थी, और कारण रूप सत्ता को देख करके ही वो समझते थे कि ये जो कार्य हो रहा है वो इस कारण के बिना हो सकता नहीं। तो मूल है कारण, कारण में दृष्टि रखने वाले थे, इसलिए उनके अंदर समत्व था, लेकिन उपाधि को कार्य को लेकर के समता संभव नहीं हो सकती। तो ऐसी इसलिए समदर्शी मुनिवियोग वेदा, और वेद शब्द चारियों वेदा मतलब उनके अंतर्गत। चारियों वेदों का रूप क्या है, बात थोड़ी बढ़ जाती। वेद जो है वैसे तो एक ही है, विद धातु जो है ज्ञानार्थक भी है, और विद धातु सत्तार्थक भी है, और विद धातु अविकांक्षायाम अविकांक्षा अर्थ में भी है, और विद धातु जो है विद लाभे लाभ अर्थ में। विद धातु के चार अर्थ हैं, सत्ता ज्ञान अविकांक्षा और लाभ, और इन्हीं को लेकर के चार पुरुषार्थों की भी वर्गीकरण के हिसाब से कल्पना की गई। तो अब यहां पर जो है संकेत करते हैं, ऐसे वेद से संपन्न थे, लेकिन वो सत्ता और सत्ता का उन्हें ज्ञान था, इसलिए उनकी कामना जो थी अभिकांक्षा थी वो भी कहां थी, सत्ता में थी, असत्ता में कामना, और उस सत्ता का ही उन्हें लाभ था, इसलिए जब सत्ता का ही लाभ था तो सत्ता तो शाश्वत है, इसलिए कह दिया कि रूप धरे जन चार्यो वेदा समदर्शी मुनि विगत, इसलिए उनके अंदर कोई विभेद था ही नहीं, सदा अद्वैत रूप में वो मस्त रहते थे। लेकिन इतना होते हुए भी उपाधिवान थे, तो वो कैसे फिर आगे क्रिया, तो आगे संकेत किया कि ऐसा होते हुए भी उनकी स्थिति क्या थी, आशा वसन व्यसन यह तीन ही, बड़ी विलक्षण बात कही, कहा उनके वस्त्र क्या थे, उनमें आवरण क्या था, तो कहने लगे दिशाएं ही जिसका आवरण थी, आशा और व्यसन, हम लोग भी कोई छाय का व्यसनी है, हैं कोई सिगार का व्यसनी है, कोई किसी का व्यसनी, तो अब कहा व्यसन क्या था, तो क्या संकेत किया, अकर्मण्य नहीं कहा, कहा आशा वसन व्यसन यति नहीं रघुपति कथा होए ता सुने, ये व्यसन था, एक वक्ता बन जाता था, तीन श्रोता बन जाते थे, कोई सुनने वाला मिल गया तो उसे सुनाते, नारद जैसे आ जाते तो उनको सुनाते थे, और कोई नहीं है तो आपस में, तो ये सब। और ये दूसरी तरह से हमारे अंतःकरण के जो चार रूप हैं उनको भी समझ लेना, और उस अंतःकरण में भी जब उस सत्ता का जो सत्यत्व है उसका ज्ञान होता है, और उसका जब ज्ञान होता है तो उसकी अभिकांक्षा अन्यत्र नहीं होती है, उसी सत्ता में होती है, और उसी का वो लाभ उठाता है, इसी को परम दृष्टा निवर्तते कहके, तब उसका रस जो है बाहर कहीं ग्रहण करने के लिए जाता, उसी से रसान्वित होता है, और उस अवस्था में ही कह दिया रसो वही शह रसम लब्ध्वा हेवा आनंदी भवति, वही रस स्वरूप है, और ऐसे रस को प्राप्त करके वो आनंदायत ये संकेत किया। तो ऐसे संत कुमार आदि थे, तो यहां संकेत कर रहे हैं कि जब इस प्रकार से हमारे अंदर समत्व दृष्टि आ जाती है, हमारा रस कहीं नहीं रह जाता है, तब क्या होता है, तब सारे बंधनों से मुक्त होकर के, और जैसे पत्ता है तो वैसे ही संसार रूपी वायु और आती है, जहां रख देती है वहीं पर वो मस्त रहता है, जैसी स्थिति में रखती है वहीं पर मस्त रहता है, वहां उसका कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रहता, इससे रहत हो जाता है। तो ऐसा बल जब जीवन में आता है तब ऐसे बल से वो युक्त होकर के और जो है क्या है अपनी इंद्रियों को जीतने वाला और बलवान कहलाता है। केवल इंद्रियों को उनके आहार से निवृत्त कर देने का नाम बल नहीं है, वो उनको जीतना नहीं। वही गुरु ने जो है वो क्या नाम ब्रदरथ से कहा कि इस प्रकार से तू जीत नहीं पाएगा, इससे तो तेरी इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी, और इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी तो तेरे जीवन में जो है जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो जाए। इसलिए कहा जो है इन इंद्रियों को जीतने के लिए एक ही उपाय है, वो उपाय क्या है, परम दृष्टा निवर्तते, अर्थात इंद्रियों का भी, इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला, इंद्रियों में बल लाने वाला जो मूल कारण है, जो मूल सत्ता है, उस सत्ता को तू समझ, और जब उस सत्ता को समझेगा तो इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति में फिर कामना राग द्वेष आदि नहीं रह जाएगा, और ये जब नहीं रह जाएगा तो तुझे बाल्य भाव की प्राप्ति होगी, वो बल तेरे में आएगा और तू विजयी हो जाएगी। ये संकेत किया, वही संकेत यहाँ पर जो है कर रहे, तो कौन सा बल हमें चाहिए, तो इंद्र भी यहाँ पर यीशु रूप से भी संकेत किया, तो बल का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में क्रम से वही बतलाते हैं, हमें सहायक चाहिए, हमें मित्र चाहिए, सहयोगी चाहिए, वो सहयोगी कौन है, तो एक परमात्मा ही वास्तव में हमारा मित्र, वही सदा साथ देने वाला। और कहने लगे कि ये सब ठीक है, फिर जो है हम वर्ण भी किसका करें, तो कहा वही श्रेष्ठ है, वही वर्ण करने योग्य है, और वो कब वर्ण होगा, तो उसके लिए अरिमा शब्द से संकेत कर दिया, जब हमारा मन श्रेष्ठ होगा, हमारा मन सरल होगा, और सरल मन में ही उसकी वर्णता संभव है। और कहने लगे मन तो सरल हो गया, मन में सुसंस्कृतता तो आ गई, लेकिन वहां भी अहंकार बैठा हुआ है, वहां भी भेद बैठा हुआ, तो कहा तब भी बात नहीं बनेगी, तब बल चाहिए। वो बल कौन चाहिए, तो ये बल चाहिए, यहां पर किसी प्रकार की कामना क्रोध आदि न रहे, इनकी निवृत्ति हो जाए, उनको सहन करने में भी हम समर्थ हो जाए, अर्थात तितिच्छु बन जाए, ये जो है जब जीवन में आ जाता है, तो ये ही साधन चतुष्टय बेवी शतक संपत्ति के अंतर्गत भी इनकी चर्चा की विवेक वैराग्य पूर्वक, और वही चर्चा यहाँ शांति पाठ में कर रहे हैं, और उसी की ऋषि याचना करता है कि ये जब हमारे जीवन में आएंगे, तब जो है हम जिसके आगे कहेंगे ब्रह्मविद आपनोत ब्रह्म करके संकेत करेंगे आगे की बल्ली में, तो उनकी जो है उसकी प्राप्ति हमें तभी हो सकती है, और तभी हम सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ऋषि कहता है कि सन नो इंद्र, इंद्र जो है तुम मुझे हैं सुख प्रदान करो, हमारे दुख की निवृत्ति करो, और दुख की निवृत्ति तभी होगी, सुख की निवृत्ति तभी होगी, जो बल है वो बल हमें प्राप्त हो, और इंद्र यहां पर बल के प्रतीक माने गए, इसलिए ऐसे बल की याचना जो है ऋषि करता है, और ऐसी याचना करते हुए आगे जो है संकेत करता बृहस्पति सन्नो, दोनों के साथ संबंध है इसका, सन्न इंद्रो सं बृहस्पति, इंद्र भी हमारे लिए जो है इस प्रकार से हमारा जो है कल्याण करें, और आगे कहा बृहस्पति। अब बृहस्पति क्यों कहा, तो इसकी चर्चा कल करें।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ஓம் சிவாய நமஸ். சைவம் டாட் ஆர்கின் ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி சிவகீர்த்தனை, கோபாலகிருஷ்ண பாரதி பாடல்கள். இதில் நீங்கள் கேட்கவிருப்பது அறிவுடையோர் பணிந்து ஏற்கும், வழங்குபவர் சிவலட்சுமி பூவாள் அவர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஸ்.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

देवान् देवां एह वक्षति वक्षति हा देवान् देवां एह वक्षति एहा इह वक्षति वक्षति हेह वक्षति वक्षतीति वक्षति अग्निना रयिं रयिमग्निना अग्निना रयिमश्नवदश्नवद्रयिमग्निना अग्निना रयिमश्नवत् रयिमश्नवदश्नवद्रयिं रयिमश्नवत्पोषम् पोषमश्नवद्रयिं रयिमश्नवत्पोषम् अश्नवत्पोषम् पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेवैव पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेव पोषमेवैव पोषम् पोषमेव दिवे दिवे दिवे दिव एव पोषम् पोषमेव दिवे

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: समुत्संयता
1: जगन्था
0: समुद्रे त्वा नृमना अप्स्वन्तं रचक्षा इभे दिवो अग्

गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामासी प्रसद्य भस्मना योनिमपश्चा पृथिवीमग्ने सक्यसृज्या मातृभिः।

विन्दते सा एव भागदेयेनोपासरस्ता अस्मै प्रजां पुनर्दत्तो विन्दत्तधियाज्जानुवाक्येन।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: वैश्वामित्रं च

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: கியோகி சூக்ம சரீர் மே ரஹனே வாலா ஜோ சப்த ஹை வஹ வைகரி கே ரூப் மே பரிணத் நஹீ ஹோதா. வாணி வைகரி கே ரூப் மே பரிணத் ஹோனே கே லியே தோ ஸ்தூல அன்னமய கோஷ் மே சம்பந்தித் ஹோனா படேகா. சூக்ம மனோமய விஜயானமய பிராணமய கோஷ் மே வைகரி வாணி நஹீ ஹோதி ஹை. பஷ்யந்தி மத்யமா ஹோ சக்தி ஹை லேகின் வைகரி நஹீ ஹோதி சாமான்யதயா. तो कई बार स्वप्न देखने वाला व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और किसी से बात कर रहा है, तो सामान्य नियम तो यह है कि जागृत वाले को कुछ पता नहीं कि स्वप्न में क्या बोल रहा है. लेकिन कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि वह स्वप्न में बोले हुए शब्द जागृत में वैखरी में परिणत हो जाता है. इतना तादात्म्य हो जाता है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ कि वह स्वप्न में जिससे बात कर रहा है, जो बात कर रहा है, जागृत में वह वैखरी के रूप में परिणत होता है और उसके बगल में जो बैठा हुआ है वह सुनता है कि ये क्या बोल रहा है. और बाद में जब वह जग लेता है तो जिसके साथ बात कर रहा है तो वह व्यक्ति वहां उपलब्ध नहीं होता. और जगा हुआ, पहले से जगा हुआ व्यक्ति उससे पूछता है कि अरे तू तो यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था, किसके साथ बोल रहा था, तो वो बड़ा आश्चर्य मानता है. क्या हुआ, मैं स्वप्न देख रहा था, फलाना आदमी आया था और मैं उससे बात कर रहा था. तो उससे बात कर रहा था, स्वप्न के व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वैखरी वाणी क्यों बोल रहा है. तादात्म्य के चलते ऐसा हो जाता है. निद्राया दर्शिता नार्थान पश्यति न पश्यति यथोत्थितान. स्वप्न में ही वो व्यक्ति यदि जग जाता है, स्वप्न में माने रात्रि में ही यदि वो व्यक्ति जग जाता है तो सूर्य को नहीं देखता है, तो फिर विचार करने लगता है कि ये क्या हो गया, अभी अभी जिस सूर्य को देख रहा था वो कहां चला गया, अभी क्यों नहीं. और यदि रात्रि के समय में सूर्य को देखा तो फिर कैसे देखा, और यदि स्वप्न में देखा था तो फिर अभी वो सूर्य कहां चला गया. तो जैसे जगने के बाद वो पदार्थ उपलब्ध नहीं होते. दृष्टांत, जिस मित्र को तुम स्वप्न में देख रहे थे, जागने के बाद वह मित्र उपलब्ध नहीं होता. जिस वस्तु को तुम स्वप्न में देख रहे थे, जागने के बाद वो वस्तु उपलब्ध नहीं होता. ये जैसा दृष्टांत सामान्य प्रचलित है और प्रसिद्ध है, ये दृष्टांत सर्वानुभूत है, ये सभी ने अनुभव किया हुआ प्रसंग है. ये निद्राया दर्शितान अर्थान न पश्यति यथोत्थितः सम्यक् ज्ञानोदयात् ऊर्ध्वम् तथा विश्वम न पश्यति. इसी तरह यदि जिस समय सम्यक ज्ञान होता है, अभी जो आपको ज्ञान है यह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है. हमको आपको इस समय जो ज्ञान हो रहा है ना, यह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, यानी यथार्थ ज्ञान नहीं है. यह ज्ञान भी अयथार्थ ज्ञान है. अयथार्थ ज्ञान का अर्थ क्या हुआ पता है, ये अपरा विद्या का विषय है. यथार्थ ज्ञान उसको कहते हैं जो परा विद्या का विषय है. जब तक किसी भी प्रमाण के बिना जो ज्ञान नहीं होता तब तक वह यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता. किसी प्रमाण के द्वारा होने वाला ज्ञान, किसी साधनों के द्वारा होने वाला ज्ञान, किसी करणों के द्वारा होने वाला ज्ञान वह ज्ञान हमेशा दूसरे के माध्यम से होने वाला होने के कारण ये ज्ञान को यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकते, यह अयथार्थ ज्ञान है। और इसी अयथार्थ ज्ञान को मुंडक श्रुति ने अपरा विद्या कह दी है। ये सब पदार्थ संबंधी जो ज्ञान है ये प्रमाण प्रमेय वृत्तिजन्य ज्ञान है, साधन द्वारा उत्पन्न होने वाले ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। और जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक फिर ये पदार्थ स्वप्न के जैसे अनुभव में नहीं आएंगे। अयथार्थ ज्ञान में तो जैसे स्वप्न में तो स्वप्न के अंदर का पदार्थ यथार्थ ही लगता है, इसी तरह जागृत भी अयथार्थ ज्ञान की अवस्था होने के कारण ये भी अयथार्थ पदार्थ यथार्थ जैसा लगने लगता है। सम्यक् ज्ञानो दयानूर्धं तथा विश्वं न पश्यति। सम्यक् ज्ञान पश्चात यह विश्व इस तरह आपको नहीं लगेगा जिस तरह अभी आपको लग रहा है। सम्यक् ज्ञान ये एक कंडीशन है, विशेष शर्त है। इस समय का जो प्रपंच स्वप्न की तरह भासने के लिए, अनुभव में आने के लिए आपके पास जो अभिज्ञान है ये पर्याप्त नहीं है, ये सक्षम नहीं है, इसकी जगह दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होगी। वो ज्ञान का नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान। सम्यक् ज्ञानोदयानूर्धम तथा विश्वम न पश्यति, तब फिर आपको ये लगेगा जगत वास्तव में स्वप्न है। इस बात को सुरेश्वराचार्य जी ने आपने अपने परम दादा गुरु सुरेश्वराचार्य जी के परम दादा गुरु, एक तो दादा गुरु होते हैं दूसरा परम दादा गुरु, आप समझ गए किसके लिए कह रहे हैं। शंकराचार्य जी के दादा गुरु कौन है? गौड़पादाचार्य। और सुरेश्वराचार्य जी के परम दादा गुरु गौड़पादाचार्य है। परम दादा गुरु अपने गुरु के भी दादा हो तो परम दादा नहीं हुए कि नहीं? शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पादाचार्य और गोविंद पादाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य और शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी। सुरेश्वराचार्य जी गौड़पादाचार्य जी के प्रमाण को रिफरेंस के रूप में देंगे तो क्या हुआ, परम दादा गुरु हो गए कि नहीं? परदादा, दादा परदादा। तो गौड़पादाचार्य जी ने जो बात कही है मांडुक के कारिका में उसको यहां प्रमाण के रूप में रख दिया है। गौड़पादाचार्य जी ने कारिका में लिखा है, अनादि मायया सुप्तो यदा जीव प्रबोध्यते। जीव अनादि मायया सुप्तः, हम लोग इस समय सोए हुए हैं और कोई भी इस बात को मानने को इस समय तैयार नहीं है कि मैं सोया हुआ हूं। हर व्यक्ति कहता है मैं आंख से देख रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, नाक से सूंघ रहा हूं, त्वचा से शीत उष्ण कठोर कोमल का अनुभव कर रहा हूं, मन से संकल्प कर रहा हूं, वाणी से बोल रहा हूं, पांव से चल रहा हूं, समग्र व्यवहार कर रहा हूं इंद्रिय करण आदि के माध्यम से, तो मैं कैसे सोया हूं भाई? सोने वाला तो व्यस्त में एक ही व्यक्ति होता है, किसी शायर ने कहा है ना, आदमी सोया जमी पर, आदमी सोया जमी पर। जब आदमी सोता है तो वो न देखता है न सुनता है ना? आपके व्यवहार में भी तो यही होता है ना, उसको बुलाओ ये राम प्रसाद, यदि वो बोला नहीं सुना नहीं आपकी आवाज को तो आप कहोगे क्या,
3: सो गया है।
2: आदमी सोया जमी पर लोग कहते हैं मर गया। आदमी सोया जमी पर लोग कहते हैं मर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया, पर लोग कहते हैं मर गया। कितनी उल्टी बात है। और किसी अपने घर जाना, उसको लोग कह देते हैं मर गया, बेचारा घर गया है और लोग कहते हैं मर गया। संसार तो यही उल्टा ही है, है? वो तो नदी में बगाने के बाद ऊपर की तरफ खोजने जाते हैं, संसार तो ऐसा है, है? नदी का प्रवाह एक तरफ है और खोजने जा रहे हैं उसके ठीक विपरीत। शरीर बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है और तैयारी कर रहे हैं जवानी की, कि शरीर जवानी में मिले कैसे, जवान कैसे हो। तो ये ठीक विपरीत खोजी है कि नहीं बोलो। बुढ़ौती में जवान होने की इच्छा, ये विपरीत अनुसंधान है कि नहीं है? बोलो, बुढ़ौती में जवान होने की इच्छा है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये तो तमोगुण का लक्षण है कि नदी में जिगर बगा दिया एक तरफ और खोजने गए दूसरी तरफ। अनादि माया सुप्त। अब इस माया के द्वारा सुप्त कोई व्यक्ति सोना मानता ही नहीं है तो अब क्या समझाएं उनको। वो तो ऐसे सफाई से बात कर रहा है कि माया उसको छू ही नहीं रही है। आप जो कह रहे हो ना कि अभी मैं जगा हुआ हूं, ये कहना कॉन्फिडेंस के साथ आप जो कह रहे हो कि मैं जगा हूं, तो ये तो ऐसा कह रहे हैं आप कि माया आपको छू ही नहीं रही है। और जबकि पूरी तरह माया के चपेट में है, माया के बस में है, माया के नशे में है, तो गौड़पादाचार्य कह रहे हैं अनादि माया सुप्त जीव यदा जीव प्रबुद्ध्यते। प्रबुद्ध्यते जगाया जाता है, जीव को जगाना पड़ता है, अपने आप नहीं जगता है। निद्रा में सोने वाला जीव भले ही वो अपने आप जग जाए, लेकिन माया में सोने वाला जीव अपने आप नहीं जगने वाला है। प्रबुद्ध्यते, हाँ, जगाना पड़ता है उसको। जब कोई इसको जगा देता है तो कौन जगाएगा? तो जगाने वाले के लिए साधन बता दिया है श्रुति आचार्य वाक्य श्रुत्याचार प्रसादेन योगाभ्यासेन योगाभ्यास वशेन च ईश्वर अनुग्रहेणापि स्वात्मबोधो यदा भवेत। जगाने वाले तीन हैं, आपसे भिन्न तीन हैं, या चार मान लो, इसी को चार कृपा कृपा चतुष्टय कहा गया है। श्रुति, ये जो प्रसिद्ध लौकिक निद्रा से तो आप खुद भी जग सकते हैं, और क्योंकि इस निद्रा में आप खुद ही गए हैं और इस निद्रा से आप खुद भी जग जाओगे। कोई कितना सोएगा, पांच घंटा, आठ घंटा, बारह घंटा, कोई कितना सोएगा? हमको कोई पूछते हैं महाराज आपको कितने समय निद्रा लगती है, कितने समय सोते हैं आप? तो हमने कहा हमको यदि स्वतंत्र सोने को मिल जाए बारह चौदह घंटा तो हम आराम से सो सकते हैं, अच्छी निद्रा लगती है, बस तो सो जाते हैं। अभी भी आठ नौ घंटे तो सोते ही हैं भाई, शाम को खाना खाए और सो, चिंता नहीं है तो कहा चिंता मम जीवन है। चिंता जिसको हो उसको को निद्रा नहीं आती है, जिसको चिंता नहीं है तो वह निद्रा ना आवे। निद्रा ना आवे इसका मतलब चिंता है, चिंता नहीं है तो निद्रा आ जाती है। तो हम खुद सोते हैं और खुद उठते हैं, लेकिन ये माया में भी हम खुद ही सोए हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की विडंबना है कि ये खुद उठते नहीं, सो तो गए, कब सो गए? आप माया रूपी निद्रा में कब सोए? अनादि। शाम को कितने बजे सोए? तो आप घड़ी देखकर बता सकते हैं कि मैं 9 बजे सोया, 10 बजे सोया। आज कोई यात्री आ गए थे, गेस्ट आ गए थे, तो रात को सोने में देर हो गई, 1 बजे तक गप करते रहे, 1 बजे के बाद सोए, आप बता सकते हो। लेकिन ये निद्रा जो माया की निद्रा है, जिस निद्रा में आप और हम, मैं भी उसी में सोया हूं वो, और ये इस समय में स्वप्न में प्रवचन सुन रहे हैं आप, और मैं स्वप्न में प्रवचन कर रहा हूं। आप लोगों ने स्वप्न देखा है कि नहीं प्रवचन सुनते हुए? मैंने तो कई बार देखा है प्रवचन करते हुए, कई बार सुनते हुए भी देखा है, कई बार करते हुए भी देखा है। शायद आप लोगों ने भी स्वप्न सुनते हुए देखा हो, और मुझे लगता है कि कई बार तो प्रवचन करने का ऐसा वासना, ऐसी वासना आपके अंदर हो सकती है कि स्वप्न में आप प्रवचन भी करने लग गए हो। लेकिन ये महा स्वप्न तो माया के द्वारा सम्मोहित हुआ हुआ जो अवस्था है, इसको महास्वप्न कहते हैं। अनादि, कब से ये स्वप्न शुरू हुआ है किसी को पता नहीं है। आप जीव कब बने थे पता नहीं है, आपका शरीर कब पैदा हुआ ये तो बर्थडे लिखा होगा, होगा माता पिता ने कॉरपोरेशन में रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा हॉस्पिटल में, और वहां तिथि मिति सब लिखी होगी, समय लिखा होगा, और उसके आधार से आप कह सकते हो कि ये शरीर का जन्म। आप तो सीधे कह देते हो कि मेरा जन्म, कहना तो यही चाहिए कि ये शरीर का जन्म फलाना दिन हुआ है, फलाने साल हुए, फलान जगह हुआ। लेकिन आप कह देते हो कि मेरा जन्म फलाने साल फलाना महीना फलाना तिथि मिति फलाने जगह, ये तो कम से कम है। लेकिन आप जीव बने कब, ये कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए अनादि, बन गए सो बन गए, कैसे बन गए क्या पता, कैसे बन गए, इसलिए अनादि माया सुप्तो। यदा जीव प्रबोध्यते, उस सोए हुए जीव को जब जगाया जाता है, श्रुति

तो आपका नाम है पद्म प्रसाद और कमल प्रसाद करके बुलाएंगे तो आप उठोगे? अभी भी नहीं उठोगे। कोई यहां पद्म प्रसाद बैठा हो और मैं उसको कह कमल प्रसाद है इधर आओ, तो अभी भी पद्म प्रसाद नहीं उठेगा। ये नहीं कहेगा कि पद्म का अर्थ कमल होता है और मुझे बुला रहे हैं। वो पद्म वही शब्द उसको चाहिए जगाने के लिए, जो उसका नाम है वही चाहिए। उसका विकल्प पर्यायवाची शब्द नाम से वह उठेगा नहीं। उठता है? बोलो। पद्म प्रसाद नाम है तो पद्म प्रसाद ही उसको शब्द उठा सकता है, कमल प्रसाद शब्द नहीं उठा सकता। इसी तरह अनादि माया से सोया हुआ जीव को श्रुति ही उठा सकती है, श्रुति के अलावा और दूसरा कोई उठाने में समर्थ नहीं है। महावाक्य ही उस निद्रा से आपको जगा सकती है, क्योंकि आपका असली नाम कुटस्थ है, आपका असली नाम ब्रह्म चैतन्य है, आपका असली नाम शुद्ध है, सच्चिद आनंद है। और सच्चिद आनंद आपका असली नाम है, और सच्चिद आनंद को बताने वाली महावाक्य ही है। उसके अलावा आपको अनादि माया रूपी निद्रा से जगाने में और कोई भी शास्त्र सक्षम नहीं है। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबोध्यते अजम, क्योंकि आपका असली नाम अज है। ये देवदत्त यज्ञदत्त तो ये सब काल्पनिक नाम है, असली नाम नहीं है। आपका असली नाम क्या है? अज, अजन्मा। और अज ये शब्द से आपकी अनादि माया की निद्रा टूटेगी। कोई अज करके बुलाएगा तब, लेकिन ये आप यदि अज करके बुलाएंगे तो नहीं उठने वाले है। फिर श्रुति ही बुलाना पड़ेगा, श्रुति की आवाज आपको सुननी पड़ेगी, श्रुति आपको पुकारेगी। और जब श्रुति जोर से पुकारती है आज, तो तुम्हारा क्योंकि वो असली नाम है तो आप जगते हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त निर्वरान निबोधत चुरस्य दारा निश्चित दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। श्रुति इस तरह उठाती है, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। ये श्रुति जब इस तरह उठाती है तब अनादि माया की निद्रा जब उसकी टूटती है तब वह अपने आप को अजन्म अनिद्रम निद्रा से रहित, अस्वप्नम स्वप्न से भी रहित, निद्रा शब्द से सुसुप्ति, सुसुप्ति से रहित, स्वप्न से रहित, अद्वैतम अजम प्रबुद्धते अपने स्वरूप में वह जग जाता है। तब फिर ये विश्व प्रपंच जो इस समय अभी आपको बाहर प्रतीत हो रहा है, तब आपकी सत्ता से भिन्न सत्ता प्रतीत नहीं होगा। तो बाहर जिस रूप में प्रतीत हो रहा है उस रूप में फिर प्रतीत नहीं होगा। उठाएगा कौन? तो सुरेश्वराचार्य जी बोलते हैं, श्रुति आचार्य प्रसादेन योगाभ्यास वशेन च ईश्वर अनुग्रहेणापि स्वात्मबोधो यदा भवेत। चार कृपा प्रसिद्ध है, आत्मकृपा, योग अभ्यास की आवश्यकता है। योग अभ्यास का अर्थ जो रामदेव जी का योग है वो नहीं लेना है, वो तुम्हें अपने स्वरूप में जगाने में समर्थ नहीं होगा। रामदेव का जो योग है शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, वसा और चर्बी का अंश ज्यादा है, नस आदि थोड़े से उसके छिद्र मोटे पतले हो गए हों, उन सब को प्योरीफाई करने में समर्थ है। शरीर शोधन में हेतु है। ये आसन का जो आप कह रहे हैं ना कि कपाल भांति, रामदेव जी एक ही वाक्य बोलते हैं, कपाल भांति करो सब रोग का निदान है, ब्लड प्रेशर भी उसी से कम होगा है, शुगर भी उसी से कम होगा।

0: सब कुछ उसी से कम होगा। कपालभाति करो, कपालभाति करो। तो ये योग से आप जगने वाले नहीं हैं। शरीर कुछ समय के लिए निरोग हो सकता है, अनादि माया से जगाने में समर्थ नहीं है। तो फिर कौन सा योग यहां अपेक्षित है, ध्यान देना। योग के दो पक्ष हैं, एक राजयोग, दूसरा क्रियायोग यानी हठ योग। यहां क्रियायोग हठ योग आपको अनादि माया से जगाने में समर्थ नहीं है, राजयोग आपको अनादि माया से जगाने में समर्थ है। आपको राजयोग का प्राणायाम करना पड़ेगा। राजयोग के प्राणायाम अपरोक्ष अनुभूति में स्पष्ट शंकराचार्य जी ने लिख दिया है, उसकी प्रक्रिया लिखी है राजयोग के प्राणायाम की। क्रिया योग में सबसे पहले रेचन करना पड़ता है, प्राणायाम के पहले रेचन, प्राण को अंदर भरो। दूसरे नंबर में कुंभक करो, तीसरे नंबर नहीं, पहले पूरक करो। क्रिया योग में पहले पूरक करो, प्राण को अंदर भरो, दूसरे नंबर में कुंभक करो और तीसरे नंबर में रेचन करो। ये क्रिया योग का प्राणायाम है। लेकिन राजयोग के प्राणायाम क्या है पता है? पहले रेचन करो, उसके बाद पूरण करो, पूरक, और तीसरे नंबर में कुंभक करो। ये राजयोग, उसकी प्रक्रिया पढ़ लेना अपरोक्ष अनुभूति में, राजयोग की प्रक्रिया। यद्यत चक्षुर्भ्यम पश्यति तत्तद आत्मेति आत्मैव भावयत। आज से जो दिखाई पड़ रहा है वहां अस्थिभाति प्रिय रूपी आत्मा की भावना करो, ये राजयोग का है। आंख से जो दिखाई पड़ता है, तो इस प्रकार के राजयोग का अभ्यास यदि आप करते हो तब फिर श्रुति तुम्हें आराम से जगा सकती है। और ये राजयोग का अभ्यास नहीं करोगे तो श्रुति भी जगाने में समर्थ नहीं, आचार्य भी जगाने में समर्थ नहीं। अपनी तैयारी हो तो आचार्य भी जगाने में समर्थ हैं, श्रुति भी जगाने में समर्थ हैं। कई बार कहीं जाना होता है जल्दी, तब ये कहा जाता है सोने से पहले, सोने से पहले घर में मां और पिता को, बुजुर्ग को, सास को, ससुर को ये कहा जाता है, सुबह 5 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है, मम्मी यार मुझे 4 बजे उठा देना। हाँ, जब तुम इस तैयारी से सोते हो तब तो मां 4 बजे उठा देती है तो तुम उठ जाते हो, और वही मां दूसरे दिन 4 बजे उठने की तुम्हें तैयारी थी नहीं, संडे है, वही मां 4 बजे उठाती है तो तुम उठते हो। क्यों नहीं उठते हो? क्योंकि तुम्हारी तैयारी नहीं है, उठने की तुम्हारी तैयारी नहीं है, तो मां उठाने पर भी तुम नहीं उठोगे। और यदि तुम्हारी उठने की तैयारी है तो मां के यदि कदाचित न उठाए तो मां के स्नान करने जाते हो बाल्टी की आवाज से ही तुम उठ जाओगे, मां को भी उठाना नहीं पड़ेगा। कदाचित न भी उठे तो मां एक आवाज लगाई तब तो तुम उठ ही जाओगे, क्योंकि उठने की तुम्हारी तैयारी है। आज तो संडे है इसलिए 37 भी हो चुका है टाइम। तो प्रसंग ऐसा है भाई, श्रुत्याचार प्रसादेन योगाभ्यास वशेन च ईश्वरानुग्रहेणापि स्वात्मबोधो यदा भवेत् भुक्तम यथान्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वेन नैव पश्यति पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगीश्वरस तथा। जैसे अभी अभी खाने से पहले खाने के लिए रखा हुआ भोजन थाल में इदम इदम इदम इदम, अब व्यवहार करते हो कि नहीं, यह भात है, यह साग है टिंडोला के साथ है, व्यवहार होता है कि नहीं, यह टिंडोला के साथ, ये चटनी, ये खम्मन, ये रस, ये पूरी, ये श्रीखंड, यह यह यह यह यह, और वो सब थोड़ी देर में खा लेते हो तो वह पेट के अंदर जाने के बाद वो श्रीखंड क्या होता है, यह होता है कि अहम होता है? मैं लेव जी, पहले अभी अभी यह यह यह कह रहे थे, जिसको इदम कहा था, थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, पेट के अंदर जाने के बाद अहम हो जाता है। इसी तरह जब पूर्ण बोध हो जाता है श्रुति आचार्य की कृपा से, जब आप जग जाते हो तो बाहर अभी इदम इदम इदम जो दिखा हुआ था, बाहर वह पूर्ण अहम के रूप में, अपने से अभिन्न के रूप में आपको बोध होगा। जरूरत है जगने की, जरूरत है जगने का संकल्प करने। जगाने तो तैयार है, श्रुति भी तैयार है, आचार्य भी तैयार हैं, परंतु तुम्हें जगने का संकल्प ही नहीं है, तुम्हारी तैयारी नहीं है, तो फिर इसी तरह सोते रहेंगे। कब तक सोते रहेंगे देखा जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय।

0: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Arivattaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek Nayanmarya Sant ki kahani. Inka naam hai Arivattaya. ये हमें एक प्रमुख सीख देते हैं। इनकी कहानी में यह दर्शाया गया है कि साधारण मानव बाधाओं के आने पर लक्ष्य के साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन जो इंसान पक्के इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ जीते हैं वो कभी अपने लक्ष्य के साथ समझौता नहीं करते। पूर्ण निष्ठा और किसी भी विपत्ति के आने पर मार्ग से न हटने वाली दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य प्राण को भी त्याग देते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं त्यागते, इसलिए वे महान कहलाते हैं। कावेरी नदी के जल द्वारा संचित क्षेत्र है तंजावुर। तिरुवारूर से 30 किलोमीटर की दूरी पर इस क्षेत्र में एक गांव था, कणमंगलम। उस गांव के निवासी एक समृद्ध कृषक परिवार में अरिवाल्तायर का जन्म हुआ था। युवावस्था से ही तायर ने संकल्प किया कि वह चंपा चावल का सुवासित अन्न, लाल साग और छोटे कच्चे आम का आचार भगवान को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। इसी सेवाकारी को उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। समय गुजरता गया, परिस्थितियां बदल गईं। धीरे धीरे अरिवाल तायर के परिवार की आर्थिक दुरावस्था के दिन आ गए। उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। दूसरों के खेत में मजदूरी करके तायर अपना निर्वाह करने लगे। मजदूरी के रूप में मिले धान से वे भगवान को भोग लगाते, इधर उधर से साग एकत्र कर सब्जी बनाते और अमौरी के अचार के साथ भगवान को प्रदान कर देते। एक बार उन्हें मजदूरी में बढ़िया धान मिल गया। वे स्वयं तो भूखे थे, लेकिन अपनी भूख प्यास को भूल कर उन्होंने अन्न, साग और अमौरी को एक टोकरी में रखा और खेतों से गुजरते हुए मंदिर की ओर चल दिए। उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी एक मिट्टी के पात्र में पंचगव्य लेकर साथ चल रही थी। दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का पंचगव्य प्रतिमा के अभिषेक के लिए था। भूख और थकान के परिणाम स्वरूप अरिवाल ताहिर को चक्कर आ गया और वह किसी चीज से टकराए। पत्नी ने उन्हें पकड़ने की ढेर कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़े। भूख की सामग्री धरती पर बिखर गई और उन्होंने अरिवाल तायर ने तब कराह कर कहा, अनाथों के नाथ, दीनवत्सल भगवान शिव, आज मेरे ही कारण आपको भोग नहीं चढ़ाया गया और इसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूं। यह सोचकर अरिवाल तायर ने फसल काटने वाले एक चाकू को धरती पर देखा और उससे अपनी गर्दन काटने का प्रयास किया। तिल्लई चिदम्बरम में अनंत नृत्य करते हुए प्रभु ने उनका हाथ उसी क्षण धरती की दरार से बाहर प्रकट हुआ और अरिवाल तायर का हाथ पकड़ लिया। भगवान का स्वर सुनाई दिया, वत्स, हमारी चिंता त्याग दो। ये लो, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए अर्पित अमौरी खा रहा हूं। दरार के अंदर से अमौरी दांत से काटने की चटक चटक आवाज सुनाई दी। अपना गर्दन चाकू में फंसाकर काटने का प्रयास करने के कारण अरिवाल तायर का नाम अरिवाल तायर बना। अरिवाल का मतलब तमिल में चाकू होता है। प्रभु ने दर्शन दिए। नंदीश्वर ने पति पत्नी के भक्तिभाव की प्रशंसा करते हुए उन्हें शिवलोक में स्थान दिया। अनेक संत और भक्त जनता की भूख मिटाने के उद्देश्य से अन्नदान को अपना जीवन का सर्वस्व समझते हैं। अरिवाल तायर ने खेत में उग रहे धन धान अमौरी से भगवान को भोग लगाया और एक दिन जब भोग नहीं लगा पाए तो इसके लिए उनके मन में इतनी ग्लानी पैदा हो गई कि वह अपने प्राण तक नौचावर करने को सक्षम हो गए। इसे कहते हैं एक उत्तम भक्त। इसलिए इस संत का नाम शिवलोक में बड़े आदर सत्कार से लिया जाता है। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org. The next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Anaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे और एक नायनार या संत की कहानी, जिनका नाम है अनायार। दक्षिण के तिरुचिरापल्ली के उत्तर का क्षेत्र प्राचीन काल में मलनाड कहता था। यहाँ अहिरों का एक परिवार रहता था जो गौ पालन का कार्य करते थे। अहिर वंश प्राय कृष्ण परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं, पर यह परिवार पशुपतिनाथ शिव के प्रति समर्पित था। इस परिवार में अनायार का जन्म हुआ। अनायार की रुचि बंसी वादन और शिव भक्ति में थी। उनकी बंसी सुनकर सभी को प्रसन्न होता था। गायें चराने के लिए जब अनायार चारागाहों में पहुंचते तो प्रतिदिन अपनी बंसी द्वारा शिव पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र की धुन निकालता। उसने संगीत के सप्त स्वरों में नमः शिवाय को ऐसा साधा कि वह अपनी भी शुभ भूल गया। इस अलौकिक मंत्र को जब वह भक्ति में लीन होकर बंसी के स्वर से निकालता था तो सर्वत्र संगीत के रूप में अमृत की वर्षा प्रारंभ हो जाती। बंसी की स्वर माधुरी जड़ चेतन प्रकृति को भी मंत्रमुग्ध कर देती। पशु पक्षी मानव सभी हृदय तंत्र मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गायें घास चरना बोलकर अनायार के समीप आकर खड़ी हो जाती थी। बछड़े माँ के धन से दूध पीना भूलकर खींचे चले जाते। उस बंसी में निकले ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से पक्षी जो कि आकाश में उड़ते रहते हैं उसी स्थान पर चक्कर लगाते रहते थे। हिरण समूह कुलाचे भरना भूलकर बंसी के स्वरों में स्वयं को विस्मृत कर देते। मयूर समूह नृत्य छोड़कर शांतिचित होकर उस संगीत का पान करते। सांप शेर अथवा सभी जीव पारस्परिक शत्रुता भूलकर मुठली माधुरी में विमुक्त होकर एक साथ बैठे रहते हैं। आयनार की इस एकनिष्ठ सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर शिव उनके समीप आ गए और उनसे कहा, वत्स इसी स्थिति में मेरे पास आ जाओ। प्रभु ने अनायार को रुद्र पशुपतियार नाम प्रदान किया तो उनका दूसरा नाम रुद्र पशुपतियार हुआ। चित्तिलर ने कहा है कि जिस प्रकार बंसीवादन का विषय एवं सूक्ष्म वर्ग सभी को प्रसन्न कर देता था, उसी तरह विष्णु भक्त कैयालवार ने कृष्ण कन्हैया को की मुरलीवादन का वर्णन किया है। कालांतर में सूरदास ने ऐसा वर्णन उत्तरी भारत हिंदी भाषा में भी की है। ये सभी भक्त एक विशेष संकेत दे रहे हैं कि पशु पक्षी से लेकर मानव तक सभी को एक समान बांधने की क्षमता केवल संगीत में है, और जो संगीत शिव या भगवान के प्रति समर्पित हो वह सारी दुनिया को एकजुट कर सकता है। संगीत एक ऐसा सशक्त साधन है जो ऐसी समर्थता ला सकता है। एक कोशीय जीव से लेकर सुविकसित मानव तक सभी में जो सामंजस्यपूर्ण संबंध है उसी के आधार पर संसार टिकाऊ हुआ है। अनायार जैसे भक्त अथवा शिव श्री कृष्ण जैसे ऐश्वर्य अवतार जब बंसी की स्वर लहरियां वायुमंडल में दसों दिशाओं में फैलाते हैं तो जीव मात्र में व्याप्त एकात्मकता को उद्घाटित कर उनमें एक सामरस्य स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो देवलोक में व्याप्त सभी देवगण अपना अपना आविर्भाव या प्रसाद ग्रहण करना भूलकर गोकुल में कृष्ण की मुरली के रस का पान करने पहुंच जाते थे। ऐसी ही स्थिति कुछ अनायार के वंशीवादन में थी, इसलिए यह एक उच्च कोटि के संत हुए।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thiruneriya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajat Girinibham Charu Chandra Vatansam Ratna Kalpojjwalangam Parasum Rigavara Vetihastam Prasannam Padmasinam Samantat Stutam Amaraganir Vyagrakritim Vasanam Visvadhyam Visvabandhyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padma Bhavam Vasishtham Saktim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gauda Padam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Sishyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hastamalakancha Sishyam Tantrotakam Vartikakaramanyan Asmat Gurum Santatamanatosmi Vishuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Shreyah Prapti Nimittaya Namaha Somardha Dharine Om Shanti Shanti Shanti.

प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला अंतर्गत सायंकालीन ये प्रवचन का क्रम में आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी का प्रसंग चल रहा है। अभ्यास के लिए श्लोक नंबर 81। कञ्चित् कालमुमा महेश भवतः पादारविन्दार्चनैः कञ्चिद्ध्यानसमाधिभिश्च नतिभिः कञ्चित् कथाकर्णनैः कञ्चित् कञ्चिदवेक्षणैश्च नुतिभिः कञ्चिद्दशामीदृशिम् यः प्राप्नोति मुदा त्वदर्पितमना जीवन् समुक्तः खलु। बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते गोणित्वं सखिता मृदङ्गबहता चित्यादिरूपं ददौ त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवांस्त्वद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतर स एव हि न चेत् को वा यदन्योऽधिकः तदन्योऽधिकः जननम्।

0: Navavati sukhalesha sansayo nasti tatra. Ajanimritarupam sambhami sambhajante. Ajanimam amritam sambhami sambhajante. Yahiya paramasaukhyam tehi dhanya lavante. Jaladi matana dakcho naiva pata labhedi. Nay. Shiva tava paricharyan sannidhaya dhanaya gauriya. Bhava mama guna dhuriyam buddhi kanyam pradasi. Sakala bhuvana bandho sachidananda sindhu. Sadaya hridaya gehe sarvada sambhasattvam. Jaladi matana dakcho naiva patala vedi. Nachabanam rigayayam naiva lubdha prani praveena. Asana kusuma bhusha vastra mukhyam sapariyam. Kataya katamaham te kalpaya nindu maule. Bhagavan Shankaracharya ji, Bhagavan Shiva ki stuti karte huye ye bhav vyakta karte hain. Yah prapnoti muda tadarpitamanah. Jivan sa muktah khalu. Jisne apne man ko purna rup mein tad arpita aapke hawale kar diya hai, aapko samarpan kar diya. Aisa jo bhakt hai vah muda prapnoti param anand ka anubhav kar pata hai, karta hai. और वही स जीवन मुक्त वही व्यक्ति वास्तव में पूर्ण रूप में जीवन रहते ही मुक्त हो जाता है. कैसे आपको अर्पण करेगा मन भाई? कंचित काल उमा महेश संबोधन है. हे उमा महेश, उमा के पति, उमा के स्वामी, उमा के महान ईश, उमा महेश जो महान भी है और ईश्वर भी है, और ये उमा के पति हैं. इसीलिए भगवान शिव को यहां संबोधन किया उमा महेश. हे उमा महेश, हे उमा पति, जो तदर्पित मनः, संसार में जो व्यक्ति, हर व्यक्ति मन वाले तो है ही हैं, भले ही धन वाले न हो, मन वाले तो है ही है। इस संसार में मन वाला न हो ऐसा कोई इंसान तो है नहीं। मन तो सभी के पास है, दो चीज सभी के पास है भाई, तन और मन। इस संसार में तन न हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है और मन न हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। लेकिन धन न हो ऐसा बहुत मिल जाएंगे, जैसे आप हम, आप और हमको क्या कहेंगे? धन वाला कहेंगे कि धन नहीं है ये भी नहीं कर सकते हैं, धन है ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी है वो पर्याप्त नहीं है, है ना? इसलिए है कैसे कहेंगे, जो है वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन शरीर जितना है वो पर्याप्त है, जैसा है जितना है वो पर्याप्त है, और शायद 70 के ऊपर तो शायद वो भी पर्याप्त न हो, 70 के पहले पहले तो पर्याप्त था, 70 के बाद जो शरीर है वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि उस शरीर से कोई संतुष्ट तो है ही नहीं। किसी से पूछा जाए तुम इसी शरीर में खुशी हो, राजी हो, इससे बढ़िया शरीर दिया जाए, बोले मरे बिना यदि बढ़िया मिलता है तो हम बढ़िया लेने को तैयार हैं, मरने के बाद यदि लेने को बढ़िया मिलता हो तो इसी में राजी है, जो है उसी में भी जीना तो चाहता है। और गीता के अनुसार तो उसको यह भी पक्का है इससे बढ़िया शरीर मिलने वाला है, फिर भी इसको छोड़ना नहीं चाहता है ना? गीता में तो कहा है ना, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। ये तो पक्की बात है कि ये शरीर छोड़ने का हिम्मत करना हमको जरूरत है, इससे बढ़िया शरीर दूसरा मिलेगा, ये तो गीता प्रमाण है। लेकिन इसको छोड़े बिना, मरे बिना, छोड़े बिना तो नहीं, मरे बिना दूसरा यदि मिल जाए तो बढ़िया था, कर ही रहे हैं भाई। जिस घुटने से असंतुष्टि नहीं होती घुटना दूसरा बदल देते हैं, मरना नहीं पड़ता है, पड़ता है, बिना मरे घुटना बदलते कि नहीं? जिस किडनी से संतुष्टि नहीं है किडनी ट्रांसफर कर देते हैं, बदल देते हैं, मरे बिना बदल देते हैं। और जिस हार्ट से संतुष्टि न हो तो मरे बिना बदल देते हैं, तो अभी तो बहुत से पार्ट्स बदल देते हैं मरे बिना। तो वो हम करते ही हैं, उसमें राजी है, लेकिन मरना पड़े और तब बदले तो फिर वो राजी नहीं है। तो अभिप्राय क्या है? मन हम हमारे पास है, तन हमारे पास है, जो मन और तन है ये दोनों किसको अर्पण करना है? भगवान को अर्पण करना है। अब रही बात मरने के बाद की, पहले आजकल एक फैशन चल पड़ा है ना, मरने के बाद आंख दान करो, मरने के बाद देह दान करो, चल रहा है ना, एक अभियान ही चल रहा है भाई। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीते जी देह दान करो, जीते जी मन दान करो। तदर्पित मना, जो व्यक्ति इसी जीवन में जीते जी ही अपने मन आपको अर्पण करने में समर्थ हुआ, तदर्पित मना, उसकी दशा क्या होगी भाई? जिसने जीते जी अपने मन को परमात्मा को अर्पण कर दिया, उसकी दशा, उसकी भूमिका, उसकी अवस्था कैसी होगी? किंचित काल मुमा महेश भवत पादारविंदार्चनैहि दशामी दिशिम, उसकी दशा ऐसी हो जाएगी कि वह मुदा सहस्रम प्राप्नोति, अनायास ही उसको प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाएगी। तब वह जब तक बचा रहेगा, जिंदा रहेगा, तो क्या करेगा वो? किंचित भवत पादारविंदार्चन, किंचित काल भवत पादारविंदार्चन ही, वह कुछ समय तो आपके चरणों की अर्चना में व्यतीत करेगा, परमात्मा की अर्चना में व्यतीत करेगा, कुछ समय तो परमात्मा को अर्चना पूजा में लगाएगा, और कुछ जो समय होंगे तो वो क्या करेगा? बोले किंचित ध्यान समाधि विश्च, पूजा से जैसे निवृत्त हुआ वह ध्यान समाधि में चला जाएगा, और ध्यान समाधि से निवृत्त हुआ नति भी ही, तो आपके आपको प्रणाम करने में ही समय व्यतीत करेगा, नति भी ही, और उससे कुछ समय बच गया तो क्या करेगा वो? किंचित कथा करना नहीं, और कुछ समय आपके दिव्य कथा श्रवण करने में लगाएगा, कथा करना नहीं, और कुछ समय वो क्या करेगा? किंचित किंचित अवेक्षणैश्च, आपके दिव्य विग्रहों का, आपके दिव्य मूर्तियों का, स्वरूपों का अवेक्षण दर्शन में वो अपने समय को लगाएगा। किंचित नीति भी ही, और कुछ समय स्तुति में है, किंचित नति भी ही प्रणाम में, और किंचित नुति भी ही स्तुति में, आपकी प्रार्थना में लगाएगा। दशाम ईदृशिम, उसकी ऐसी दशा हो जाएगी कि आपके अलावा दूसरे का वह न दूसरे की बात सुनेगा, न दूसरे को देखेगा, न कोई दूसरे की सेवा करेगा, क्योंकि मन आपको अर्पण कर दिया। तो फिर आपके बाद आपके अलावा दूसरे का कोई महत्व ही नहीं रहेगा उसके जीवन में। और इसीलिए प्रारब्ध रहते हुए उसके जो जीवन है उसी से वो समय को व्यतीत करेगा और जीते जी वो मुक्ति का अनुभव करेगा। ये जीवन मुक्त पुरुषों का भक्त अपने जीवन का जीवन मुक्ति अवस्था में इस तरह प्रयोग करेगा। बड़ा ही सुंदर भाव शंकराचार्य जी ने उस अवस्था भक्ति की पराकाष्ठा के भूमिका की बात यहां इस तरह से वर्णन कर दिया। ये नहीं समझ लेना कि एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: जो भी परंपरा के गुरु है वो सब एक ही है, एक ही टाइटल है। हजार होंगे तो हम हजार सब एक ही है। तो पहले के पास से सुन के उसकी बात दसवें को, दसवें की बात सौवें गुरु को, सौवें गुरु की बात नौसवें गुरु को। हा? हम कितनी गलतियां करते हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये बात निकली इसलिए, आप साधक हैं इसलिए बताती हूँ। ये बात मैं और कहाँ प्रवचन करती होती पब्लिक में तो ये मैं नहीं बताती। तो ये जरा ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि आप सतत, आप बड़े भाग्यशाली है कि सतत संपर्क बनाए रखते हैं। ते धन्या हा, ऐसे साधकों को धन्य कहते हैं कि ये संपर्क, ये जो तार है, ये सूरत जो है, आप बनाने की कोशिश चेष्टा करते हैं। इसीलिए ये जो सूरत, जो तार बना है वो टूट नहीं जाए, इसलिए ये अविरोध और अविवाद का सूत्र है। आज आप अपने साथ इसके लेके जाइए। अब कहते हैं

0: स्कन्दवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा वरगुरगृणद्भ्याम् गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्याम् तव किमनुवृत्तिर्न फलति।
1: हे शंकर, अतिशय तेज के अंबार रूप ऐसे आपके स्थूल स्वरूप को नापने के लिए, परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप ही प्रकाशमय नहीं है, उनका जो बाह्य स्थूल स्वरूप है वो भी प्रकाशमय है, अत्यंत प्रकाशमय है। तो बोले ऐसे अंबार रूप आपके स्थूल स्वरूप को पाने के लिए ब्रह्मा जी सत्य लोक तक ऊंचे गए और श्री विष्णु पाताल लोक तक गए, फिर भी उनकी गति कुंठित हो गई, आपके स्थूल स्वरूप को भी वो पार नहीं पा सके। ऐसे ही आपके स्थूल स्वरूप में भी वो स्थूल स्वरूप को भी जान नहीं सके तो सूक्ष्म स्वरूप की बात ही क्या। हे कैलाशपति, दसवां गया ना, नौ हो गया। मैं एक श्लोक आगे आगे तवैश्वर्यम यत्नाद। हे कैलाशपति, अग्नि समान देदीप्यमान शरीर वाले आपके ऐश्वर्य को नापने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी प्रवृत्त हुए, ये बात आ रही है शिव पुराण में। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी को हुआ कि भाई हमारा कारण कौन है, अगर विष्णु जी अकेले ही होते तो कारण ढूंढने की प्रवृत्ति चेष्टा नहीं करते। देखिए, कंपटीशन चेष्टाएं कहां से शुरू होती है, जब दूसरा होता है कि मैं तो वैभवशाली हूं पर मेरे जैसा ये कौन है, और तब कंपटीशन शुरू होती है, कारण शुरू होता है। तो बोले कि ब्रह्मा जी और विष्णु हम दोनों का कारण कौन है, कारण को जानने की क्यों इतनी उत्सुकता हुई। तो बोले अज्ञान निवारण के लिए कारण जानने की उत्सुकता नहीं हुई, वो कारण को पूछना था कि हम दोनों में से बड़े कौन है, हाँ महिमा किसका श्रेष्ठ है, वो जानने के लिए उत्सुकता हुई, दोनों ने तप किया। और इनके जो कारण थे एकदम प्रज्वलित स्तंभ के रूप में, यहां लिखा है कि अतिशय तेज के अंबार रूप, परम प्रकाशमयी तेजस्वी जो स्तंभ था वो स्तंभ उत्पन्न हो गया एकदम। और वो स्तंभ जो है उसकी जो चौड़ाई जो है वो अनलिमिटेड थी, और उसकी जो लंबाई जो है वो भी अनलिमिटेड थी, इन्फिनिटी तक पहुंच रही थी ऊपर और नीचे। तो वो जो स्तंभ प्रकट हो गया, वो स्तंभ में से वाणी प्रकट हुई और वहां कहा गया उन्होंने उनको कि इसका जो मूल है अगर उसको आप जान जाएंगे तो पता लग जाएगा कि आपका स्रोत कौन है, क्योंकि प्रार्थना स्रोत के लिए की गई थी और स्तंभ आ गया। तो विष्णु भगवान ने वराह का रूप ले लिया। देखिए, पाताल में जाने के लिए, धरती में जाने के लिए वराह जो होता है उनका गुण क्या है कि धरती में बहुत सरलता से भीतर जा सकते हैं। तो विष्णु भगवान वराह का रूप लेके नीचे गए स्तंभ के, और हंस का रूप लेके ब्रह्मा जी ऊपर उड़ने लगे पर पार नहीं पा सके। और ये जो बात आती है उसमें ऐसा कहा गया कि विष्णु जी तो पार नहीं हो सके इसलिए फिर से ऊपर आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए और फिर प्रार्थना की कि हे परमात्मा, आप जो भी है वो कोई भी प्रकार से प्रकट हो जाइए, क्योंकि हमें हम आपका रूप जो आपका जो स्थान है वो हम नहीं देख सके, स्रोत नहीं देख सके, मूल तक नहीं जा सके। तो ब्रह्मा जी को हुआ कि अगर विष्णु ये जो है उनके सामने मैं कह दूंगा कि मुझे पार नहीं मिला तो वो कुछ ठीक नहीं लगा उनको। और तब ब्रह्मा जी पांच मुख वाले थे, पंचमुखी थे, ऊपर से केवड़ा का जो फूल है, केवड़ा हम डालते हैं ना, तो केवड़ा का जो फूल है वो पुष्प ऊपर से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने वो गिरते हुए पुष्प को ठहराया और कहा कि हे पुष्प, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो बोले, मेरे जो परम कारण जो परमात्मा महेश्वर शिव जी है उनके मस्तक पे मैं चढ़ा हुआ था, मैं अब नीचे आ रहा हूँ। तो बोले कि मैं जब नीचे विष्णु भगवान को जाके कहूँ कि मैंने शिव जी के मूल मेरे स्रोत को देख लिया तो आप हाँ कहना। और वो बात में आ गए। देखिए, मस्तक पे से, शिव जी के मस्तक पे से थे तब तक कुछ नहीं, और उनके साथ आके भी ये वाणी, देखिए इसीलिए कह के वाणी निर्लज्ज है। हाँ, हम इतने संपर्क, अभी केवड़ा का वृक्ष शंकर भगवान के सर पे, गुरु आपको अपने सर पे बिठाए, या ना आप अति प्रिय होंगे तो ही ना, कोई सर पे किसको बिठाएगा? अपने पुत्र को भी कोई सर पे नहीं बिठाता, क्यों नहीं? सर पे तो कोई नहीं चाहिए। हाँ, हृदय तक आज आकंठ लगा सकते हैं, सर पे तो कौन बिठाएगा? अतिशय प्रेम है तो सर पे बिठाएगा कि ये सर पे बैठ के भी तकलीफ मुझे नहीं देगा, उसी को हम सर पे बिठाएंगे। करोड़ों में से कोई एक मिलेगा जिसे सर पे बिठा सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम गुरुजनों को और भगवान को सर पे बिठाते हैं, पर गुरु हमें सर पे बिठाएगा तो हमारा अहोभाग्य। तो ये केवड़ा का जो पुष्प है वो शंकर भगवान के ऊपर थे, ऊपर रहे थे, अतिशय प्रिय होंगे, शुद्ध चित्त होंगे, तो भी एक ब्रह्मा जी की वाणी इनफ हो गई उन्हें झूठ बोलने के लिए। हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, हमें तो किसी ने सर पे भी नहीं बिठाया है, कितना सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए ये निर्लज्ज वाणी जो है उसका प्रभाव और प्रताप है, उससे बच के रहना ठीक होता है। तो अभी बहुत दोनों ने प्रार्थना की, तो शंकर भगवान जो है, शिवजी जो है, उन्होंने एक लिंग बाहर निकाला। ये जो स्तंभ है, स्तंभ में से एक आकार बाहर आया, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग यानी ये सेमी सर्कुलर, ये लिंग नहीं है मात्र, लिंग यानी चिन्ह। वो बोले, परमात्मा कोई चिन्ह दे दीजिए, तो पृथ्वी का चिन्ह निकाला। ये जो निकला जो बाहर, वो पृथ्वी का चिन्ह, और वो सबसे पहला लिंग जो बाहर निकला वो पूरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल पर्वत आपको पता है, रमण महर्षि जी की बात सुनी है, पूज्य स्वामी जी ने बहुत सुंदर टीका उपदेश सार लिखी है उसके ऊपर। तो ये जो अरुणाचल पूरा पर्वत है वो सबसे पहले निकला, और ये पूरी पृथ्वी यानी पहला जो पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ, ये प्रकाशमय तेजोमय स्तंभ में से उत्पन्न हुआ। और ये जो लिंग बाहर आया, वो बोले, शंकर भगवान बोले कि मेरा चिन्ह मैं दे रहा हूँ, इसे आप नाम भी नहीं दे सकेंगे, रूप से भी वर्णन नहीं कर सकेंगे, फिर भी इसमें मेरा सगुण और निर्गुण दोनों रूप बराबर मेरा वैभव बनाए बैठा है। अब बताइए कि ये मेरे रूप को आप ऊपर और नीचे गए और क्या किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने देख लिया है, तो वो केवड़ा का जो पुष्प है उसके सामने शिव जी ने देखा, क्योंकि परमात्मा को भी पता है कि मेरे वैभव को कोई पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, और पहुंचने क्यों नहीं पहुंच सकते भाई? तो हम ये व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं क्या? तो बोले, ऐसा नहीं है, पहुंचने वाला ये कहने के लिए भी अवेलेबल नहीं होता कि मैं पहुंच गया हूं। यस्या मतम तस्य मतम, मतय यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। जो कहते हैं मैं जान गया हूं वो नहीं जानता, और जो कहते हैं मैंने नहीं जाना वो हकीकत में जानता है, क्योंकि वाणी प्रवृत्त नहीं हो सकती है। ये परमात्मा को तो पता ही है ना, इसीलिए मैंने कहा कि संतों के साथ बहुत ज्यादा वो मत कीजिए, शांत रहिए, हमारी गलती हो जाती है इसलिए। तो यहां ये ब्रह्मा जी शिव जी को कहते हैं कि मैंने आपका पार ले लिया, अब ये कैसी मश्करी हो गई? तो केवड़ा का जो पुष्प है उसके सामने शिव जी ने देखा कि भाई, तुझे तो मैंने मेरे सर पे बिठाया है, तो झूठ नहीं बोलेगा तू, यू विल नॉट लाई। केवड़ा का पुष्प बातों में आ गए और हां बोल दिया। जैसे ही हां बोल दिया, तब से जैसे हां बोला, पहले तो ब्रह्मा जी का जो पांचवा मस्तक था वो भेदन कर दिया शिव जी ने, मस्तक ही चला गया। और ये कृपा की ब्रह्मा जी के ऊपर कि जो वाणी इससे प्रवृत्त हुई है ना, जो मेरे बारे में तुझे झूठ बुलवा गई, वो वाणी को ही मैं निकाल देता हूं। मस्तक ही भेदन कर लिया यानी अहंकार का नाश किया। परमात्मा को प्राप्त करने की एक ही बात है, आपके अहंकार को अल्प कर दो। और गुरुजनों के साथ मैं बात करने के लिए इसलिए ना बोलती हूँ कि कोई एक व्यक्ति जीवन में ऐसी रखिए जिसके पास हमारा अहंकार जीरो हो जाए। देखिए, ये तो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, पैर छूने देते हैं तो कृपा करते हैं। क्यों? हमारा अहंकार झुकता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर ऑब्लाइजिंग अस। कोई ऐसा वो निमित्त बन के बैठे हैं जिस जो अवेलेबल है 24 आवर्स, जिसके पास अहंकार हम झुका के ही रखे। ये इतने इसे समझिए। तो ये पांचवा सर भेदन हो गया और केवड़े के पुष्प को भी श्राप मिला। क्या मिला? कि भाई अभी सर पे नहीं बिठाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो वो छत्र पे चढ़ता है, केवड़ा का वृक्ष, उसके बाद कभी भी। ये सब सिंबॉलिक है। इसे क्या समझना है कि इतना संपर्क रहने के बाद भी

इसलिए। तो यहां श्री पुष्पदंत जी ने बात क्या की है कि अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से आपकी स्तुति करते हुए दोनों आपके स्वरूप को नहीं जान पाए, इसलिए आप प्रत्यक्ष हो गए उनके लिए, तो आपकी सेवा जो है वो क्या फलती नहीं है? स्वयं तस्थे ताभ्याम तव किम अनुवृत्तिम न फलती। यहां क्या कहते हैं पुष्पदंत जी कि आपको जानने की चेष्टा आपको जानने के बराबर है, आपको जानने की चेष्टा भी कश्चित यतति सिद्धये, ऐसा बताया है कि कोई कोई आपको जानने के लिए प्रवृत्त होता है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैन मन्य श्रुणोति श्रुत्वा पियनम वेदन चैव कश्चित। आपको जानने के लिए प्रवृत्त होना भी आश्चर्य है और वो भी आपकी सेवा ही है, और ये सेवा को सेवा से प्रसन्न होकर आपने अपना स्थूल रूप जो है वो बता दिया है। यानी परमात्मा को जानने की हमारे लिए अब क्या संदेश है कि परमात्मा को जानने की थोड़ी भी आप चेष्टा कीजिए, किस प्रकार चेष्टा करते हैं उसकी फिक्र छोड़ दीजिए, और हमें अपनी फिक्र नहीं लगी रहती है। थोड़ा साधन थोड़े सत्संग में जाने लगे तो मेरे बाजू वाला ये परमात्मा से कैसे पहुंच रहा है उसकी फिक्र में हम ज्यादा रखेंगे, हम तुरंत उसके गुरु बन जाएंगे। देख तू ऐसा करना, ऐसा करना, ये करना, ये पाठ करना, ये जप करना, ये मंदिर में जाना, मैं जाती हूँ इसलिए। भाई आप जाइए, हमें हमारा जाने दीजिए। अगर आपके पास गुरु है, कोई संदेश देने वाला है, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, तो फिक्र मत कीजिए, फिर सबका मत सुनिए, समाहित हो जाइए और चिंता भी मत कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। करना क्या है, यहाँ कहते हैं कि ये न कहना प्रकार है ना, कोई भी प्रकार से उपासना की तो परमात्मा अपना जो सगुण स्वरूप है ना वो आपके लिए बनाएंगे ही। 33 करोड़ तो बना दिए हैं, अगर जरूर पड़ी तो और एक भी बनाएंगे, आप उसकी फिक्र मत करना। यहाँ परमात्मा कैसे है, वो अटकने ही वाले नहीं है, वो रुकते ही नहीं है। क्यों रुकते नहीं है, क्योंकि ये जो महासागर जो है, मुंबई में महासागर है, तो वहां वेव्स उठते हैं, उसकी कोई गिनती होती है क्या? 10-12 वेव्स ज्यादा बना लिए तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे आपकी जरूरत है, आपकी वृत्तियां ऐसे हो गई कि आपको सगुण साकार रूप की जरूरत है, तो वो उत्पन्न हो जाएगा, आप चिंता मत करना। नहीं होता है वो हमारी मन की अशुद्धियां है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसे उत्पन्न नहीं होना है। नहीं तो यही नरसिंह मेहता, यही मीराबाई, यही तुकाराम, यही नामदेव उनके लिए उत्पन्न नहीं हो सकते थे। पर ये होना, उत्पन्न होना बड़ा कठिन है, पर हमारे हाथ में है। मात्र और मात्र तम एव एकम आत्मानम विजानथ अन्यम वाचो विमुंचे थ, मुंडक उपनिषद में इसलिए कहा है कि अन्य बात छोड़ दीजिए, अपने शरीर मन बुद्धि की बातें ही छोड़ने को कही है, तो दूसरे के शरीर मन बुद्धि की बातें तो करनी ही नहीं है ना हमें। हाँ, कहाँ गए, क्या करते हैं, कैसे हैं, जाति नीति कुल गोत्र, हाँ सबकी बातें हम सब जानना है, सब बातें करते हैं। और यहाँ क्या कहा है शंकराचार्य जी ने, कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम। तो ये जब वर्जित है, दूरगम है, तो उसकी बात तो नित्य वर्जित है, और इतना कर लिया तो ये चित्त शुद्धि का साधन हो जाएगा, ऐसा परमात्मा बता रहे हैं। अब आगे कहते हैं

मेदम। अब चिंता मत कीजिए, उच्चारण अच्छे होने ही चाहिए, पर इसका श्रवण या सुन भी लिया तो भी वो सर्प दंश के मंत्र के जैसा ये हमें असर करेगा। हे त्रिपुर हर, सर्व का पराभव करने से अनायास बिना वैरी यानी कोई भी बिना दुश्मन, ये जो रावण की यहां बात है कि ये जो रावण थे सर्व का पराभव कर लिया यानी कोई ऑपोजिट

बचा ही नहीं, ऑपोजिशन बचा ही नहीं, निर्वैर हो गए। ऐसे त्रिभुवन को लेने के बाद ये जो रावण थे आपकी ही कृपा से त्रिभुवन के अधिपति बन गए और ये 20 बाहुओं को धारण करने वाले रावण उन्होंने क्या किया। देखिए बहुत बड़ा त्रिभुवन का भी राज्य जिसने ले लिया हो उसे कितनों के साथ लड़ना पड़ा होगा, कितनी वैर वृत्ति अंदर खड़ी करनी पड़ी होती। ये जब वॉर छोटा मोटा अपना भी वॉर होता है तो वॉर में क्या होता है कि वॉर में ये जो नगाड़े बजाए जाते हैं, रणशिंगा ये जो बजाए जाते हैं वो क्यों है, वो अमुक प्रकार ये जो सब सुनते हैं ना तो अमुक प्रकार की, इसीलिए अमुक प्रकार का जो संगीत जो है वो सुनने की बाधा है, वो सुनने की मनाही है, ना बोला है हमारे शास्त्र में वो, इसीलिए क्यों ना बोला है। भक्ति संगीत या भजन उसकी बात अलग है, पर ऐसे म्यूजिक जो है जो आपकी अंतर वृत्तियां अंतर इंद्रियों को बहुत सतर्क और सतेज कर देती है। ऐसे केमिकल चेंजेस आता है वाजिंद्रों को सुन के कि आपको सामने वाले को मारने का ही मन हो, आपका दोस्त भी बैठा हो तो भी आप मार देंगे उसको। क्यों? क्योंकि वो म्यूजिक का प्रभाव है। तो यहां और इसीलिए वॉर में ये सब बजाए जाते हैं, उकसाए जाते हैं सैनिक। इसीलिए कहने का तात्पर्य कि जो जिस रावण ने त्रिभुवन विजय कर दिया उसमें कितना तमस कितना रजस होगा कि एक भी दुश्मन बचा नहीं है। तो ये यहां प्रशंसा की बात नहीं है कि दुश्मन नहीं बचा है, दुश्मन मार दिया और नहीं बचा वो प्रशंसा की मार नहीं है। दुश्मन जिए अपने ही प्रभाव में अपने ही तरीके से जिए और हम कह सके कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है तो कुछ बात हुई, या तो दुश्मन को ही नहीं रखा। यानी इतने प्रभाव तमस और रजस वाला ये जो रावण थे जिसके बाहु लड़ने के लिए ही तत्पर रहे थे, ऐसे रावण ने भी क्या किया, अपने नव मस्तक अपने ही हाथ से छेद के आपको चरण में माला पहना दी। कहने का तात्पर्य क्या है कि रावण के तमस से ज्यादा तमस किसी का नहीं हो सकता। उसने भी अपना अहंकार आपके सिर में झुकाया, आपके पैर में झुकाया। रावण से ज्यादा राजसिक कोई नहीं हो सकता, यानी ये अवधि बताई है, मर्यादा बताई है कि ये इससे ज्यादा आगे नहीं। हम बोलते हैं ना लिमिट, एंड लिमिट, तो इससे ज्यादा रजस की लिमिट नहीं हो सकती। और उन्होंने भी ये नव मस्तक जो है वो आपके चरण में रख दिए। हे परमात्मा, उनकी जो दृढ़ भक्ति है ये आपके प्रति जो भक्ति है उसी का प्रभाव है कि इतना रजस इतना तमस इतने दुश्मनों को मानने की वृत्तियां रखने वाले रावण ने भी आपको, यानी आपका प्रभाव ऐसा है कि आपके प्रभाव के पास रजस और तमस का भी नहीं चलता। तो हे परमात्मा, मेरा भी मेरे भीतर भी छोटा मोटा रजस, मुझे भी रजस आया था कि मैं पुष्प की चोरी करूं और आपको ही चढ़ाऊं। मुझे भी तमस था, ये तमस का ही दोष था कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने प्रमाद किया। प्रमाद से हम क्या करते हैं कि हमारे भीतर परमात्मा ने जो भी हमें सिद्धियां दी है ना, थोड़ी बहुत भी, देखिए ये बोल सकते हैं ना, प्रवचन की बात नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ वाणी ये बोल सकती है ये भी सिद्धि है, ये कान सुन सकते हैं वो भी सिद्धि है, आंख देख सकती है वो भी सिद्धि है। तो ये सिद्धियों का गलत उपयोग किया, तो सिद्धियों का अतिशय गलत उपयोग करने वाले ये जो रावण है, और ऐसा मेरी भी रावण की गलतियां, इतनी बड़ी सिद्धियों का दुरुपयोग भी आप माफ कर सकते हैं, आप उसके लिए प्रसन्न हो सकते हैं, तो मेरे लिए तो आप प्रसन्न हो जाइए। इतना ही पुष्पदंत जी को रावण को याद करा के कहना है। किसी को कुछ काम कराना है तो क्या कहते हैं, पहले के एग्जाम्पल्स देते हैं अपना काम कराने के लिए कि भाई वो समय में ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब मेरे बारे में भी आप ऐसी दया की, आपको पता होगा ज्यादा कि जब केस रिप्रेजेंट करते हैं तो पिछले जो केसेस ऐसे हो गए हैं वो पूरे उसके नोट्स लेके जाना पड़ता है और क्या कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा पास्ट में हुआ था, तो अब आप मेरे ऊपर भी रहम नजर रखिए और मुझे भी इसमें से क्षम्य
कीजिए, मुझे भी क्षमा दीजिए। ऐसे ही पुरमथन ये पुष्पदंत जी कहते हैं कि इतने बड़े बड़े रावण जैसे केस हो गए, मैं तो छोटा मोटा हूँ, हाँ मुझे भी आप क्षमा कर दीजिए हे प्रभु। अब रावण की ही बात निकली तो पुष्पदंत जी को कहा कि ये परमात्मा आप शांति से सुन ही रहे हैं, तो और एक बात भी मैं बता ही देता हूँ, अब कहने के लिए मैं बाकी नहीं रखता हूँ। तो पुष्पदंत जी कहते हैं

0: प्रमयतः अलव्यापाताले प्यलस चलिताङ्गूष्टशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मूयति खलः।
1: पर अंत में क्या है, ये शरीर मन बुद्धि का मर्यादित जो संगात है वो अपनी गलती कर ही देता है, जैसे केवड़ा का जो पुष्प है उसने गलती कर दी। नौ सर धरा दिए परमात्मा को, परमात्मा प्रसन्न हो गए, वरदान सब दे दिया, तो अब क्या होगा? अब बोले कि अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं ये कैलाश पर्वत जो है इतना पवित्र है आपको लेके ही मैं जाऊंगा लंका में। देखिए थोड़ा बख्श दिया तो परमात्मा को ही उठाने चले, यानी हमारे व्यवहार में भी पूरा बख्शा नहीं जाता, माफ किया जाता है पर सजा भी दी जाती है। वो इसलिए कि भाई मैं आपको माफ करता हूं, आपने ये केस रिप्रेजेंट किया, पिछले जो आपने केस बताए उससे यू आर एंटाइटल्ड टू बी फ्री। मैं आपको जेल नहीं भेजूंगा पर मैं फाइन तो भरने, आपको फाइन तो लगेगा ही। ये फाइन, ये परमात्मा इतने भोले, इसीलिए उनको भोले कहते हैं, भोले शंकर, कि ये रावण को फाइन भी नहीं दिया, उन्होंने नहीं लिया उनके पास से। ऐसे ही पूजा उनके रजस और तमस को पूरा माफ ही कर दिया, इतने प्रसन्न हो गए शंकर भगवान। तो क्या हुआ कि ये उनको ही लेके उठा के चलने लगे। ऐसा कहा है कि रावण आपकी ही भक्ति करके अपनी जो 20 भुजाएं थी उसमें शक्ति प्राप्त की थी, पर आपसे ही प्राप्त शक्ति से आपके ही निवास स्थान कैलाश को उठा के अपनी भुजाओं का जो पराक्रम है वो आपको बताने चले, आपकी ही शक्ति का प्रदर्शन आपके पास किया। ये साधक को समझ जाना चाहिए कि ज्ञान रूपी शक्ति कोई भी गुरुजनों के पास, कोई भी शास्त्र वेद के पास हम ये शक्ति ले तो उसका उपयोग एटलीस्ट इतना तो दिमाग नहीं चलता कि उसके सामने तो मत कीजिए, बाहर किसी के सामने तो करना ही नहीं है, पर ये बुद्धि कितनी कुबुद्धि हो जाती है, उसके सामने भी तो है परमात्मा, मेरी कुबुद्धि से अगर मैं ऐसा करूं, पुष्पदंती जी कहते हैं, तो मुझे आप क्षम्य करना। तो यहां रावण का जो है वो दृष्टांत देके कहते हैं कि आपके ही ऊपर आपकी शक्ति का प्रयोग हुआ, तो हुआ क्या है परमात्मा, शंकर भगवान समाधिस्थ बैठे थे कैलाश के ऊपर, तो उन्होंने पैर का जो अंगूठा है वो थोड़ा ही दबाया, अपने आसन के ऊपर ही ऐसा ही दबाया, और रावण जो है 200 भुजाओं वो पर्वत के बीच में आके चकनाचूर हो गए, रावण वहीं रख गए। परमात्मा क्या करते हैं पता है? अब ये रावण का भी, रावण भी क्या सोच रहा है, उसके मन का कारण भी परमात्मा है। रावण मुझे उठाने वाला है ऐसा शिवजी को नहीं पता होगा क्या? तो पहले से ही बता देते ना, पहले से ही वजन इतना कर देते कि रावण उठा ही नहीं सकता, पहले से पैर क्यों नहीं दबाया? नहीं, शिष्य के भीतर, सच्चे परंपरा के जो गुरु है, शिष्य के भीतर उसका मैक्सिमम जितना अहंकार है ना वो लाने की चेष्टा करते हैं, शांत बैठे रहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार में इतने से भी काम हमारा अटक जाएगा, ये आके खड़ा रह जाएगा अहंकार जो छोटा रखा है। तो गुरुजन हमारे ऊपर अति कृपा करते हैं, उठने देते हैं अहंकार, उठने देते हैं, उतने तक उठने देते हैं कि ये तो पर्वत उठा के चला गया, खुद के आसन से भी हला दिया तो भी चुप रहे गुरु। तो अभी क्या हुआ, इतना कर लेने दे, उसका पूरा जो अहंकार, पूरा जहर निकाल लिया, गुरु कृपा करते हैं, ये कृपा दिख नहीं रही है, पूरा जहर निकाल लिया अर्जुन रावण का, और फिर एक अंगूठा दबा के प्रभाव रख दिया कि भाई बैठ जा, ये मेरे ही प्रभाव से तेरी भुजाओं में बल है, तू भूल गया रावण, तो जरा यहां सो के याद कर ले, यहां दबा दबा मेरे पैर के नीचे दबा दबा भी तू याद कर ले मेरे प्रभाव को। तो हे परमात्मा, ऐसी गलती मुझसे, पुष्पदंत जी कहते हैं कि परमात्मा रावण ने जो गलती की वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं वाकिफ हूं ये गलती से। देखिए अब हम भी वाकिफ हो गए हैं ये गलती से, अब सजा डबल होगी, रावण को तो इतनी सजा हुई, फिर छूटा भी, हम तो छूटेंगे नहीं, फिर बेटर लक नेक्स्ट बर्थ, वो उसमें भी आ रहा नहीं है, उसका कोई यही नहीं है। पुलिस जब कुछ गुनाह करते हैं तो सजा ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि रूल्स मालूम है, रावण को ये पता नहीं था, ये तो बाद में रचा गया। तो पुष्पदंत जी कहते हैं कि मुझे पता है आपके वैभव का, इसलिए मैं ये गलती करने वाला नहीं हूं। तो ऐसे रावण का प्रभाव बताने के बाद अभी बाणासुर जो है ये रावण बाणासुर क्या है, अलग अलग अहंकार की सब चेष्टाएं हैं, अलग अलग अहंकार के रूप है। अहंकार हमारे भीतर बहुरूपिया बन के आता है, वो बहुत अच्छा बन के आता है, सज दत्त के आता है, बंठन के आता है। तो ये जो बहुरूपिया जो है, जो अहंकार जो है, वो मुखौटा हटाने के लिए ये स्तोत्र, ये स्तुति, ये परमात्मा का नाम भजन आपके अहंकार के मुखौटों को हटाने के लिए श्रेष्ठ साधन होते हैं। इसीलिए भक्ति, नाम स्मरण, चिंतन करने कहे गए हैं। तो ऐसे ही परमात्मा की भक्ति करते करते धीरे धीरे उनके सगुण निर्गुण साकार रूप में डूबते डूबते उन तक हम पहुंच जाए, ऐसी ही परमात्मा और गुरुजनों से प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Istri ne jali dal khila di, laga hua chawal khila diya to vairagya ho gaya. Ka sansar aisa hi hai. और क्या हुआ? कहा पहुंच गए हरिद्वार, कहा छोड़ो संसार, वैराग्य तो हुआ लेकिन पुत्र पहुंच गया। उसने कहा पिताजी क्षमा करो, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। कहा स्वामी जी घर जाऊंगा। कहा क्यों? आप तो कह रहे संसार मिथ्या है, संसार ऐसा ही है। कहने लगे चलो अपने ही तो हैं, पुत्र है, गलती हो गई कोई बात नहीं। फिर आ गए। तो ये क्या है? हमारा लगाव बैठा हुआ, हमारा अध्यास, इसी को अध्यास कहते हैं, अभिनिवेश कहते हैं। और अभिनिवेश कब तक रहता है? जब तक कच्चापन है। नारियल में कच्चापन है तब तक वो गिरी, उससे चिपकी हुई। लेकिन वही जल समिट करके उस गिरी में पहुंच गया, और समिट करके गिरी में पहुंचा, परिपाक उसका हुआ। इसी को अभ्यास कह दिया है। अभ्यास न तो कौन थे वैराग्य, बगैर अभ्यास के वो पकता नहीं। और कोई भी चीज है संकेत किया, काले न पच्यते विद्या सस्य में वो, जैसे फसल जो है आज बो दो आज नहीं पकेगी। किसान को छह महीने, दो महीने, तीन महीने जैसी फसल है वैसी प्रतीक्षा करनी पड़ती, और जो है उसकी रखवाली करता, उसके विकारों को निकालता रहता, उसमें जल देता रहता, उसमें खाद्य पदार्थ देता रहता, तब जाकर के जो है वो फसल पकी उसे मिलती है, तब उसका लाभ। ऐसी विद्या भी जो है, हम जो है उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परिपाक करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, और जब पक जाती है तो जैसे जल जब समिट करके गिरी में पहुंच गया, और गिरी में समिट करके जल जब पहुंच जाता है तो फिर उसमें और परिपाक होता है, तो उससे एक हो जाता है। जैसे ही एक होता है तो तैल रूप बन जाता, और जब तैल रूप बन गया तो वही गिरी जिसको चाकू से निकाल रहे थे लेकिन फिर भी बड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन अब उस गोले को यूं हिलाते हो तो उसमें रहते रहते और वो उससे अलग हुआ है, उसी में रहते रहते क्या है अलग हुआ। तो ये खोपड़ा समझ लो, स्थूल शरीर, ठीक है ना, और उसमें जो है तहलादी वैराग्य समझ लो, और उसमें जो है गिरी है वही कारण शरीर समझ लो, ठीक है ना। तो ये तीनों में एकता वहां पर हो जाती है, और एकता हो जाती तो वो अलग हुआ। जनक आदि के उदाहरण सुनते हो, पृथु आदि के उदाहरण सुनते हो, उनके जीवन में ये आया, उन्होंने इस व्यक्तिगत ज्ञान को प्राप्त किया, और जब व्यक्तिगत ज्ञान उनके जीवन में आया तो उनकी भी ऐसी स्थिति हो गई। उनको छोड़ करके गुफा में बैठना नहीं पड़ा, उनको छोड़ करके संगम में बैठना नहीं पड़ा है। अपरे गिरीणाम संगमे नदी नाम दियो दिया विप्रो अजायत, यह विप्रत बुद्धि कब प्राप्त होती है? तो कहा नदियों के संगम में है, गुफाओं में बैठ करके एकांत में बैठ, लेकिन यह यहीं पर भी हो जाती, लेकिन कब होगी? तो उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो ये संकेत किया। तो ये जो है वैराग्य, ऐसा हमारा वैराग्य होना चाहिए, और वो ऐसी जब स्थिति परिपाक की हो जाती है तो तीनों से ही वैराग्य हो जाता है। उसे न स्थूल में अभिनिवेश रह जाता है, न सूक्ष्म में अभिनिवेश रह जाता है, और न कारण में अभिनिवेश रह जाता, तीनों से ही। और इसका कसौटी इसकी क्या है, कैसे जानोगे? तो देखो इस स्थूल में आपको पता चल जाता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ी सुंदर चर्चा की। अर्जुन के प्रश्न के अनुसार किम प्रभासित किम आसित इत्यादि जब उसने प्रश्न किए तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? यदा माने जिस काल में प्रजाहात त्याग देता है, कहा किसको? सर्वान कामान, संपूर्ण कामों, ये स्थूल रूप से संकेत कर दिया। लोक में हम देखते हैं कि जैसी स्थिति मिल गई वहीं पर सो गया तो कोमल कठोरता का उसे बहन ही नहीं रहा, वैराग्य हो गया स्पर्श, और जो खाने में सुपाच्य मिल गया तृप्ति हुई तो ऐसे स्थूल कामों का त्याग तो लोक में देखने में आता है, लेकिन सूक्ष्म जो काम और सूक्ष्म का पता स्थूल से चलता नहीं, उसकी रहनी सहनी से पता चलता, वो पता कब चलता, जब आपको ही आपके बाहर के त्याग को तो स्थूल त्याग को तो दूसरा भी जान सकता है, लेकिन आपका जो सूक्ष्म त्याग है उसे दूसरा उसे कौन जानता, उसे आप ही जान पाओगे कि अभी त्याग हुआ कि नहीं। वो कैसे, यदि स्वप्न आ रहा है तो समझ लेना अभी सूक्ष्म का त्याग नहीं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, जब कह दिया सर्वान कामान प्रजाति, सारे कामों का त्याग कर दिया, फिर रह क्या गया, लेकिन फिर भी क्या बोले, पार्थ मनोगत, मन में रहने वाले, अंतःकरण में रहने वाले, सूक्ष्म शरीर में रहने वाले, उनका त्याग कब पता चलेगा, स्वप्न आना भी बंद, क्योंकि स्वप्न है क्या, अविद्या काम कर्म संस्कारों से ही तो स्वप्न आता, यदि अविद्या काम कर्म की निवृत्ति हो गई तो स्वप्न आएगा ही नहीं। तो स्वप्न, और कहने लगे कारण की कसौटी क्या, चलो सूक्ष्म खा तो अपने को पता चल गया कारण रूप, तो इसके लिए तो उदाहरण ही आता है, क्या उदाहरण, जैसे जड़ भरत, जड़ भरत के अंतर्गत सूक्ष्म और स्थूल काम नहीं किंतु कारण रूप काम पड़ा हुआ था, जिसके कारण उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा, तो पुनः जन्म होता है और स्मृति आपको बनी रही तो समझ लेना कि कारण रूप काम बना। तो इसलिए बीज सूक्ष्मा ध्याम सह प्रजहाती, जहां पर बीज रूप, कारण रूप, सूक्ष्म रूप और सह शब्द का अर्थ कर दिया स्थूल, तीनों का त्याग हो जाता है, तब कह दिया स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, वही क्या है स्थित प्रज्ञ, क्यों, आत्मन्येव आत्मना संतुष्टा, बोध उस व्यक्तिगत ज्ञान में ही अब एकत्व को प्राप्त हो गया, ये संकेत कर दिया, तो ये वैराग की बात आ गई। तो यहां पर संकेत जो किया गया कि ऐसे जो बृहस्पति हैं, ब्रह माने ज्ञान और उसके पति माने स्वामी, उस पर प्रभुत्व रखने वाले, उसको जानने वाले, ऐसे वह बृहस्पति मेरा कल्याण करें, अर्थात वह बल दें, जैसे उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया वैसा ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो, अर्थात दूसरे रूप में उनको गुरु माना गया, तो मने गुरु में पठन पाठन की प्रक्रिया होती है, अर्थात वो अपनी शिक्षा के द्वारा मुझे सुशिक्षित करें और सुशिक्षित करके उस ज्ञान वाला बना, ये प्रार्थना की गई। आगे शब्द आया विष्णु रुक क्रमा, विष्णु शब्द व्यापक शक्ति का परिचायक, उरु माने महान, क्रम माने पूर्व पर की व्यवस्था, पूर्व और पर की व्यवस्था, जन्म, जीवन, स्थिति, ये क्या है, एक क्रम है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये भी क्या है, एक क्रम है, एक व्यवस्था है, है? बाल्य, तरुण, वृद्धा, ये भी क्या है, एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था कौन कर रहा है, विचार करो, इस व्यवस्था को देने वाला कौन है, जो अहंकार करते कि करे ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि इस व्यवस्था देने वाला कौन है, बाल्यावस्था और बाल्या से तरुण का आ जाना और तरुण से वृद्धा का आ जाना, आप तो नहीं चाहते कि वृद्धावस्था आ जाए, हैं? कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता कि वृद्धावस्था आ जाए, हाय राम काहेऊ भयऊ हम डुकरा, याद बुढ़ापा कबहू न कीनो, तबहू आए गयो ससुरा, हाय राम काहेऊ भयऊ हम डुकरा, नहीं चाहते, हैं? लाठी टेक चलत पग थाके, बालापन के भुनरा, हाय राम काहेऊ भयऊ हम, तो ये सब नहीं चाहते कि बाल सफेद हो जाएं, नहीं चाहते कि झुर्रियां पड़ जाएं, लेकिन ये सब हो रहा है, ये कौन सी व्यवस्था के अनुसार हो रहा और वो व्यवस्था किसकी है, विचार करो, ये क्रम जो है देने वाला कौन है, ये व्यवस्था देने वाला कौन है, जो देने वाला है वही क्या है, और ये कैसी व्यवस्था है, महान व्यवस्था कह दिया, इसमें कोई परिवर्तन कर सकता, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और जो है शिशिर, हेमंत, बसंत, ये क्रम किसने बताया, ये शीतोष्ण का क्रम किसने किया, कालों का रात्रि दिन संवत्सर आदि ये सब क्रम कहां से है? तो ये सारी की सारी व्यवस्था देने वाला जो है, इस क्रम की श्रृंखला को प्रवाहित करने वाला जो है, वो कहां कर वो करके कर रहा? तो कहा वो सर्वत्र विद्यमान है, उसी अवस्था में भी बैठा हुआ है, पूर्व की अवस्था में भी बैठा हुआ है, पर की अवस्था में भी उसकी सत्ता है, पूर्व पर की अवस्था न रहे, मध्य की अवस्था रह जाए, लेकिन वह वहां पर भी अवस्थित है, इसलिए उसकी सर्वव्यापकता। तो विष्णु कैसा है? का सर्वव्यापक। ऐसे उस विष्णु की यह श्रेष्ठ व्यवस्था है और उसकी व्यवस्था से ही ये सारी सृष्टि चल रही। हम सुनते तो हैं, यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम। क्या कहा? जिसने ब्रह्मा को, माने सृष्टि के रचयिता को क्या है, सबसे पहले निर्मित किया, और निर्मित करके फिर क्या किया, क्योंकि वो निर्माण करने में व्यवस्थित कर सके तो क्या किया? तो कहने लगे कि यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम वेदांश प्रहेणोत, उसी में क्या है, वेद ज्ञान का प्रहरण भी कर दिया, क्योंकि बगैर ज्ञान के कोई कर्म नहीं होता। पहले नियम है जानात इच्छति करोति, पहले ज्ञान होता है फिर इच्छा होती है, और इच्छा होने पर फिर प्रयत्न व्यापार होता है, ये नियम है। तो इसलिए पहले उसने उस ब्रह्मा को बनाया, और बनाया क्या, तो इसको भी समझ लो, वेद क्या कहता, हिरण्यगर्व समवर्ताग्रे, जो ये हिरण्यगर्भ है वो उससे भी पहले विद्यमान है, वर्तते माने विद्यमान, उसकी विद्यमानता उसकी सत्ता है, और वही क्या हुआ, हिरण्यगर्भ हो गया। हिरण्यगर्भ क्यों कहा, तो बड़ी मोटी भाषा में समझ लो, हमारे अंदर अहम जो है ये क्या, हिरण्य रूप है, और ये कहां आया, तो ये चिदाभास कहां आया, तो चिद में ही आया है ना, तो हिरण्यगर्भ समवृताग्रे, और वैसे ही समष्टि की दृष्टि से सोच लो, इसे ब्रह्मा आदि हिरण्यगर्भ कहते, समवृताग्र भूतस्य जाता हो, वही क्या करने वाला है, सारे प्राणियों को सारे भूतों को उत्पन्न कर, भूतस्य जा पति रेक आसी, वो केवल एक ही पति, यहां तो अनेक बतला दिए, गुण विशेष को लेकर के इंद्र भी कह दिया, वरुण भी कह दिया, मित्र भी कह दिया, एक एक देश विशेष के, एक एक गुण विशेष के देवता, लेकिन इन सबका भी जो है संयमन करने वाला, सब में भी जो व्यापक रहने वाला, सबको भी ये सामर्थ्य देने वाला, वो कौन है? तो कहने लगे वो व्यापक शक्ति है, उस व्यापक शक्ति को विष्णु नाम दे दिया, और वो ही इस सब में ये सब करवा रही, उसके बल से ही ये सब हो रहा। तो ऐसी जो व्यापक शक्ति है, वो व्यापक शक्ति से फिर प्रार्थना करने लगा ऋषि कि विष्णु रुक क्रमा, वह विष्णु है क्या करें, हमारा कल्याण करें, अर्थात कल्याण करें, कल्याण कब होगा, जो हमारे अंदर उससे विपरीतता है उसकी निवृत्ति हो जाए, और परीतता आ जाए तो कल्याण हो जाए, तो हो सकती हमारे अंतर्गत दे दें, ये संकेत किया। अब और विचार कर लो, इस व्यवस्था को आप विचार करके देखें, जैसे कह दिया जन्म जीवन और मृत्यु और सर्व की सत्ता प्रतीयमानता, ये क्या है, पूर्व पर की जो व्यवस्था है कैसे होती, तो वेद में इस बात को लेकर के बड़ा सुंदर मंत्र आया शुक्ल यजुर्वेद में, और भगवान ने उसको सरल ढंग से गीता में कहा। तो वेद में मंत्र आया, त्वा मौसदी सर्वा शोम, और दूसरे कृष्ण यजुर्वेद को लेकर के थोड़ा परिवर्तन भी किया, वहां संकेत किया, त्वा मिमा मौसदी विश्वाह त्वं आपाह अजनयस्त्वं गा, ये संकेत, त्वं आतंतोर वंतरिक्षम बवर्थ, त्वं ज्योतिषा वितमो बवर्थ, ये मंत्र आया वेद, क्या मतलब है इसका, तो संकेत किया उसी विष्णु की तरफ, सर्वव्यापक शक्ति की तरफ, कहा तुम आप ही क्या हो, इमा ये जितनी भी औषधियां हैं वो औषधि तुम, और वहां साथ में वनस्पति को भी ग्रहण कर ली। औषधि और वनस्पति में फर्क क्या है, तो हर वेद शास्त्र में इसकी चर्चा आई। क्या कहा? फल पक्वांता औषधय, जो पौधा फल दे करके और फल उसका पक जाए और पकने पर पौधा नष्ट हो जाए तो उसका नाम क्या है? औषधि। औषधि। और जो पौधा फल दे, पक जाए, फल तो गिर जाए लेकिन पौधा बना रहे तो उसे क्या कहते हैं? वनस्पति। उसे क्या कहते हैं? तो ये औषधियां और वनस्पतियां यही क्या है? यही सारी सृष्टि का जीवन है। इन्हीं को लेकर के सारी सृष्टि होती। आप गीता में पढ़ते हो, अन्नात् भवन्ति भूतानि। किससे होते? कहा अन्नात् भवन्ति भूतानि, संकेत कर दिया। अब वो अन्न क्या है? तो कहा त्वामिमा है औषधि विश्वाह त्वम आपः अजनयस्त्वंगा। क्रम दे दिया, मने ये सारी औषधियां तुम हो। और वहां नाम ले दिया क्या? सोम। क्या नाम ले दिया? सोम। अब सोम शब्द का अर्थ भगवान शिव का परचायक भी है। सोम शब्द का अर्थ जो है चंद्रमा का भी है, है ना? चंद्रमा को भी सोम शब्द से कहते, भगवान शिव को भी सोम कहते, और लता विशेष के रस का नाम भी सोम। यज्ञों में सोम रस निकालना, ये सब चलता है। तो अब ये जो है यहां पर सोम नाम दिया और सोम नाम देकर के संकेत किया कि हे सोम इमाह, ये सब औषधियां जो हैं वो कौन है? का तुम हो। इसमें सब में तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी सत्ता के बगैर ये कोई भी औषधि हो सकती नहीं, और औषधि नहीं होगी तो जीव कहां से होगी? अन्नाद भवंत भूतानि। और आगे कह भी दिया, कहा औषधि भी कब होती है? तो वहां पर
2: ओम नमः शिवाय।
0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरा अध्याय का छठा मंत्र है। हाँ, ये छठा मंत्र है। अग्निर्यत्राभिमच्छते वायुर्यत्राधिरुज्यते सोमो यत्रा अतिरिच्यते तत्र संजायते मनः। अग्निर्यत्र अभिमच्छते वायुर्यत्र अधिरुज्यते सोमो यत्र अतिरिच्यते तत्र संजायते मनः। मनः कुत्र संजायते, प्रश्न हुआ। मन कहाँ प्रवृत्त होता है? मन की प्रवृत्ति कहाँ होती है? तो कहते हैं तत्र, वहां पर होता। तत्र माने वहां पर। कहाँ पर? अग्निर्यत्र अभिमिच्छते है। यत्र माने जहां पर अग्नि का मंथन होता है। वायुर्यत्र अभिरुध्यते है, जहां वायु रुक जाती है। सोमो यत्र अतिरिच्छते, जहां सोमोजत्र अधिच्यते, जहां सोम की अधिकता होती है। सोम माने सोमरस, समझ लेना। वहां पर मन जाना लग जाता है। मतलब क्या है? ये ध्यान की विधि बता रहा है। पहले ध्यान की विधि बताया था, अभी ध्यान कहाँ करना चाहिए ये फल बता रहा है। कहाँ ध्यान करना चाहिए? तो अग्नि, इसका दो अर्थ करेंगे। एक मंत्र के अनुसार अर्थ करेंगे और एक भाष्यकार इसी का दूसरा ढंग से अर्थ करेंगे। हाँ तो कल यहां तक हो गया था, कहां तक ख्याल है? अच्छा दूसरा पैराग्राफ है, अग्निर यात्रा अभिमत्य। हाँ ये है, यहां तक हुआ था। अग्निर यात्रा अभिमत्यते इति अत्र अपरा व्याख्या, ये दूसरा व्याख्या करते हैं भाष्यकार। हाँ अपर माने दूसरा। हाँ क्या है कि अग्नि परमात्मा अग्नि यत्र अभिमेच्छते, तो अग्नि को अलग कर दो, तो अग्नि कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा को अग्नि कह दिया तो कहो परमात्मा तो हमारे भीतर रहता, हमारे को जलाता क्यों नहीं? जलाता है, क्या जलाता है? अग्नि रूपी जो परमात्मा है, वो अग्नि रूपी परमात्मा हमारी अविद्या रूपी अज्ञान रूपी लकड़ी को जलाता है। अग्नि को परमात्मा का अग्नि बतलाया, अग्नि का काम क्या है? अग्नि अग्नि अग्नि जथैव भुवनम प्रविष्टः, जैसे भूमंडल के अंदर प्रविष्ट होकर के अग्नि व्याप्त हो गया, पर व्याप्त अग्नि व्यापक अग्नि को सामान्य अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो मासिस से घर्षण करके प्रकट करोगे उसका विशेष अग्नि नाम है। तो विशेष अग्नि तुम्हारा काम करेगा, सामान्य अग्नि नहीं करेगा, समझ गए? नहीं सामान्य अग्नि व्यापक है, सुप्त है, तो सुप्त अग्नि को प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन करना पड़ता है। हमारे अंदर जो परमात्मा है वो सामान्य रूप में है, व्यापक रूप में है। हाँ सामान्य रूप में व्यापक रूप में है, पर वो परमात्मा से हमारा अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, हमारा अज्ञान का नाश नहीं होगा। तो हमारे अज्ञान के नाश करने के लिए विशेष अग्नि चाहिए, विशेष अग्नि माने विशेष रूप में परमात्मा को विशेष रूप में प्रकट करना पड़ेगा, सामान्य परमात्मा से नहीं, ब्रह्म से नहीं, कूटस्थ से नहीं, तदाकार वृत्ति करनी पड़ेगी, ब्रह्माकार वृत्ति करनी पड़ेगी, याद रखना। जब वृत्ति आरोह हुए बिना तुम्हारे अज्ञान का नाश नहीं करेगा, अज्ञान के नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए यहां कहते अग्नि परमात्मा जथई ढंग से समिद्योग्नि भस्मसात कुरुति अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुति तथा, आया कि नहीं? गीता में आया ना, जथई ढंग से समिद्योग्नि जिस प्रकार से समृद्ध अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है, अग्नि के साथ जीता है, याद रखना। अग्नि ऐसे नहीं, काली कराली मनोज अबासा सुलहिताय सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिने विश्व ऋषि देवी लीलायमान इति सप्त जीवा। ये अग्नि ऐसे नहीं, क्यों? सप्त जीवा वाला अग्नि में जब तुम आहुति डालोगे ना, तब जब वो आहुति को जलाएगा, भस्म करेगा। तो आहुति क्या करेगा? ऐसी आहुति जब प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालोगे, वो आहुति देवी बन करके तुमको मरने के बाद में ले जाएगा उपस्य लोक में। तम आहुतया यही यही तम आहुतया सुवर्ष बसती, ये आहुतियां आपको बुलाते हैं, चलिए चलिए चलिए, आपके लिए आपका जो है ना रूम बुक हो गया है। स्वर्ग में भी रूम बुक होता है, याद रखना। जैसे आप लोग लोनावाला जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं भी जाते हो ना, विदेश में जाओ, देश में जाओ, घर छोड़ करके, तो वहां पहले रूम बुक कराते कि नहीं कराते? तो जाते ही आपको चाबी देते, जाइए आपका फलाना रूम है, चले जाइए। ऐसे स्वर्ग में भी रूम बुक होता है। हाँ जब आप यहां से जाएंगे तो आपकी जो आहुतियां हैं हाँ ये देवियां बनकर के आपका स्वागत करके आपको रूम में ले जाएगा। जैसे यहाँ है ना, एक बार मैं वहां वो प्रेम कुटीर में कथा करता था, बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले, तो वहां घूमने जाता था वो समुद्र के किनारे, तो वहां एक ओबेरॉय होटल आया, ओबेरॉय होटल वहां से कांच लगाया हुआ था, बाहर से सब दृश्य दिखता था। तो चाय देने आते ना, तो बैठे आप बैठे तो आपको चाय देने के लिए आएगा, ऐसे ऐसे नाश करके आएगा, तो देगा फिर जाएगा नाश करके, तो आपको इतना स्वागत क्यों करता है? आपको जो स्वागत करते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, क्यों करते हैं? समझे कि नहीं? तो जैसे वहां स्वागत के द्वारा आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करने वाले हाँ रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा? इसी प्रकार योग्यता के अनुसार, कर्म के अनुसार देवलोक में भी जो जाते हैं उनके लिए व्यवस्था होती है। कर्म जहां भी होगा कर्म के तारतम्य में रहेगा, ये गांठ बांध लेना, समझे कि नहीं? कर्म जहां भी होगा कर्म का तारतम्य के अनुसार व्यवस्था होती है। हमारे आश्रमों में जाओगे आप लोग, जाओगे जैसे हमें गिरीश भाई जाएगा, कहां पर वृंदावन में जाएगा, पूरमपुरी अगरनाथ जी महाराज के आश्रम में, तो उनके लिए फर्स्ट क्लास रूम खुलेगा, पायलट गलीचा बिछाया हुआ मिलेगा, गर्म पानी नरम पानी की व्यवस्था होगा, एयर कंडीशन खोल देगा, नुकर चाकर जाकर के बस बैठ गया गलीचा जी महाराज। और हम जाएंगे तो थर्ड क्लास के कमरा कौन सा है जिसमें पंखा भी नहीं होगा, बिजली भी नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा, सैंडल भी ऐसा होगा, उसमें देंगे नहीं, क्योंकि तारतम्य है, ऐसा नहीं आपकी योग्यता नहीं, जो जो जहां जाते योग्यता के अनुसार। हाँ तो स्वर्ग में भी ऐसा है, देवराज इंद्र जहां रहेगा वहां कुबेर रहेगा, अग्निदेव रहेगा, पवनदेव रहेगा, वरुणदेव रहेगा, बड़े बड़े देवता की व्यवस्था होगी। और जो यहां से कर्म करके जाए वो स्थाई देवता, याद रखना, तैतरी उपनिषद में आप लोग बोले ना, वहां स्थाई देवता है, अजान अजाब देव, वो देव एक देवता, स्थाई देवता, और एक कर्म के देवता कर्मदेव, कर्म करके जो देवता बन करके जाता है तो उसका अलग व्यवस्था होगी, बाहर से आया चले जाएगा सर न, तो जाना पड़ेगा। तो आहुतियां बुलाते हैं, यही तम आहुत सुवर्ष आह्वान करके, बुला करके, मीठी मीठी वाणी के द्वारा बुला करके ले जाएगा, स्थान देगा, बताएगा। यही अग्नि के सात जीवा है, वो सात जिब्बा जब प्रज्वलित होगी, लीलायमान जिब्बा, लीलायमान धक धक धक धक करके ऊपर की तरफ जाएगा, उस समय आहुति डालनी चाहिए। मंद अग्नि में कभी आहुति डालना नहीं चाहिए, वो अग्नि को बुझा देगा। मंद अग्नि में आहुति डालोगे ना, वो आहुति अग्नि को बुझा देगा, तो तुमको क्या ले जाएगा? जब स्वयं बुझ गया तो जजमान को क्या ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा। ये लिए अग्नि ऐसे ज्ञान अग्नि है, ज्ञान अग्नि भस्मसात कुरुते तथा, ज्ञान रूपी अग्नि तुम्हारे कर्म को तो जलाता है, अविद्या और अज्ञान, अविद्या के आवरण सब कुछ जला करके तुमको शुद्ध करेगा, मर्थन करेगा। ये बात तो यह बता रहे थे, अग्नि परमात्मा अविद्या तत्कार्येश्य दाहकत्वात्। तो कहा भाई इनके नाम अग्नि, परमात्मा का नाम अग्नि क्यों रखा है? अग्नि इसीलिए रखा, अविद्या और अविद्या के कार्य जो राग द्वेष हर्ष शोक शोक दुख, अथवा अविद्या के कार्य अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि जो पंच क्लेश है, पंच क्लेश को जला करके भस्म कर देता है। अविद्या का कार्य क्या है? अविद्या की बात अस्मिता आते, राग आता है, द्वेष आता है, अभिनिवेश आता है, ये सब के सब खत्म कर देता है। क्यों? कारण नाशात कार्य नाश। कारण क्या है? अविद्या। तो अविद्या नाश हो गया तो अविद्या का परिवार भी खत्म कर देगा। तो कारण नाशात कार्य नाश है बात। तो कहते अविद्या, अविद्या का जो कार्य है वो कार्य के दाहक माने जलाने वाला होने के कारण तो अग्नि का नाम परमात्मा रखा। परमात्मा भी यही करते ही। परमात्मा जो है ना, परमात्मा ने परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, याद रखना नाम अनेक है। दाहकत्व उक्तम शो कहा भी है, गीता में बतलाया, देखो अहम अज्ञान रम तम नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दिवीन भाषता। भगवान गीता में बतलाया अहम अज्ञान रम तम, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला हो तम माने अंधकार है, उस अंधकार को क्या करता हूँ? नाश करता हूँ। नाशयामी कैसे? तो कहते नाशयामी आत्मभावस्थो, आत्मा में स्थित रह करके, आत्मा में माने शरीर में रह करके, अंतकरण में रह करके। तो कैसे कर?

एक नंबर। तो उसने पूछा, भक्त ने पूछा, महाराज पापियों में भी क्या नंबर लगता है क्या? बोले क्यों नहीं, गोहत्या करने वाला पाप, भ्रूण हत्या करने वाला पाप, ब्रह्म हत्या करने वाला पाप, धोखा देने वाला पाप, विश्वासघाती पाप, हाँ सबसे बड़ा विश्वासघात पाप बताया। विश्वास प्रतिबन्नेशु ये सब विश्वासघाती न तेजंती नरकम घोरम ताज्यमाना जमान हो गई। तो विश्वास दिलाकर जो विश्वासघात करता है उससे बढ़कर के पाप ही नहीं है। सब पापों का नाश होता है पर विश्वासघाती का उद्धार नहीं होता, ऐसा शासन में लिखा है। विश्वास प्रतिबन्नेशु ये सब विश्वासघाती न ते जानते नरकम घोरम ताज्या माना यमानुग। यमदूतों के द्वारा ताड़ित होकर के चाबुक मार मार करके ले जाते हुए चाबुक मारता है। नरकम घोरम, सामान्य नरक नहीं है, कुछ नरक तो यहां है ना, कुछ नरक हुआ है याद रखना। शास्त्र में लिखा है, पूछा गया महाराज नरक तो हम तो बोलते हैं ना, सब स्वर्ग है नरक है सब यहां है, बनने के बाद कुछ भी नहीं है, ये धोखा में मत रहना, ये धोखा है जो कहते ना आपको, सब यहां है वहां नहीं है, ये धोखा है। यहां भी नरक है और वहां भी नरक है, याद रखना। जैसे समझो हम कुछ काम करते हैं, चोरी करते, डकैती करते, फलाना करते, मारते हैं, तो सरकार हमको पकड़ करके जेल में देते हैं कि नहीं? तो यहां का जेल खाना भी तो एक नरक है, जेल भुगते कि नहीं? और जेल खाना में, जेल के कोठियों में भिन्न भिन्न है कि नहीं? एक नंबर कैदी, दो नंबर कैदी, तीन नंबर कैदी, फलाना कैदी, कुछ कैदियों को कितना रखते हैं, पैर में हाथ में जंजीर लगा करके, बेड़ी लगा कर, देखा था कि नहीं? देखा कि नहीं देखा? उन्हें देखा तो सिनेमा में, ये टीवी में देखे ना, टीवी में देखा था, पैर में, गला में, पैर में, हाथ में बेड़ियां पड़ी हुई है, और कुछ खुला मैदान में घूम रहा है, घूमता है कि नहीं? और किसी को जो है ना बेड़ी ने ऐसे कैद खाना में रखा, कोटेज में बंद करके रखा, जहां मच्छर है, खटमल है, फलाना है, काटता है, नींद नहीं आती है, आधा कच्चा भोजन देता है, ये भी तो नरक है। तो जैसे सरकारी काम को ना करने से, धोखा देने से, चोरी करने से, बेईमानी करने से, यानी बात सरकार पकड़ करके कैदखाना में डाल देता है, तो यहां तो है कुछ नरक। परंतु परमात्मा ये जो शास्त्र में लिखता है, जो शास्त्रीय संविधान को नहीं मानते हैं और मनमाने काम करते हैं, सब कुछ यहां हुआ नहीं है, उसके लिए मरने के बाद नरक है, कुछ नरक हुआ है। वहां भी कैदखाना का भिन्न भिन्न कैदखाना है, असीपत्र नरक, वैतरणी नरक, कुंभिभाग नरक आदि भयंकर भयंकर नरक है, और थोड़ा थोड़ा नरक है, छोटा छोटा नरक भी है, माने दुख भोगने का। असीपत्र नरक तलवार के जैसे धार वाला वृक्षों के नीचे ढकल देता है, इधर से उधर चिल्लाता, त्राही त्राही त्राही त्राही करता है, पर कोई त्राही नहीं होता है, वहां भोगना ही पड़ता है। कुंभभाग नरक में डाल देता है, कुंभिभाग नरक, वैतरणी नरक, अग्निकुंड नरक, कई किस्म के नरक है, भयंकर भयंकर पापों का नरक है। तो जैसे यहां जेल का नाम है, जेल में डाल देते हैं, किस्म किस्म के दुख भोगाता है नहीं? कौन देखते नहीं, जैसे जेल खाना में रहने वाला जो पुलिस है कैसे मारता है, वैसे वहां भी जेल खाना में रहने वाला जमदूत है, वो मार मार करके कर्म भोगाएगा। अब पुराणों में इसके विषय में प्रसंग आया है, वहां है कैसे मालूम पड़ता है? तो तो क्यों, ये पशुओं को मारता है ना, वो पशु भी उसको कभी कभी मार करके आया है। जस्मा तो देना सर, जथा सर, जथा सर, जच्चा

0: तत्पा सीन स तथा स तथा स तत्स। इस शास्त्र में लिखा जिसने जहां पर जिसके साथ जैसा व्यवहार किया उसको उसी जन्म में उसी समय में उसी जगह में जाकर को कर्म का फल भोगना पड़ता है। नहीं बात उसी को उसी में ले जाकर के भोगाएगा। याद रखना ये भ्रांति नहीं रहना कि केवल वहां नरक है यहां भी नरक है। अब यहां तीन प्रकार के नरक तो प्रत्यक्ष आए त्रिविजन नरक से द्वारम काम स्थल हुआ तस्मात त्रयम तेजित। इसलिए तीनों का त्याग देना सही परंतु एक प्रकार का नरक बताया है। देखो तीन प्रकार का नरक मतलब ये होता है एक तो कलंकित जीवन जिसके जीवन में कलंक आ गया। आप सारा जीवन पुण्यात्मा पुण्यात्मा है धर्मात्मा है सत्संग करते हो सब कुछ करते हो नाम है प्रतिष्ठा है समाज में है प्रतिष्ठा है पर यदि कोई गलती हो गई जरा सा के हो गया तो कलंक लग गया अपवाद आ गया तो आपको सिर झुका करके चलना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? सम्मानित व्यक्ति के जीवन में यदि कोई लांछन आ गया है यदि कृष्ण के जीवन में लांछन आ गया था सीमांत मनी सामंत मनी चुराने का एक मनी चुराने का लांछन लगा कि नहीं? अभी भी आप लोग करते ना भादो के चतुर्दशी के दिन चतुर्थी के ना चतुर्दशी के दिन भादो महीना के चंद्रमा को मत देखो। गणेश चतुर्थी के उस दिन चंद्रमा को मत देखो क्यों कलंक लगेगा? कृष्ण को छोड़ा नहीं तुमको क्या छोड़ेगा? अगर देख लिया तो दूसरे के घर में पत्थर मारो ऐसा वो आप शब्द है। तो कलंकित जीवन एक प्रकार का नरक है बदनाम जीवन कलंकित जीवन। एक जीवन एक नरक है रोगी शरीर ऐसा बताया। 24 घंटा बिछौना में पड़ा रहना है मल मूत्र त्याग करना दूसरे की वजह रहना कुछ पता नहीं चलना रोगी शरीर को भी नरक बताया।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर रेडियो द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। इन ऑर्डर टू मेक दीज एक्सटेंसिव रिसोर्सेज मोर एक्सेसिबल एंड बेनिफिशियल टू अवर रेडियो लिसनर्स वी हैव रीऑर्गनाइज्ड अवर प्रोग्राम शेड्यूल। तिरुमुरै म्यूजिक एंड तिरुमुरै डिस्कोर्सेज विल बी ब्रॉडकास्ट ऑन तिरुनिरिय तमिळोसै। फिलोसफिकल डिस्कोर्सेज एंड पेरिय पुराणम लेक्चर्स इन तमिल will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சிவ கீர்த்தனைகள். இதில் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் பாடல் பித்தம் தெளிய. பாடியிருப்பவர் ஆலத்தூர் சகோதரர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஃ.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: तमुत्संयत
1: जगन्था
0: समुद्रे त्वा नृमना अप्स्वन्तं रचक्षा ईभे दिवो अग्

0: लोकमस्मै।
1: संज्ञानामसि कामधरानं मयीते कामधरानं भूयात्।
0: अग्नेर्भस्मास्यग्नेःपुरीशमसि चितस्थपरिचिता ऊर्ध्वचितश्रयध्वम्।

0: राम
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhara Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Ittham Sheetam Prabhutam, தவ கனகசபா நாதவோடும் க்வசக்தி சித்தே நிர்வேத தப்தே யதி பவதி நதே நித்யவாசோ மதீயே. காங்கம் வாரி மனோஹாரி முராரி சரணச்யுதம் த்ரிபுராரி சிரஷ்சாரி பாபஹாரி புனாது மாம். நம சிவாய சோமாய சகுணாய சசூனவே பிரதான புருஷேஷாய சர்கஸ்தித்யந்த ஹேதவே. சக்திரப்ரதிமாயஸ்ய ஹைஸ்வர்யம் சாபி சர்வகம் ஸ்வாமித்வம் ச விபுத்வம் ச ஸ்வபாவம் சம்ப்ரசக்ஷதே. தமஜம் விஸ்வகர்மாணம் சாஸ்வதம் சிவமவ்யயம் மகாதேவம் மகாத்மானம் வ்ரஜாமி சரணம் சிவம். ஸ்ரீமத் க்ஷீரதரங்கிணி தடகதே புண்யே விரிஞ்சே புரே நித்யம் சந்நிஹிதம் கிலாகலயிதும் க்ஷீராபிஷேகாதரம் ஸ்ரீகாருத்மத வல்லிகா சஹசரம் மார்கே சஹாயம் நிருணாம் ஸ்ரீமத் தீக்ஷித விப்ரதைவதவரம் சஞ்சிந்தயே சங்கரம். ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதேந்திர ரசிதஸ்ய கங்காதராஷ்டகஸ்ய த்விதீய ஸ்லோக. ஸ்லோகேஸ்மின் பித்ரோஹோ தாரித்ர்யவசாத் பேயக்ஷீராலாபரூபாம் ஆர்த்திமாபத்யமானஸ்ய வியாக்ரபாதசூனோஹோ உபமன்யோஹ ஆர்த்திஹந்தாரம் ததிஷ்டப்ரதம் பகவந்தம் ஸ்துவந்தி தீக்ஷிதேந்திராஹ. ஏவம் பவதி ஸ்லோகஹ. க்ஷீரம் ஸ்வாது நிபீய மாதுல க்ருஹே கத்வா ஸ்வகீயம் க்ருஹம் க்ஷீராலாப வசேன கின்ன மனசே கோரம் தபஹ குர்வதே காருண்யாத் உபமன்யவே நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான் ஆர்த்தத்ராண பராயணஸ்ய பகவான் கங்காதரோ மே கதிஹி இதி. அன்வயஹ ஏவம் பவதி ஸ்வாது க்ஷீரம் மாதுல க்ருஹே நிபீய ஸ்வகீயம் க்ருஹம் கத்வா க்ஷீராலாப வசேன கின்ன மனசே கோரம் தபஹ குர்வதே உபமன்யவே யஹ காருண்யாத் நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான் சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. ஸ்லோகேஸ்மின் பிரயுக்தஹ ஏகைகோபி சப்தஹ ஸ்ரீ சிவமஹாபுராணாந்தர்கதாயாஹ சப்தம்யாஹ வாயவீய சம்ஹிதாயாஹ பிரதமே பாகே சதுஸ்த்ரிம்ஷத் பஞ்சத்ரிம்ஷத் அத்யாயயோஹ கதிபய ஸ்லோகானாம் சாரஹ. ஸ்ரீ சிவமஹாபுராணாந்தர்கதாயாஹ சப்தம்யாஹ வாயவீய சம்ஹிதாயாஹ பிரதமே பாகே சதுஸ்த்ரிம்ஷத் பஞ்சத்ரிம்ஷத் அத்யாயாப்யாம் பிரதிபாதிதம் உபமன்ய அனுக்ரஹ விருத்தாந்தம் சங்க்ருஹந்தி கோரம் தபஹ குர்வதே கின்ன மனசே உபமன்யவே யஹ காருண்யாத் நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான் சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. கோரம் துஷ்கரம் தபஹ குர்வதே தபஹ அனுதிஷ்டதே கின்ன மனசே கின்னம் சோகாக்ரஸ்தம் மனஹ யஸ்ய தஸ்மை உபமன்யவே வியாக்ரபாத சூனவே தௌம்யாக்ரஜஸ்ய ச பகவத்யவஹித மனசே இதி யாவத் யஹ इति वाक्यशेषः। कारुण्यात् तद्दुःखप्रहाणेच्छातः निरवधिं निस्सीमानं क्षीराम्बुधिं क्षीरसमुद्रं दत्तवान् सः भूतभावनः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः। तत्र उपमन्योः मनःखेदे हेतुमाहुः। स्वादुक्षीरं मातुलगृहे निपीय स्वकीयं गृहं गत्वा क्षीरालाभवशेन इति। स्वादु रसनेन्द्रियेष्टं क्षीरं गव्यं पयः मातुलगृहे इत्यनेन मातुर्जन्मगृहे इत्यर्थः। निपीय आस्वाद्य स्वकीयं गृहं गत्वा इत्यनेन स्वपितुर्गेहमेत्य इत्यर्थः। क्षीरालाभवशेन क्षीरस्य अहरः पेयस्य पयसः अलाभः अप्राप्तिः तस्य वशः अभिभवः क्षीरालाभवशः तेन इति एवं वर्तते कथा। अस्ति शिवं नाम शिवमधिकृत्य प्रवृत्तं चतुर्विंशतिसहस्रग्रन्थसङ्ख्याकं चतुर्थं पुराणं यथोक्तं तदन्तर्गतायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परं आग्नेयं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गं वाराहमेव च स्कान्दं च वामनं चैव कौर्मं मात्स्यं च गारुडं ब्रह्माण्डं चेति पुण्योऽयं पुराणानामनुक्रमः। तत्र शैवं तुरीयं यत् शार्वं सर्वार्थसाधकम् इति। तस्य भेदाः एवमुक्ताः। यदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसंमितं तस्य भेदान् समासेन ब्रुवतो मे निबोधत इति। व्यासेन तत्तुसंक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकं शैवं तत्र पुराणं वै चतुर्थं सप्तसंहितं विद्येश्वराख्या तत्राद्या द्वितीया रुद्रसंहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पञ्चमी कथिता चोमा षष्ठी कैलाससंहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह इति। वायवीयसंहितायाः भेदः पुनरुच्यते। चतुस्साहस्रकं यत्तु वायवीयमुदीरितं तदिदं वर्तयिष्यामि भागद्वयसमन्वितम् इति। अत्र सप्तम्यां वायवीयसंहितायां भगवता वायुना नैमिषारण्यस्थेभ्यः ऋषिभ्यः परमेश्वरस्य कथाः निवेदिताः। पुरा हि शौनकादयः महर्षयः शिवतत्त्वं ज्ञातुकामाः ब्रह्माण्डं प्रपेदिरे। स च तान् महर्षीन् सहस्रवर्षपर्यन्तं क्रतुं कञ्चित् अनुतिष्ठितमादिदेश। तत्समाप्तौ पितामहनिदेशात् वायुभगवान् तत्र आविर्भूय शिवतत्त्वं तान् ऋषीनुपदिश्य तानजग्राह। शिवात् वायोः उत्तमत्वकथनेन यस्य विषराजाशिनः परमेश्वरस्य अपकर्षः मध्वाचार्यैः श्रीमद्भागवतवचनविरुद्धं कृतः तस्य भगवतो विषकण्ठस्य स्तुतिः प्रथमे श्लोके कृता श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः। शिवभक्तवर्येण भगवता वायुना यस्य गुणकथाः शिवपुराणे वर्णिताः तस्य श्रीपार्वतीपतेः स्तुतिं विधातुमेवायं द्वितीयश्लोकः निबद्धः इति प्रतीयते। तत्र उपमन्युवृत्तान्तजिज्ञासुभिः महर्षिभिः वायुदेवं प्रति कृतः प्रश्नः। धौम्याग्रजेन शिशुना क्षीरार्थं हि तपः कृतं तस्मात् क्षीरार्णवो दत्तः तस्मै देवेन शूलिना इति। तान् प्रति वायुदेव कृतम् उत्तरम्। कदाचित् क्षीरमत्यल्पं पीतवान् मातुलाश्रमे ईष्यया मातुलसुतं सन्तृप्तक्षीरमुत्तमं पीत्वा स्थितं यथा कामं दृष्ट्वा वै मातुलात्मजम् इति। पुनरुच्यते तत्रैव उपमन्युर्व्याघ्रपादिः प्रीत्या प्रोवाच मातरम् इति। क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसः उपमन्योः प्रवृत्तिमाह। मातर्मातर्महाभागे मम देहि तपस्विनि गव्यं क्षीरमतिस्वादु नाल्पमुष्णं पिबाम्यहम् इति पुनरुच्यते भगवान् वायुः तच्छ्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनी व्याघ्रपादस्य महिषी दुःखमापत्तदा च सा उपलाल्यात सुप्रीत्या पुत्रमालिङ्ग्य सादरं दुःखिता विललापाथ स्मृत्वा नैर्धन्यमात्मनः स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः क्षीरं उपमन्युः स बालकः देहि देहीति तामाह रुदन्भूयो महाद्युतिः तद्धटं सा परिज्ञाय द्विजपत्नी तपस्विनी शान्तये तद्धटस्याथ शुभोपाय मरीरचत् उञ्छवृत्त्यार्जितान् बीजान् स्वयं दृष्ट्वा च सा तदा बीजपिष्टमथालोड्य तोयेन कलभाषिणी एह्येहि मम पुत्रेति समपूर्वं ततस्सुतम् आलिङ्ग्यादाय दुःखार्ता प्रददौ कृत्रिमं पयः पीत्वा च कृत्रिमं क्षीरं मात्रा दत्तं स बालकः नैतत्क्षीरमिति प्राह मातरं चाति विह्वलः दुःखिता सा तदा प्राह सम्प्रेक्ष्याघ्राय मूर्धनि सम्मार्ज्य नेत्रे पुत्रस्य कराभ्यां कमलायते इति जनन्युवाच त्वं मातुलगृहे स्वल्पं पीत्वा स्वादुपयश्रितं ज्ञात्वा स्वादु त्वया पीतं तज्जातीयमनुस्मरन् दत्तं न पय इत्युक्त्वा रुदन् दुःखीकरोषि मां प्रसादेन विनाशं भोः पयस्तव न विद्यते पादपङ्कजयोस्तस्य साम्बस्य सगणस्य च भक्त्या समर्पितं यत्तत् कारणं सर्वसम्पदाम् अधुना वसुदोऽस्माभिः महादेवो न पूजितः सकामानां यथा कामं यथोक्तफलदायकः धनान्युद्दिश्य नास्माभिः इतः प्रागर्चितशिवः अतो दरिद्राः सञ्जाताः वयं तस्मान्नतेपयः इति अनेन यो भक्तः येन भावेन भगवन्तमाराधयति तथैव स भगवान् अनुगृह्णाति तं भक्तम् इति सूचितम् अथ तद्दौर्भाग्यहेतुभूतदुरितशमनार्थं भक्तवत्सलं भगवन्तमेव उपासितुं तन्माता तं शशंसेत्याह विलम्बं मा कृथास्त्वं हि भजसाम्बं सदाशिवं तस्य देवाधिदेवस्य शिवस्य वरदायिनः साक्षान्नमशिवायेति मन्त्रोऽयं वाचकस्मृतः प्रबलश्च तथा ह्येषः मन्त्रः मन्त्रान्तरादपि सर्वरक्षाक्षमोऽप्येषः नापरः कश्चिदिष्यते तस्मात् मन्त्रान्तरांस्त्यक्त्वा पञ्चाक्षरपरो भव तस्मिन् जिह्वान्तर्गते न किञ्चिदिह दुर्लभम् इति मातुर्गिरमाकर्णयतः उपमन्योः अग्रिमां प्रवृत्तिमाः एवं मात्रा समादिश्य शिवमस्त्वित्युदीर्य च विसृष्टस्तद्वचो मूर्ध्नि कुर्वन्नेव तदा मुनिः तां प्रणम्यैव मुक्त्वा च तपः कर्तुं प्रचक्रमे तमाह च तदा माता शुभं कुर्वन्तु ते सुराः अनुज्ञातस्तया तत्र तपस्तेपे सदुश्चरं हिमवत्पर्वतं प्राप्य वायुभक्षः समाहितः तपसा तस्य विप्रस्य चोपमन्योर्महात्मनः चराचरं च मुनयः प्रदीपितमभूज्जगत् इति एवम् उग्रे तपसि स्थितस्य तस्य उपमन्योः पुरस्तात् भगवान् शिवः प्रादुर्भूय वाञ्छितादप्यधिकं फलं ददौ इत्याह क्षीरार्णवसहस्रं च पीयूषार्णवमेव वा दध्यादेरर्णवांश्चैव घृतोदार्णवमेव च फलार्णवं च बालस्य भक्ष्यभोज्यार्णवं तथा अपूपानां गिरिं चैव दर्शयामास सप्रभुः इति पुनरुच्यते अत्रैव क्षीराब्धिरपि साकारः क्षीरं स्वादुकरे दधत् उपस्थाय ददौ पिण्डीभूतं क्षीरमनश्वरं योगैश्वर्यं सदा तुष्टिं ब्रह्मविद्यामनश्वरां समृद्धिं परमां तस्मै ददौ सन्तुष्टमानसः इति अथ उपमन्युः निश्चञ्चलां शिवभक्तिं प्रार्थयामास भगवन्तम् इत्याह प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमां दिव्यामव्यभिचारिणीं श्रद्धां देहि महादेव त्वत्सम्बन्धिषु मे तदा स्वदास्यं परमं स्नेहं सान्निध्यं चैव सर्वदा एवमुक्त्वा प्रसन्नात्मा हर्षगद्गदया गिरा सतुष्टाव महादेवम् उपमन्युर्द्विजोत्तमः ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಪ್ರಸೀದ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ಸಾಂಬಶಂಕರ ಸರ್ವದಾ ಇತಿ. ಅಥ ಭಗವಾನ್ ಏತದಪ್ಯನುಗೃಹ್ಯ ಅಂತರ್ದಧೆ. ಅನೇನ ಕಥೇಯಂ ಸಮಾಪ್ತ, ಅನೇನ ಚ ಭಾಷಣಮಿದಂ ಸಮಾಪಯಾಮಿ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಯೇ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ.
3: ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಯು ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು shaivam.org ರೇಡಿಯೋಸ್, 24/7 ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ shaivam.org. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: கியோகி சூக்ம சரீர் மே ரஹனே வாலா ஜோ சப்த ஹை வஹ வைகரி கே ரூப் மே பரிணத் நஹி ஹோதா. வாணி வைகரி கே ரூப் மே பரிணத் ஹோனே கே லியே தோ ஸ்தூல அன்னமய கோஷ் மே சம்பந்தித் ஹோனா படேகா. सूक्ष्म मनोमय विज्ञानमय प्राणमय कोश में वैखरी वाणी नहीं होती है, पश्यन्ति मध्यमा हो सकती है लेकिन वैखरी नहीं होती सामान्यतया. तो कई बार स्वप्न देखने वाला व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और किसी से बात कर रहा है, तो सामान्य नियम तो यह है कि जागृत वाले को कुछ पता नहीं कि स्वप्न में क्या बोल रहा है. लेकिन कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि वह स्वप्न में बोले हुए शब्द जागृत में वैखरी में परिणत हो जाता है. इतना तादात्म्य हो जाता है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ कि वह स्वप्न में जिससे बात कर रहा है, जो बात कर रहा है, जागृत में वह वैखरी के रूप में परिणत होता है और उसके बगल में जो बैठा हुआ है वह सुनता है कि यह क्या बोल रहा है. और बाद में जब वो जग लेता है तो जिसके साथ बात कर रहा है तो वो व्यक्ति वहां उपलब्ध नहीं होता. और जगा हुआ, पहले से जगा हुआ व्यक्ति उससे पूछता है कि अरे तू तो यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था, किसके साथ बोल रहा था, तो वो बड़ा आश्चर्य मानता है. क्या हुआ, मैं स्वप्न देख रहा था, फलाना आदमी आया था और मैं उससे बात कर रहा था, तो उससे बात कर रहा था, स्वप्न के व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वैखरी वाणी क्यों बोल रहा है. तादात्म्य के चलते ऐसा हो जाता है. निद्राया दर्शिता नार्थान पश्यति न पश्यति यथोत्थितान. स्वप्न में ही वो व्यक्ति यदि जग जाता है, स्वप्न में माने रात्रि में ही यदि वो व्यक्ति जग जाता है तो सूर्य को नहीं देखता है, तो फिर विचार करने लगता है कि ये क्या हो गया, अभी अभी जिस सूर्य को देख रहा था वो कहां चला गया, अभी क्यों नहीं, और यदि रात्रि के समय में उस सूर्य को देखा तो फिर कैसे देखा, और यदि स्वप्न में देखा था तो फिर अभी वो सूर्य कहां चला गया. तो जैसे जगने के बाद वो पदार्थ उपलब्ध नहीं होते. दृष्टांत, जिस मित्र को तुम स्वप्न में देख रहे थे, जागने के बाद वह मित्र उपलब्ध नहीं होता. जिस वस्तु को तुम स्वप्न में देख रहे थे, जागने के बाद वह वस्तु उपलब्ध नहीं होता. ये जैसा दृष्टांत सामान्य प्रचलित है और प्रसिद्ध है, ये दृष्टांत सर्वानुभूत है, ये सभी ने अनुभव किया हुआ प्रसंग है. ये निद्राया दर्शितान अर्थान न पश्यति यथोत्थितः सम्यक् ज्ञानोदयात् ऊर्ध्वं तथा विश्वं न पश्यति. इसी तरह यदि जिस समय सम्यक् ज्ञान होता है, अभी जो आपको ज्ञान है ये ज्ञान सम्यक् ज्ञान नहीं है. हमको आपको इस समय जो ज्ञान हो रहा है ना, ये ज्ञान सम्यक् ज्ञान नहीं है, यानी यथार्थ ज्ञान नहीं है. ये ज्ञान भी अयथार्थ ज्ञान है. अयथार्थ ज्ञान का अर्थ क्या हुआ पता है, ये अपरा विद्या का विषय है. यथार्थ ज्ञान उसको कहते हैं जो परा विद्या का विषय है. जब तक किसी भी प्रमाण के बिना जो ज्ञान नहीं होता तब तक वह यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता. किसी प्रमाण के द्वारा होने वाला ज्ञान, किसी साधनों के द्वारा होने वाला ज्ञान, किसी करणों के द्वारा होने वाला ज्ञान वह ज्ञान हमेशा दूसरे के माध्यम से होने वाला होने के कारण ये ज्ञान को यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकते, ये अयथार्थ ज्ञान है। और इसी अयथार्थ ज्ञान को मुंडक श्रुति ने अपरा विद्या कह दी है। ये सब पदार्थ संबंधी जो ज्ञान है, ये प्रमाण प्रमेय वृत्तिजन्य ज्ञान है, साधन द्वारा उत्पन्न होने वाले ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। और जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक फिर ये पदार्थ स्वप्न के जैसे अनुभव में नहीं आएंगे। अयथार्थ ज्ञान में तो जैसे स्वप्न में तो स्वप्न के अंदर का पदार्थ यथार्थ ही लगता है, इसी तरह जागृत भी अयथार्थ ज्ञान की अवस्था होने के कारण ये भी अयथार्थ पदार्थ यथार्थ जैसा लगने लगता है। सम्यक् ज्ञानो दयानूर्धं तथा विश्वं न पश्यति। सम्यक् ज्ञान पश्चात यह विश्व इस तरह आपको नहीं लगेगा जिस तरह अभी आपको लग रहा है। सम्यक् ज्ञान ये एक कंडीशन है, विशेष शर्त है। इस समय का जो प्रपंच स्वप्न की तरह भासने के लिए, अनुभव में आने के लिए आपके पास जो अभिज्ञान है ये पर्याप्त नहीं है, ये सक्षम नहीं है, इसकी जगह दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होगी। वो ज्ञान का नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान। सम्यक् ज्ञानोदयानूर्धम तथा विश्वम न पश्यति, तब फिर आपको ये लगेगा जगत वास्तव में स्वप्न है। इस बात को सुरेश्वराचार्य जी ने आपने अपने परम दादा गुरु सुरेश्वराचार्य जी के परम दादा गुरु, एक तो दादा गुरु होते हैं, दूसरा परम दादा गुरु, आप समझ गए किसके लिए कह रहे हैं। शंकराचार्य जी के दादा गुरु कौन है? गौड़पादाचार्य। और सुरेश्वराचार्य जी के परम दादा गुरु गौड़पादाचार्य है। परम दादा गुरु अपने गुरु के भी दादा हो तो परम दादा नहीं हुए? नहीं। शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पादाचार्य और गोविंद पादाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य और शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी। सुरेश्वराचार्य जी गौड़पादाचार्य जी के प्रमाण को रिफरेंस के रूप में देंगे तो क्या हुआ, परम दादा गुरु हो गए कि नहीं? परदादा, दादा परदादा। तो गौड़पादाचार्य जी ने जो बात कही है मांडुक्य कारी काम में, उसको यहां प्रमाण के रूप में रख दिया है। गौड़पादाचार्य जी ने कारिका में लिखा है, अनादि मायया सुप्तो यदा जीव प्रबोध्यते। जीव अनादि मायया सुप्तः, हम लोग इस समय सोए हुए हैं और कोई भी इस बात को मानने को इस समय तैयार नहीं है कि मैं सोया हुआ हूं। हर व्यक्ति कहता है मैं आंख से देख रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, नाक से सूंघ रहा हूं, त्वचा से शीत उष्ण कठोर कोमल का अनुभव कर रहा हूं, मन से संकल्प कर रहा हूं, वाणी से बोल रहा हूं, पांव से चल रहा हूं, समग्र व्यवहार कर रहा हूं इंद्रिय करण आदि के माध्यम से, तो मैं कैसे सोया हूं भाई? सोने वाला तो व्यस्त में एक ही व्यक्ति होता है। किसी शायर ने कहा है ना, आदमी सोया जमी पर, आदमी सोया जमी पर। जब आदमी सोता है तो वो न देखता है न सुनता है, है ना? आपके व्यवहार में भी तो यही होता है ना। उसको बुलाओ, ये रामप्रसाद, यदि वो बोला नहीं, सुना नहीं आपकी आवाज को, तो आप कहोगे क्या, सो गया है। आदमी सोया जमी पर लोग कहते हैं मर गया। आदमी सोया जमी पर लोग कहते हैं मर गया, वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया पर लोग कहते हैं मर गया। कितनी उल्टी बात है। और किसी अपने घर जाना, उसको लोग कह देते हैं मर गया, बेचारा घर गया है और लोग कहते हैं मर गया। संसार तो यही उल्टा ही है, है? वो तो नदी में बगाने के बाद ऊपर की तरफ खोजने जाते हैं, संसार तो ऐसा है, है? नदी का प्रवाह एक तरफ है और खोजने जा रहे हैं उसके ठीक विपरीत। शरीर बढ़ोती की तरफ जा रहा है और तैयारी कर रहे हैं जवानी की, कि शरीर जवानी में मिले कैसे, जवान कैसे हो। तो ये ठीक विपरीत खोजी है कि नहीं बोलो। बुढ़ौती में जवान होने की इच्छा, ये विपरीत अनुसंधान है कि नहीं है? बोलो, बुढ़ौती में जवान होने की इच्छा है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये तो तमोगुण का लक्षण है कि नदी में जिधर बगा दिया एक तरफ और खोजने गए दूसरी तरफ। अनादि माया सुप्त। अब इस माया के द्वारा सुप्त कोई व्यक्ति सोना मानता ही नहीं है, तो अब क्या समझाएं उनको? वो तो ऐसे सफाई से बात कर रहा है कि माया उसको छू ही नहीं रही है। आप जो कह रहे हो ना कि अभी मैं जगा हुआ हूं, ये कहना कॉन्फिडेंस के साथ आप जो कह रहे हो कि मैं जगा हूं, तो ये तो ऐसा कह रहे हैं आप कि माया आपको छू ही नहीं रही है। और जबकि पूरी तरह माया के चपेट में है, माया के बस में है, माया के नशे में है, तो गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं अनादि माया सुप्त जीव यदा जीव प्रबुद्ध्यते। प्रबुद्ध्यते जगाया जाता है, जीव को जगाना पड़ता है, अपने आप नहीं जगता है। निद्रा में सोने वाला जीव भले ही वो अपने आप जग जाए, लेकिन माया में सोने वाला जीव अपने आप नहीं जगने वाला है। प्रबुद्ध्यते, हाँ, जगाना पड़ता है उसको। जब कोई इसको जगा देता है तो कौन जगाएगा? तो जगाने वाले के लिए साधन बता दिया है श्रुति आचार्य वाक्य श्रुत्याचार प्रसादेन योगाभ्यासेन योगाभ्यास वशेन च ईश्वर अनुग्रहेणापि स्वात्मबोधो यदा भवेत्। जगाने वाले तीन हैं, आपसे भिन्न तीन हैं, या चार मान लो, इसी को चार कृपा कृपा चतुष्टय कहा गया है। श्रुति, ये जो प्रसिद्ध लौकिक निद्रा से तो आप खुद भी जग सकते हैं, और क्योंकि इस निद्रा में आप खुद ही गए हैं और इस निद्रा से आप खुद भी जग जाओगे, कोई कितना सोएगा? पांच घंटा, आठ घंटा, बारह घंटा, कोई कितना सोएगा? हमको कोई पूछते हैं महाराज आपको कितने समय निद्रा लगती है, कितने समय सोते हैं आप? तो हमने कहा हमको यदि स्वतंत्र सोने को मिल जाए बारह चौदह घंटा तो हम आराम से सो सकते हैं, अच्छी निद्रा लगती है, बस तो सो जाते हैं। अभी भी आठ नौ घंटे तो सोते ही हैं भाई, शाम को खाना खाए और सो, चिंता नहीं है तो कहा चिंता मम जीवन है। चिंता जिसको हो को उसको पर निद्रा नहीं आती है, जिसको चिंता नहीं है तो वह निद्रा ना आवे, निद्रा ना आवे इसका मतलब चिंता है, चिंता नहीं है तो निद्रा आ जाती है। तो हम खुद सोते हैं और खुद उठते हैं, लेकिन ये माया में भी हम खुद ही सोए हुए हैं, लेकिन आश्चर्य की विडंबना है कि ये खुद उठते नहीं। सो तो गए, कब सो गए? आप माया रूपी निद्रा में कब सोए? अनादि। शाम को कितने बजे सोए? तो आप घड़ी देखकर बता सकते कि मैं 9 बजे सोया, 10 बजे सोया। आज कोई यात्री आ गए थे, गेस्ट आ गए थे, तो रात को सोने में देर हो गई, 1 बजे तक गप करते रहे, 1 बजे के बाद सोए, आप बता सकते हो। लेकिन ये निद्रा जो माया की निद्रा है, जिस निद्रा में आप और हम, मैं भी उसी में सोया हूं वो, और ये इस समय में स्वप्न में प्रवचन सुन रहे हैं आप और मैं, स्वप्न में प्रवचन कर रहा हूं। आप लोगों ने स्वप्न देखा है कि नहीं प्रवचन सुनते हुए? मैंने तो कई बार देखा है प्रवचन करते हुए, कई बार सुनते हुए भी देखा है, कई बार करते हुए भी देखा है। शायद आप लोगों ने भी स्वप्न सुनते हुए देखा हो, और मुझे लगता है कि कई बार तो प्रवचन करने का ऐसा वासना, ऐसी वासना आपके अंदर हो सकती है कि स्वप्न में आप प्रवचन भी करने लग गए हो। लेकिन ये महास्वप्न तो माया के द्वारा सम्मोहित हुआ हुआ जो अवस्था है, इसको महास्वप्न कहते हैं। अनादि, कब से ये स्वप्न शुरू हुआ है किसी को पता नहीं है। आप जीव कब बने थे पता नहीं है। आपका शरीर कब पैदा हुआ ये तो बर्थडे लिखा होगा, होगा माता पिता ने कॉरपोरेशन में रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा हॉस्पिटल में, और वहां तिथि मिति सब लिखी होगी, समय लिखा होगा, और उसके आधार से आप कह सकते हो कि यह शरीर का जन्म। आप तो सीधे कह देते हो कि मेरा जन्म, कहना तो यही चाहिए कि यह शरीर का जन्म फलाना दिन हुआ है, फलाने साल हुए, फलान जगह हुआ। लेकिन आप कह देते हो कि मेरा जन्म फलाने साल, फलाना महीना, फलाना तिथि मिति, फलाना जगह। ये तो कम से कम है, लेकिन आप जीव बने कब ये कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए अनादि, बन गए सो बन गए, कैसे बन गए क्या पता, कैसे बन गए। इसलिए अनादि माया सुप्तो, यदा जीव प्रबोध्यते, उस सोए हुए जीव को जब जगाया जाता है, श्रुति जगाती है। इसीलिए जगाने वाला, जैसे आपका नाम पद्म प्रसाद है, आपका नाम क्या है? पद्म प्रसाद है, और आप सोए हैं मस्ती से, और कोई आकर कमल प्रसाद करके बुलाएगा तो आपकी निद्रा खुलेगी कि नहीं है? पर्यायवाची शब्द से है, पद्म प्रसाद का अर्थ क्या होता है? कमल प्रसाद होगा कि नहीं है? तो आपका नाम है पद्म प्रसाद और कमल प्रसाद करके बुलाएंगे तो आप उठोगे? अभी भी नहीं उठोगे। कोई यहां पद्म प्रसाद बैठा हो और मैं उसको कह कमल प्रसाद है इधर आओ, तो अभी भी पद्म प्रसाद नहीं उठेगा, ये नहीं कहेगा कि पद्म का अर्थ कमल होता है और मुझे बुला रहे हैं। वो पद्म वही शब्द उसको चाहिए जगाने के लिए, जो उसका नाम है वही चाहिए, उसका विकल्प पर्यायवाची शब्द नाम से वह उठेगा नहीं। उठता है बोलो? पद्म प्रसाद नाम है तो पद्म प्रसाद ही उसको शब्द उठा सकता है, कमल प्रसाद शब्द नहीं उठा सकता। इसी तरह अनादि माया से सोया हुआ जीव को श्रुति ही उठा सकती है, श्रुति के अलावा और दूसरा कोई उठाने में समर्थ नहीं है। महावाक्य ही उस निद्रा से आपको जगा सकती है, क्योंकि आपका असली नाम कुटस्थ है, आपका असली नाम ब्रह्म चैतन्य है, आपका असली नाम शुद्ध है, सच्चिद आनंद है। और सच्चिद आनंद आपका असली नाम है, और सच्चिद आनंद को बताने वाली महावाक्य ही है। उसके अलावा आपको अनादि माया रूपी निद्रा से जगाने में और कोई भी शास्त्र सक्षम नहीं है। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबोध्यते अजम, क्योंकि आपका असली नाम अज है। ये देवदत्त यज्ञदत्त तो ये सब काल्पनिक नाम है, असली नाम नहीं है। आपका असली नाम क्या है? अज, अजन्मा। और अज ये शब्द से आपकी अनादि माया की निद्रा टूटेगी। कोई अज करके बुलाएगा तब, लेकिन ये आप यदि अज करके बुलाएंगे तो नहीं उठने वाले हैं। फिर श्रुति ही बुलाना पड़ेगा, श्रुति की आवाज आपको सुननी पड़ेगी, श्रुति आपको पुकारेगी। और जब श्रुति जोर से पुकारती है आज, तो तुम्हारा क्योंकि वो असली नाम है तो आप जगते हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त निर्वरान निबोधत चुरस्य दारा निश्चित दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। श्रुति इस तरह उठाती है, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदाय। श्रुति जब इस तरह उठाती है तब अनादि माया की निद्रा जब उसकी टूटती है तब वह अपने आप को अजन्म अनिद्रम निद्रा से रहित, अस्वप्नम स्वप्न से भी रहित, निद्रा शब्द से सुसुप्ति, सुसुप्ति से रहित, स्वप्न से रहित, अद्वैतम अजम प्रबुद्धते अपने स्वरूप में वह जग जाता है। तब फिर ये विश्व प्रपंच जो इस समय अभी आपको बाहर प्रतीत हो रहा है, तब आपकी सत्ता से भिन्न सत्ता प्रतीत नहीं होगा। तो बाहर जिस रूप में प्रतीत हो रहा है उस रूप में फिर प्रतीत नहीं होगा। उठाएगा कौन? तो सुरेश्वराचार्य जी बोलते हैं, श्रुति आचार्य प्रसादेन योगाभ्यास वशेन च ईश्वर अनुग्रहेणापि स्वात्मबोधो यदा भवेत। चार कृपा प्रसिद्ध है, आत्मकृपा, योग अभ्यास की आवश्यकता है। योग अभ्यास का अर्थ जो रामदेव जी का योग है वो नहीं लेना है, वो तुम्हें अपने स्वरूप में जगाने में समर्थ नहीं होगा। रामदेव का जो योग है शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, वसा और चर्बी का अंश ज्यादा है, नस आदि थोड़े से उसके छिद्र मोटे पतले हो गए हों, उन सब को प्योरीफाई करने में समर्थ है। शरीर शोधन में हेतु है। ये आसन का जो आप कह रहे हैं ना कि कपाल भांति, रामदेव जी एक ही वाक्य बोलते हैं, कपाल भांति करो सब रोग का निदान है, ब्लड प्रेशर भी उसी से कम होगा है, शुगर भी उसी से कम होगा, सब कुछ उसी से कम होगा, कपाल भांति करो, कपाल भांति करो। तो ये योग से आप जगने वाले नहीं हैं। शरीर कुछ समय के लिए निरोग हो सकता है,

प्राण को अंदर भरो, दूसरे नंबर में कुंभक करो, तीसरे नंबर नहीं पहले पूरक करो, क्रियायोग में पहले पूरक करो, प्राण को अंदर भरो, दूसरे नंबर में कुंभक करो और तीसरे नंबर में रेचन करो। ये क्रियायोग का प्राणायाम है। लेकिन राजयोग के प्राणायाम क्या है पता है? पहले रेचन करो, उसके बाद पूरण करो पूरक, और तीसरे नंबर में कुंभक करो। ये राजयोग उसकी प्रक्रिया पढ़ लेना अपरोक्ष अनुभूति में, राजयोग की प्रक्रिया। यद यद चक्षुर्भ्यम पश्यति तत्तद आत्मेति आत्मैव भावयत। आज से जो दिखाई पड़ रहा है वहां अस्थिभाति प्रिय रूपी आत्मा की भावना करो, ये राजयोग का है। आंख से जो दिखाई पड़ता है, तो इस प्रकार के राजयोग का अभ्यास यदि आप करते हो तब फिर श्रुति तुम्हें आराम से जगा सकती है। और ये राजयोग का अभ्यास नहीं करोगे तो श्रुति भी जगाने में समर्थ नहीं, आचार्य भी जगाने में समर्थ नहीं। अपनी तैयारी हो तो आचार्य भी जगाने में समर्थ हैं, श्रुति भी जगाने में समर्थ हैं। कई बार कहीं जाना होता है जल्दी, तब ये कहा जाता है सोने से पहले, सोने से पहले घर में मां और पिता को, बुजुर्ग को, सास को, ससुर को ये कहा जाता है सुबह 5 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है, मम्मी यार मुझे 4 बजे उठा देना। हाँ, जब तुम इस तैयारी से सोते हो तब तो मां 4 बजे उठा देती है तो तुम उठ जाते हो, और वही मां दूसरे दिन 4 बजे उठने की तुमने तैयारी थी नहीं, संडे है, वही मां 4 बजे उठाती है तो तुम उठते हो। क्यों नहीं उठते हो? क्योंकि तुम्हारी तैयारी नहीं है, उठने की तुम्हारी तैयारी नहीं है, तो मां उठाने पर भी तुम नहीं उठोगे। और यदि तुम्हारी उठने की तैयारी है तो मां के यदि कदाचित न उठाए तो मां के स्नान करने जाते हुए बाल्टी की आवाज से ही तुम उठ जाओगे, मां को भी उठाना नहीं पड़ेगा। कदाचित न भी उठे तो मां एक आवाज लगाई तब तो तुम उठ ही जाओगे, क्योंकि उठने की तुम्हारी तैयारी है। आज तो संडे है इसलिए 37 भी हो चुका है टाइम। तो प्रसंग ऐसा है भाई, श्रुत्याचार प्रसादेन योगाभ्यास वशेन च ईश्वरानुग्रहेणापि स्वात्म बोधो यदा भवेत भुक्तम यथान्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वेन नैव पश्यति पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगीश्वरस तथा। जैसे अभी अभी खाने से पहले खाने के लिए रखा हुआ भोजन थाल में इदम इदम इदम इदम का व्यवहार करते हो कि नहीं? यह भात है, ये साग है टिंडोला के साथ है, व्यवहार होता है कि नहीं? यह टिंडोला के साथ, ये चटनी, ये खम्मन, ये रस, ये पूरी, ये श्रीखंड, यह और वो सब थोड़ी देर में खा लेते हो तो वह पेट के अंदर जाने के बाद वो श्रीखंड क्या होता है? यह होता है कि अहम होता है? मैं लेव जी पहले अभी अभी यह यह यह कह रहे थे, जिसको इदम कहा था थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है? पेट के अंदर जाने के बाद अहम हो जाता है। इसी तरह जब पूर्ण बोध हो जाता है श्रुति आचार्य की कृपा से, जब आप जग जाते हो तो बाहर अभी इदम इदम इदम जो दिखा हुआ था बाहर, वह पूर्ण अहम के रूप में, अपने से अभिन्न के रूप में आपको बोध होगा। जरूरत है जगने की, जरूरत है जगने का संकल्प करने। जगाने तो तैयार है, श्रुति भी तैयार है, आचार्य भी तैयार है, परंतु तुम्हें जगने का संकल्प ही नहीं है, तुम्हारी तैयारी नहीं है, तो फिर इसी तरह सोते रहेंगे। कब तक सोते रहेंगे देखा जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Arivattaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek Nayanmarya Sant ki kahani. इनका नाम है अरिवाल तायर। ये हमें प्रमुख सीख देते हैं। इनकी कहानी में यह दर्शाया गया है कि साधारण मानव बाधाओं के आने पर लक्ष्य के साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन जो इंसान पक्के इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ जीते हैं, वो कभी अपने लक्ष्य के साथ समझौता नहीं करते। पूर्ण निष्ठा और किसी भी विपत्ति के आने पर मार्ग से न हटने वाली दृढ़ प्रतिज्ञा मनुष्य प्राण को भी त्याग देते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं त्यागते, इसलिए वे महान कहलाते हैं। कावेरी नदी के जल द्वारा संचित क्षेत्र है तंजावुर। तिरुवारूर से 30 किलोमीटर की दूरी पर इस क्षेत्र में एक गांव था कणमंगलम। उस गांव के निवासी एक समृद्ध कृषक परिवार में अरिवाल तायर का जन्म हुआ था। युवावस्था से ही तायर ने संकल्प किया कि वह चंपा चावल का सुवासित अन्न, लाल साग और छोटे कच्चे आम का आचार भगवान को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। इसी सेवाकारी को उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। समय गुजरता गया, परिस्थितियां बदल गईं। धीरे धीरे अरिवाल तायर के परिवार की आर्थिक दुरावस्था के दिन आ गए। उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। दूसरों के खेत में मजदूरी करके तायर अपना निर्वाह करने लगे। मजदूरी के रूप में मिले धान से वे भगवान को भोग लगाते, इधर उधर से साग एकत्र कर सब्जी बनाते और अमौरी के अचार के साथ भगवान को प्रदान कर देते। एक बार उन्हें मजदूरी में बढ़िया धान मिल गया। वे स्वयं तो भूखे थे, लेकिन अपनी भूख प्यास को भूल कर उन्होंने अन्न, साग और अमौरी को एक टोकरी में रखा और खेतों से गुजरते हुए मंदिर की ओर चल दिए। उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी एक मिट्टी के पात्र में पंचगव्य लेकर साथ चल रही थी। दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का पंचगव्य प्रतिमा के अभिषेक के लिए था। भूख और थकान के परिणाम स्वरूप अरिवाल तायर को चक्कर आ गया और वह किसी चीज से टकराए। पत्नी ने उन्हें पकड़ने की ढेर कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़े। भूख की सामग्री धरती पर बिखर गई और उन्होंने अरिवाल तायर ने तब कराह कर कहा, अनाथों के नाथ दीनवत्सल भगवान शिव, आज मेरे ही कारण आपको भोग नहीं चढ़ाया गया और इसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ। यह सोचकर अरिवाल तायर ने फसल काटने वाले एक चाकू को धरती पर देखा और उससे अपनी गर्दन काटने का प्रयास किया। तिल्लई चिदम्बरम में अनंत नृत्य करते हुए प्रभु ने उनका हाथ उसी क्षण धरती की दरार से बाहर प्रकट हुआ और अरिवाल तायर का हाथ पकड़ लिया। भगवान का स्वर सुनाई दिया, वत्स, हमारी चिंता त्याग दो। ये लो, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए अर्पित अमौरी खा रहा हूँ। दरार के अंदर से अमौरी दांत से काटने की चटक चटक आवाज सुनाई दी। अपना गर्दन चाकू में फंसाकर काटने का प्रयास करने के कारण अरिवाल तायर का नाम अरिवाल तायर बना। अरिवाल का मतलब तमिल में चाकू होता है। प्रभु ने दर्शन दिए। नंदीश्वर ने पति पत्नी के भक्तिभाव की प्रशंसा करते हुए उन्हें शिवलोक में स्थान दिया। अनेक संत और भक्त जनता की भूख मिटाने के उद्देश्य से अन्नदान को अपना जीवन का सर्वस्व समझते हैं। अरिवाल तायर ने खेत में उग रहे धान अमौरी से भगवान को भोग लगाया और एक दिन जब भोग नहीं लगा पाए तो इसके लिए उनके मन में इतनी ग्लानि पैदा हो गई कि वह अपने प्राण तक न्यौछावर करने को सक्षम हो गए। इसे कहते हैं एक उत्तम भक्त। इसलिए इस संत का नाम शिवलोक में बड़े आदर सत्कार से लिया जाता है। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org. The next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Anaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे और एक नायनार या संत की कहानी, जिनका नाम है अनायार। दक्षिण के तिरुचिरापल्ली के उत्तर का क्षेत्र प्राचीन काल में मलनाड कहता था। यहाँ अहिरों का एक परिवार रहता था जो गौ पालन का कार्य करते थे। अहिर वंश प्राय कृष्ण परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं, पर यह परिवार पशुपतिनाथ शिव के प्रति समर्पित था। इस परिवार में अनायार का जन्म हुआ। अनायार की रुचि वंशीवादन और शिव भक्ति में थी। उनकी बंसी सुनकर सभी को प्रसन्न होता था। गाय चराने के लिए जब अनायार चारागाहों में पहुंचते तो प्रतिदिन अपनी बंसी द्वारा शिव पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र की धुन निकालता। उसने संगीत के सप्त स्वरों में नमः शिवाय को ऐसा साधा कि वह अपनी भी शुभ भूल गया। इस अलौकिक मंत्र को जब वह भक्ति में लीन होकर बंसी के स्वर से निकालता था तो सर्वत्र संगीत रूपी अमृत की वर्षा प्रारंभ हो जाती। वंशी की स्वर माधुरी जड़ चेतन प्रकृति को भी मंत्रमुग्ध कर देती। पशु पक्षी मानव सभी हृदय तंत्री मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गायें घास चरना बोलकर अनायार के समीप आकर खड़ी हो जाती थी। बछड़े माँ के थन से दूध पीना भूलकर खींचे चले आते। उस बंसी में निकले ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से पक्षी जो कि आकाश में उड़ते रहते हैं उसी स्थान पर चक्कर लगाते रहते थे। हिरण समूह कुलांचे भरना भूल कर बंसी के स्वरों में स्वयं को विस्मृत कर देते। मयूर समूह नृत्य छोड़कर शांतिचित्त होकर उस संगीत का पान करते। सांप शेर अथवा सभी जीव पारस्परिक शत्रुता भूल कर मुरली माधुरी में विमुक्त होकर एक साथ बैठे रहते हैं। आयना की इस एकनिष्ठ सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर शिव उनके समीप आ गए और उनसे कहा, बस इसी स्थिति में मेरे पास आ जाओ। प्रभु ने अनायार को रुद्र पशुपतियार नाम प्रदान किया तो उनका दूसरा नाम रुद्र पशुपतियार हुआ। चिकिलर ने कहा है कि जिस प्रकार बंसीवादन का विषय एवं सूक्ष्म वर्ग सभी को प्रसन्न कर देता था, उसी तरह विष्णुभक्त कैयालवार ने कृष्ण कन्हैया को की मुरलीवादन का वर्णन किया है। कालांतर में सूरदास ने ऐसा वर्णन उत्तरी भारत हिंदी भाषा में भी की है। ये सभी भक्त एक विशेष संकेत दे रहे हैं कि पशु पक्षी से लेकर मानव तक सभी को एक समान बांधने की क्षमता केवल संगीत में है, और जो संगीत शिव या भगवान के प्रति समर्पित हो वह सारी दुनिया को एकजुट कर सकता है। संगीत एक ऐसा सशक्त साधन है जो ऐसी समर्थता ला सकता है। एक कोशीय जीव से लेकर सुविकसित मानव तक सभी में जो सामंजस्यपूर्ण संबंध है उसी के आधार पर संसार टिकाऊ हुआ है। अनायार जैसे भक्त अथवा शिव श्री कृष्ण जैसे ऐश्वर्य अवतार जब बंसी की स्वर लहरियां वायुमंडल में दसों दिशाओं में फैलाते हैं तो जीव मात्र में व्याप्त एकात्मकता को उद्घाटित कर उनमें एक सामरस्य स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो देवलोक में व्याप्त सभी देवगण अपना अपना हविर भाग या प्रसाद ग्रहण करना भूलकर गोकुल में कृष्ण की मुरली के रस का पान करने पहुंच जाते थे। ऐसी ही स्थिति कुछ अनायार के वंशीवादन में थी, इसलिए यह है उच्च कोटि के संत हुए।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajat Girinibham Charu Chandra Vatansam Ratna Kalpojjalangam Parasum Rigavara Vetihastam Prasannam Padmasinam Samantat Stutam Amaraganir Vyagrakritim Vasanam Visvadhyam Visvavandhyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padma Bhavam Vasishtham Saktim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gauda Padam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Sishyam Shri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hasta Malakancha Sishyam Tantrotakam Vartika Karamanyan Asmad Gurum Santatamanatosmi Vishuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Shreyah Prapti Nimittaya Namaha Somardha Dharine Om Shanti Shanti Shanti.

प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला अंतर्गत सायंकालीन ये प्रवचन का क्रम में आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी का प्रसंग चल रहा है। अभ्यास के लिए श्लोक नंबर 81।

0: Navavati sukhalesha sansayo nasti tatra. Ajanimritarupam sambhami sambhajante. Ajanimam amritam sambhami sambhajante. Yahiya paramasaukhyam tehi dhanya lavante. Jaladi matana dakcho naiva pata labhedi. Nay. Shiva tava paricharyan sannidhaya dhanaya gauriya. Bhava mama gunadhuriyam buddhikanyam pradasi. Sakala bhuvana bandho sachidananda sindhu. Sadaya hridaya gehe sarvada sambhasattvam. Jaladi matana dakcho naiva patala vedi. Nachabana mrigayayam naiva lubdha prani praveena. Asana kusuma bhusha vastra mukhyam sapariyam. Kataya katamaham te kalpaya nindu maule. Bhagavan Shankaracharya ji, Bhagavan Shiva ki stuti karte huye ye bhav vyakta karte hain. यह प्राप्नोति मुदा तदर्पितमनः. जीवन समुक्तः खलु. जिसने अपने मन को पूर्ण रूप में तद अर्पितः आपके हवाले कर दिया है, आपको समर्पण कर दिया, ऐसा जो भक्त है वह मुदा प्राप्नोति परम आनंद का अनुभव कर पाता है, करता है. और वही स जीवन मुक्त, वही व्यक्ति वास्तव में पूर्ण रूप में जीवन रहते ही मुक्त हो जाता है. कैसे आपको अर्पण करेगा मन भाई? कंचित काल उमा महेश संबोधन है. हे उमा महेश, उमा के पति, उमा के स्वामी, उमा के महान ईश, उमा महेश जो महान भी है और ईश्वर भी है, और ये उमा के पति हैं. इसीलिए भगवान शिव को यहां संबोधन किया उमा महेश. हे उमा महेश, हे उमापति, जो तदर्पित मनः, संसार में जो व्यक्ति, हर व्यक्ति मन वाले तो है ही है, भले ही धन वाले न हो, मन वाले तो है ही है। इस संसार में मन वाला न हो ऐसा कोई इंसान तो है नहीं। मन तो सभी के पास है, दो चीज सभी के पास है भाई, तन और मन। इस संसार में तन न हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है और मन न हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। लेकिन धन न हो ऐसा बहुत मिल जाएंगे, जैसे आप हम, आप और हमको क्या कहेंगे? धन वाला कहेंगे कि धन नहीं है ये भी नहीं कर सकते हैं, धन है ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने है वो पर्याप्त नहीं है, है ना? इसलिए है कैसे कहेंगे, जो है वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन शरीर जितना है वो पर्याप्त है, जैसा है जितना है वो पर्याप्त है, और शायद 70 के ऊपर तो शायद वो भी पर्याप्त न हो, 70 के पहले पहले तो पर्याप्त था, 70 के बाद जो शरीर है वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि उस शरीर से कोई संतुष्ट तो है ही नहीं। किसी से पूछा जाए तुम इसी शरीर में खुशी हो, राजी हो, इससे बढ़िया शरीर दिया जाए, बोले मरे बिना यदि बढ़िया मिलता है तो हम बढ़िया लेने को तैयार हैं, मरने के बाद यदि लेने को बढ़िया मिलता हो तो इसी में राजी है, जो है उसी में भी जीना तो चाहता है। और गीता के अनुसार तो उसको यह भी पक्का है इससे बढ़िया शरीर मिलने वाला है, फिर भी इसको छोड़ना नहीं चाहता है, है ना? गीता में तो कहा है ना, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। ये तो पक्की बात है कि ये शरीर छोड़ने का हिम्मत करना हमको जरूरत है, इससे बढ़िया शरीर दूसरा मिलेगा, ये तो गीता प्रमाण है। लेकिन इसको छोड़े बिना, मरे बिना, छोड़े बिना तो नहीं, मरे बिना दूसरा यदि मिल जाए तो बढ़िया था, कर ही रहे हैं भाई। जिस घुटने से असंतुष्टि नहीं होती घुटना दूसरा बदल देते हैं, मरना नहीं पड़ता है, पड़ता है, बिना मरे घुटना बदलते कि नहीं? जिस किडनी से संतुष्टि नहीं है किडनी ट्रांसफर कर देते हैं, बदल देते हैं, मरे बिना बदल देते हैं। और जिस हार्ट से संतुष्टि न हो तो मरे बिना बदल देते हैं, तो अभी तो बहुत से पार्ट्स बदल देते हैं मरे बिना। तो वो हम करते ही हैं, उसमें राजी है, लेकिन मरना पड़े और तब बदले तो फिर वो राजी नहीं है। तो अभिप्राय क्या है? मन हमारे पास है, तन हमारे पास है, जो मन और तन है ये दोनों किसको अर्पण करना है? भगवान को अर्पण करना है। अब रही बात मरने के बाद की, पहले आजकल एक फैशन चल पड़ा है ना, मरने के बाद आंख दान करो, मरने के बाद देह दान करो, चल रहा है ना, एक अभियान ही चल रहा है। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीते जी देह दान करो, जीते जी मन दान करो। तदर्पित मनाहा, जो व्यक्ति इसी जीवन में जीते जी ही अपने मन आपको अर्पण करने में समर्थ हुआ, तदर्पित मना, उसकी दशा क्या होगी भाई? जिसने जीते जी अपने मन को परमात्मा को अर्पण कर दिया, उसकी दशा, उसकी भूमिका, उसकी अवस्था कैसी होगी? किंचित कालमुमा महेश भवत पादारविंदार्चनैः दशामि दिशिम, उसकी दशा ऐसी हो जाएगी कि वह मुदा सहस्रम प्राप्नोति, अनायास ही उसको प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाएगी। तब वह जब तक बचा रहेगा, जिंदा रहेगा, तो क्या करेगा वो? किंचित भवता पादार बिंदार्चन, किंचित काल भवता पादार बिंदार्चन ही, वह कुछ समय तो आपके चरणों की अर्चना में व्यतीत करेगा, परमात्मा की अर्चना में व्यतीत करेगा, कुछ समय तो परमात्मा को अर्चना पूजा में लगाएगा, और कुछ जो समय होंगे तो वो क्या करेगा? बोले किंचित ध्यान समाधि विश्च, पूजा से जैसे निवृत्त हुआ वह ध्यान समाधि में चला जाएगा, और ध्यान समाधि से निवृत्त हुआ नति भी, तो आपके आपको प्रणाम करने में ही समय व्यतीत करेगा, नति भी, और उससे कुछ समय बच गया तो क्या करेगा वो? किंचित कथा करना नहीं, और कुछ समय आपके दिव्य कथा श्रवण करने में लगाएगा, कथा करना नहीं, और कुछ समय वो क्या करेगा? किंचित किंचित अवेक्षणश्च, आपके दिव्य विग्रहों का, आपके दिव्य मूर्तियों का, स्वरूपों का अवेक्षण दर्शन में वो अपने समय को लगाएगा। किंचित नीति भी ही, और कुछ समय स्तुति में है, किंचित नति भी ही प्रणाम में, और किंचित नुति भी ही स्तुति में, आपकी प्रार्थना में लगाएगा। दशाम ईदृशिम, उसकी ऐसी दशा हो जाएगी कि आपके अलावा दूसरे का वह न दूसरे की बात सुनेगा, न दूसरे को देखेगा, न कोई दूसरे की सेवा करेगा, क्योंकि मन आपको अर्पण कर दिया। तो फिर आपके बाद आपके अलावा दूसरे का कोई महत्व ही नहीं रहेगा उसके जीवन में। और इसीलिए प्रारब्ध रहते हुए उसके जो जीवन है उसी से वो समय को व्यतीत करेगा और जीते जी वो मुक्ति का अनुभव करेगा। ये जीवन मुक्त पुरुषों का भक्त अपने जीवन का जीवन मुक्ति अवस्था में इस तरह प्रयोग करेगा। बड़ा ही सुंदर भाव शंकराचार्य जी ने उस अवस्था भक्ति की पराकाष्ठा की भूमिका की बात यहां इस तरह से वर्णन कर दिया। ये नहीं समझ लेना कि एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: जो भी परंपरा के गुरु है वो सब एक ही है, एक ही टाइटल है। हजार होंगे तो हम हजार सब एक ही है। तो पहले के पास से सुन के उसकी बात दसवें को, दसवें की बात सौवें गुरु को, सौवें गुरु की बात नौसवें गुरु को। हाँ, हम कितनी गलतियां करते हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये बात निकली इसलिए, आप साधक है इसलिए बताती हूँ। ये बात मैं और कहाँ प्रवचन करती होती पब्लिक में तो ये मैं नहीं बताती। तो ये जरा ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि आप सतत, आप बड़े भाग्यशाली है कि सतत संपर्क बनाए रखते हैं। ते धन्या हा, ऐसे साधकों को धन्य कहते हैं कि ये संपर्क, ये जो तार है, ये सूरत जो है, आप बनाने की कोशिश चेष्टा करते हैं। इसीलिए ये जो सूरत, जो तार बना है वो टूट नहीं जाए, इसलिए ये अविरोध और अविवाद का सूत्र है। आज आप अपने साथ इसके लेके जाइए। अब कहते हैं

0: स्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा वरगुरगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति।
1: हे शंकर, अतिशय तेज के अंबार रूप ऐसे आपके स्थूल स्वरूप को नापने के लिए, परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप ही प्रकाशमय नहीं है, उनका जो बाह्य स्थूल स्वरूप है वो भी प्रकाशमय है, अत्यंत प्रकाशमय है। तो बोले ऐसे अंबार रूप आपके स्थूल स्वरूप को पाने के लिए ब्रह्मा जी सत्य लोक तक ऊंचे गए और श्री विष्णु पाताल लोक तक गए, फिर भी उनकी गति कुंठित हो गई, आपके स्थूल स्वरूप को भी वो पार नहीं पा सके। ऐसे ही आपके स्थूल स्वरूप में भी वो स्थूल स्वरूप को भी जान नहीं सके तो सूक्ष्म स्वरूप की बात ही क्या। हे कैलाशपति, दसवां गया ना, नौ हो गया। मैं एक श्लोक आगे आगे तवैश्वर्यम यत्नाद। हे कैलाशपति, अग्नि समान देदीप्यमान शरीर वाले आपके ऐश्वर्य को नापने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी प्रवृत्त हुए, ये बात आ रही है शिव पुराण में। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी को हुआ कि भाई हमारा कारण कौन है, अगर विष्णु जी अकेले ही होते तो कारण ढूंढने की प्रवृत्ति चेष्टा नहीं करते। देखिए, कंपटीशन चेष्टाएं कहां से शुरू होती है, जब दूसरा होता है कि मैं तो वैभवशाली हूं पर मेरे जैसा ये कौन है, और तब कंपटीशन शुरू होती है, कारण शुरू होता है। तो बोले कि ब्रह्मा जी और विष्णु हम दोनों का कारण कौन है, कारण को जानने की क्यों इतनी उत्सुकता हुई। तो बोले अज्ञान निवारण के लिए कारण जानने की उत्सुकता नहीं हुई, वो कारण को पूछना था कि हम दोनों में से बड़े कौन है, महिमा किसका श्रेष्ठ है, वो जानने के लिए उत्सुकता हुई, दोनों ने तप किया। और इनके जो कारण थे एकदम प्रज्वलित स्तंभ के रूप में, यहां लिखा है कि अतिशय तेज के अंबार रूप, परम प्रकाशमयी तेजस्वी जो स्तंभ था वो स्तंभ उत्पन्न हो गया एकदम। और वो स्तंभ जो है उसकी जो चौड़ाई जो है वो अनलिमिटेड थी, और उसकी जो लंबाई जो है वो भी अनलिमिटेड थी, इन्फिनिटी तक पहुंच रही थी ऊपर और नीचे। तो वो जो स्तंभ प्रकट हो गया, वो स्तंभ में से वाणी प्रकट हुई और वहां कहा गया उन्होंने उनको कि इसका जो मूल है अगर उसको आप जान जाएंगे तो पता लग जाएगा कि आपका स्रोत कौन है, क्योंकि प्रार्थना स्रोत के लिए की गई थी और स्तंभ आ गया। तो विष्णु भगवान ने वराह का रूप ले लिया। देखिए, पाताल में जाने के लिए, धरती में जाने के लिए वराह जो होता है उनका गुण क्या है कि धरती में बहुत सरलता से भीतर जा सकते हैं। तो विष्णु भगवान वराह का रूप लेके नीचे गए स्तंभ के, और हंस का रूप लेके ब्रह्मा जी ऊपर उड़ने लगे पर पार नहीं पा सके। और ये जो बात आती है उसमें ऐसा कहा गया कि विष्णु जी तो पार नहीं हो सके इसलिए फिर से ऊपर आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए और फिर प्रार्थना की कि हे परमात्मा, आप जो भी है वो कोई भी प्रकार से प्रकट हो जाइए, क्योंकि हमें हम आपका रूप जो आपका जो स्थान है वो हम नहीं देख सके, स्रोत नहीं देख सके, मूल तक नहीं जा सके। तो ब्रह्मा जी को हुआ कि अगर विष्णु ये जो है उनके सामने मैं कह दूंगा कि मुझे पार नहीं मिला तो वो कुछ ठीक नहीं लगा उनको। और तब ब्रह्मा जी पांच मुख वाले थे, पंचमुखी थे, ऊपर से एक केवड़ा का जो फूल है, केवड़ा हम डालते हैं ना, तो केवड़ा का जो फूल है वो पुष्प ऊपर से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने वो गिरते हुए पुष्प को ठहराया और कहा कि हे पुष्प, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो बोले, मेरे जो परम कारण जो परमात्मा महेश्वर शिव जी है उनके मस्तक पे मैं चढ़ा हुआ था, मैं अब नीचे आ रहा हूँ। तो बोले कि मैं जब नीचे विष्णु भगवान को जाके कहूँ कि मैंने शिव जी के मूल मेरे स्रोत को देख लिया तो आप हाँ कहना, और वो बात में आ गए। देखिए, मस्तक पे से, शिव जी के मस्तक पे से थे तब तक कुछ नहीं, और उनके साथ आके भी ये वाणी, देखिए इसीलिए कह के वाणी निर्लज्ज है। हा? हम इतने संपर्क, अभी केवड़ा का वृक्ष शंकर भगवान के सर पे, गुरु आपको अपने सर पे बिठाए, यानी आप अति प्रिय होंगे तो ही ना, कोई सर पे किसको बिठाएगा? अपने पुत्र को भी कोई सर पे नहीं बिठाता, क्यों नहीं? सर पे तो कोई नहीं चाहिए, हाँ हृदय तक आज आकंठ लगा सकते हैं, सर पे तो कौन बिठाएगा? अतिशय प्रेम है तो सर पे बिठाएगा कि ये सर पे बैठ के भी तकलीफ मुझे नहीं देगा, उसी को हम सर पे बिठाएंगे। करोड़ों में से कोई एक मिलेगा जिसे सर पे बिठा सकते हैं, हाँ? तो इसीलिए हम गुरुजनों को और भगवान को सर पे बिठाते हैं, पर गुरु हमें सर पे बिठाएगा तो हमारा अहोभाग्य। तो ये केवड़ा का जो पुष्प है वो शंकर भगवान के ऊपर थे, ऊपर रहे थे, अतिशय प्रिय होंगे, शुद्ध चित्त होंगे, तो भी एक ब्रह्मा जी की वाणी इनफ हो गई उन्हें झूठ बोलने के लिए। हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा, हाँ, हमें तो किसी ने सर पे भी नहीं बिठाया है, कितना सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए ये निर्लज्ज वाणी जो है उसका प्रभाव और प्रताप है, उससे बच के रहना ठीक होता है। तो अभी बहुत दोनों ने प्रार्थना की तो शंकर भगवान जो है, शिवजी जो है, उन्होंने एक लिंग बाहर निकाला। ये जो स्तंभ है, स्तंभ में से एक आकार बाहर आया, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग यानी ये सेमी सर्कुलर, ये लिंग नहीं है मात्र, लिंग यानी चिन्ह। वो बोले, परमात्मा कोई चिन्ह दे दीजिए, तो पृथ्वी का चिन्ह निकाला। ये जो निकला जो बाहर, वो पृथ्वी का चिन्ह, और वो सबसे पहला लिंग जो बाहर निकला वो पूरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल पर्वत आपको पता है, रमण महर्षि जी की बात सुनी है, पूज्य स्वामी जी ने बहुत सुंदर टीका उपदेश सार लिखी है उसके ऊपर। तो ये जो अरुणाचल पूरा पर्वत है वो सबसे पहले निकला, और ये पूरी पृथ्वी यानी पहला जो पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ, ये प्रकाशमय तेजोमय स्तंभ में से उत्पन्न हुआ, और ये जो लिंग बाहर आया वो बोले, शंकर भगवान बोले कि मेरा चिन्ह मैं दे रहा हूँ, इसे आप नाम भी नहीं दे सकेंगे, रूप से भी वर्णन नहीं कर सकेंगे, फिर भी इसमें मेरा सगुण और निर्गुण दोनों रूप बराबर मेरा वैभव बनाए बैठा है। अब बताइए कि ये मेरे रूप को आप ऊपर और नीचे गए और क्या किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने देख लिया है, तो वो केवड़ा का जो पुष्प है उसके सामने शिव जी ने देखा, क्योंकि परमात्मा को भी पता है कि मेरे वैभव को कोई पहुंच ही नहीं सकता, हाँ? और पहुंचने क्यों नहीं पहुंच सकते भाई? तो हम ये व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं क्या? तो बोले, ऐसा नहीं है, पहुंचने वाला ये कहने के लिए भी अवेलेबल नहीं होता कि मैं पहुंच गया हूं। यस्या मतम तस्य मतम मतय यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जो कहते हैं मैं जान गया हूं वो नहीं जानता, और जो कहते हैं मैंने नहीं जाना वो हकीकत में जानता है, क्योंकि वाणी प्रवृत्त नहीं हो सकती है, ये परमात्मा को तो पता ही है ना। इसीलिए मैंने कहा कि संतों के साथ बहुत ज्यादा वो मत कीजिए, शांत रहिए, हमारी गलती हो जाती है इसलिए। तो यहाँ ये ब्रह्मा जी शिव जी को कहते हैं कि मैंने आपका पार ले लिया, अब ये कैसी मश्करी हो गई? तो केवड़ा का जो पुष्प है उसके सामने शिव जी ने देखा कि भाई, तुझे तो मैंने मेरे सर पे बिठाया है, तो झूठ नहीं बोलेगा तू, यू विल नॉट लाई। केवड़ा का पुष्प बातों में आ गए और हां बोल दिया। जैसे ही हां बोल दिया, तब से जैसे हां बोला, पहले तो ब्रह्मा जी का जो पांचवा मस्तक था वो भेदन कर दिया शिव जी ने, मस्तक ही चला गया, और ये कृपा की ब्रह्मा जी के ऊपर कि जो वाणी इससे प्रवृत्त हुई है ना, जो मेरे बारे में तुझे झूठ बुलवा गई, वो वाणी को ही मैं निकाल देता हूं। मस्तक ही भेदन कर लिया यानी अहंकार का नाश किया। परमात्मा को प्राप्त करने की एक ही बात है, आपके अहंकार को अल्प कर दो। और गुरुजनों के साथ मैं बात करने के लिए इसलिए ना बोलती हूँ कि कोई एक व्यक्ति जीवन में ऐसी रखिए जिसके पास हमारा अहंकार जीरो हो जाए। देखिए, ये तो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, पैर छूने देते हैं तो कृपा करते हैं। क्यों? हमारा अहंकार झुकता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर ऑब्लाइजिंग अस। कोई ऐसा वो निमित्त बन के बैठे हैं जिस जो अवेलेबल है 24 आवर्स, जिसके पास अहंकार हम झुका के ही रखे। ये इतने इसे समझिए। तो ये पांचवा सर भेदन हो गया और केवड़े के पुष्प को भी श्राप मिला। क्या मिला? कि भाई अभी सर पे नहीं बिठाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो वो छत्र पे चढ़ता है केवड़ा का वृक्ष, उसके बाद कभी भी। ये सब सिंबॉलिक है। इसे क्या समझना है कि इतना संपर्क रहने के बाद भी वाणी गड़बड़ कर सकती है, तो हमें उसे बच के रहना है। इतना ही समझ लेना। विष्णु भगवान के सामने भगवान ने देखा तो बोले, परमात्मा आपका पार हम नहीं पा सके, हा? मैं नहीं जान सका। तो परमात्मा बहुत खुश हो गए, बोले नहीं जान सके, आप मेरे वैभव को नहीं जान सके, वो आपने सच सच बता दिया तो मैं अति प्रसन्न हूँ। उन्हें गले लगा दिया और बोले कि आपकी जगह जगह जगह पर पूजा होगी, आराधना, आप आराध्य देव सबके बन जाएंगे। इसीलिए ये जो नारायण प्रभु जो है, जो परमात्मा है, जो कृष्ण है, जो वासुदेव है, वो जगह जगह पर वो पूजे जाते हैं, आराध्य देव बन गए हैं वो। इसलिए तो यहाँ श्री पुष्पदंत जी ने बात क्या की है कि अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से आपकी स्तुति करते हुए दोनों आपके स्वरूप को नहीं जान पाए, इसलिए आप प्रत्यक्ष हो गए उनके लिए। तो आपकी सेवा जो है वो क्या फलती नहीं है? स्वयं तस्थे ताभ्याम तव किम अनुवृत्तिम न फलती। यहां क्या कहते हैं पुष्पदंत जी कि आपको जानने की चेष्टा आपको जानने के बराबर है, आपको जानने की चेष्टा भी कश्चित यतति सिद्धये। ऐसा बताया है कि कोई कोई आपको जानने के लिए प्रवृत्त होता है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैन मन्य श्रुणोति, श्रुत्वा पियनम वेदन चैव कश्चित। आप को जानने के लिए प्रवृत्त होना भी आश्चर्य है और वो भी आपकी सेवा ही है। और ये सेवा को, सेवा से प्रसन्न होकर आपने अपना स्थूल रूप जो है वो बता दिया है। यानी परमात्मा को जानने की हमारे लिए अब क्या संदेश है कि परमात्मा को जानने की थोड़ी भी आप चेष्टा कीजिए, किस प्रकार चेष्टा करते हैं उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। और हमें अपनी फिक्र नहीं लगी रहती है, थोड़ा साधन थोड़े सत्संग में जाने लगे तो मेरे बाजू वाला ये परमात्मा से कैसे पहुंच रहा है उसकी फिक्र में हम ज्यादा रखेंगे, हम तुरंत उसके गुरु बन जाएंगे। देख तू ऐसा करना, ऐसा करना, ये करना, ये पाठ करना, ये जप करना, ये मंदिर में जाना, मैं जाती हूँ इसलिए। भाई आप जाइए, हमें हमारा जाने दीजिए। अगर आपके पास गुरु है, कोई संदेश देने वाला है, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है तो फिक्र मत कीजिए, फिर सबका मत सुनिए, समाहित हो जाइए और चिंता भी मत कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। करना क्या है? यहाँ कहते हैं कि ये न कहना प्रकार है ना, कोई भी प्रकार से उपासना की तो परमात्मा अपना जो सगुण स्वरूप है ना वो आपके लिए बनाएंगे ही। 33 करोड़ तो बना दिए हैं, अगर जरूर पड़ी तो और एक भी बनाएंगे, आप उसकी फिक्र मत करना। यहाँ परमात्मा कैसे है, वो अटकने ही वाले नहीं है, वो रुकते ही नहीं है। क्यों रुकते नहीं है? क्योंकि ये जो महासागर जो है, मुंबई में महासागर है, तो वहां वेव्स उठते हैं, उसकी कोई गिनती होती है क्या? 10-12 वेव्स ज्यादा बना लिए तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे आपकी जरूरत है, आपकी वृत्तियां ऐसे हो गई कि आपको सगुण साकार रूप की जरूरत है तो वो उत्पन्न हो जाएगा, आप चिंता मत करना। नहीं होता है वो हमारी मन की अशुद्धियां है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसे उत्पन्न नहीं होना है। नहीं तो यही नरसिंह मेहता, यही मीराबाई, यही तुकाराम, यही नामदेव उनके लिए उत्पन्न नहीं हो सकते थे। पर ये होना, उत्पन्न होना बड़ा कठिन है, पर हमारे हाथ में है। मात्र और मात्र तम एव एकम आत्मानम विजानथ अन्यम वाचो विमुंचे थ। मुंडक उपनिषद में इसलिए कहा है कि अन्य बात छोड़ दीजिए, अपने शरीर मन बुद्धि की बातें ही छोड़ने को कही है, तो दूसरे के शरीर मन बुद्धि की बातें तो करनी ही नहीं है ना हमें, हाँ, कहाँ गए, क्या करते हैं, कैसे हैं, जाति नीति कुल गोत्र, हाँ, सबकी बातें हम सब जानना है, सब बातें करते हैं। और यहाँ क्या कहा है शंकराचार्य जी ने, कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम। तो ये जब वर्जित है, दूरगम है, तो उसकी बात तो नित्य वर्जित है। और इतना कर लिया तो ये चित्त शुद्धि का साधन हो जाएगा, ऐसा परमात्मा बता रहे हैं। अब आगे कहते हैं,

तमिदम। अब चिंता मत कीजिए, उच्चारण अच्छे होने ही चाहिए, पर इसका श्रवण या सुन भी लिया तो भी वो सर्प दंश के मंत्र के जैसा ये हमें असर करेगा। हे त्रिपुरहर, सर्व का पराभव करने से अनायास बिना वैरी यानी कोई भी बिना दुश्मन, ये जो रावण की यहां बात है कि ये जो रावण थे सर्व का पराभव कर लिया यानी कोई ऑपोजिट बचा ही नहीं, ऑपोजिशन बचा ही नहीं, निर्वैर हो गए, ऐसे त्रिभुवन को लेने के बाद ये जो रावण थे आपकी ही कृपा से त्रिभुवन के अधिपति बन गए और ये 20 बाहुओं को धारण करने वाले रावण, उन्होंने क्या किया

वो सुनने की मनाही है, ना बोला है हमारे शास्त्र में, वो इसीलिए क्यों ना बोला है? भक्ति संगीत या भजन उसकी बात अलग है, पर ऐसे म्यूजिक जो है जो आपकी अंतर्वृत्ति या अंतर इंद्रियों को बहुत सतर्क और सतेज कर देती है। ऐसे केमिकल चेंजेस आता है वाजिंद्रों को सुन के कि आपको सामने वाले को मारने का ही मन हो। आपका दोस्त भी बैठा हो तो भी आप मार देंगे उसको। क्यों? क्योंकि वो म्यूजिक का प्रभाव है। तो यहां और इसीलिए वॉर में ये सब बजाए जाते हैं, उकसाए जाते हैं सैनिक। इसीलिए कहने का तात्पर्य कि जो जिस रावण ने त्रिभुवन विजय कर दिया उसमें कितना तमस कितना रजस होगा कि एक भी दुश्मन बचा नहीं है। तो ये यहां प्रशंसा की बात नहीं है कि दुश्मन नहीं बचा है, दुश्मन मार दिया और नहीं बचा वो प्रशंसा की मार नहीं है। दुश्मन जिए अपने ही प्रभाव में, अपने ही तरीके से जिए और हम कह सके कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है तो कुछ बात हुई। या तो दुश्मन को ही नहीं रखा, यानी इतने प्रभाव तमस और रजस वाला ये जो रावण थे जिसके बाहु लड़ने के लिए ही तत्पर रहे थे, ऐसे रावण ने भी क्या किया, अपने नव मस्तक अपने ही हाथ से छेद के आपको चरण में माला पहना दी। कहने का तात्पर्य क्या है कि रावण के तमस से ज्यादा तमस किसी का नहीं हो सकता। उसने भी अपना अहंकार आपके सिर में झुकाया, आपके पैर में झुकाया। रावण से ज्यादा राजसिक कोई नहीं हो सकता, यानी ये अवधि बताई है, मर्यादा बताई है कि ये इससे ज्यादा आगे नहीं। हम बोलते हैं ना लिमिट, एंड लिमिट। तो इससे ज्यादा रजस की लिमिट नहीं हो सकती। और उन्होंने भी ये नव मस्तक जो है वो आपके चरण में रख दिए। हे परमात्मा, उनकी जो दृढ़ भक्ति है, ये आपके प्रति जो भक्ति है उसी का प्रभाव है कि इतना रजस इतना तमस इतने दुश्मनों को मानने की वृत्तियां रखने वाले रावण ने भी आपको, यानी आपका प्रभाव ऐसा है कि आपके प्रभाव के पास रजस और तमस का भी नहीं चलता। तो हे परमात्मा, मेरा भी मेरे भीतर भी छोटा मोटा रजस, मुझे भी रजस आया था कि मैं पुष्प की चोरी करूं और आपको ही चढ़ाऊं। मुझे भी तमस था, ये तमस का ही दोष था कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने प्रमाद किया। प्रमाद से हम क्या करते हैं कि हमारे भीतर परमात्मा ने जो भी हमें सिद्धियां दी है ना, थोड़ी बहुत भी, देखिए ये बोल सकते हैं ना, प्रवचन की बात नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ वाणी ये बोल सकती है, ये भी सिद्धि है। ये कान सुन सकते हैं वो भी सिद्धि है, आंख देख सकती है वो भी सिद्धि है। तो ये सिद्धियों का गलत उपयोग किया, तो सिद्धियों का अतिशय गलत उपयोग करने वाले ये जो रावण है, और ऐसा मेरी भी रावण की गलतियां, इतनी बड़ी सिद्धियों का दुरुपयोग भी आप माफ कर सकते हैं, आप उसके लिए प्रसन्न हो सकते हैं, तो मेरे लिए तो आप प्रसन्न हो जाइए। इतना ही पुष्पदंत जी को रावण को याद करा के कहना है। किसी को कुछ काम कराना है तो क्या कहते हैं, पहले के एग्जाम्पल्स देते हैं अपना काम कराने के लिए कि भाई वो समय में ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब मेरे बारे में भी आप ऐसी दया की। आपको पता होगा ज्यादा कि जब केस रिप्रेजेंट करते हैं तो पिछले जो केसेस ऐसे हो गए हैं वो पूरे उसके नोट्स लेके जाना पड़ता है, और क्या कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा पास्ट में हुआ था, तो अब आप मेरे ऊपर भी रहम नजर रखिए और मुझे भी इसमें से क्षम्य कीजिए, मुझे भी क्षमा दीजिए। ऐसे ही पुरमथन ये पुष्पदंत जी कहते हैं कि इतने बड़े बड़े रावण जैसे केस हो गए, मैं तो छोटा मोटा हूँ, हाँ मुझे भी आप क्षमा कर दीजिए हे प्रभु। अब रावण की ही बात निकली तो पुष्पदंत जी को कहा कि ये परमात्मा आप शांति से सुन ही रहे हैं, तो और एक बात भी मैं बता ही देता हूँ, अब कहने के लिए मैं बाकी नहीं रखता हूँ। तो पुष्पदंत जी कहते हैं

0: मयतः अलव्यापाताले व्यलस चलिताङ्गुष्टशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मूयति खलः।
1: पर अंत में क्या है, ये शरीर मन बुद्धि का मर्यादित जो संगात है वो अपनी गलती कर ही देता है, जैसे केवड़ा का जो पुष्प है उसने गलती कर दी। नव सर धरा दिए परमात्मा को, परमात्मा प्रसन्न हो गए, वरदान सब दे दिया।

तो अब क्या होगा, अब बोले कि अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं ये कैलाश पर्वत जो है इतना पवित्र है, आपको लेके ही मैं जाऊंगा लंका में। देखिए थोड़ा बख्श दिया तो परमात्मा को ही उठाने चले, यानी हमारे व्यवहार में भी पूरा बख्शा नहीं जाता, माफ किया जाता है पर सजा भी दी जाती है। वो इसलिए कि भाई मैं आपको माफ करता हूं, आपने ये केस रिप्रेजेंट किया, पिछले जो आपने केस बताए उससे यू आर एंटाइटल टू बी फ्री। मैं आपको जेल नहीं भेजूंगा पर मैं फाइन तो भरने, आपको फाइन तो लगेगा ही, ये फाइन। ये परमात्मा इतने भोले, इसीलिए उनको भोले कहते हैं, भोले शंकर, कि ये रावण को फाइन भी नहीं दिया उन्होंने, नहीं लिया उनके पास से। ऐसे ही पूजा उनके रजस और तमस को पूरा माफ ही कर दिया, इतने प्रसन्न हो गए शंकर भगवान। तो क्या हुआ कि ये उनको ही लेके उठा के चलने लगे। ऐसा कहा है कि रावण आपकी ही भक्ति करके अपनी जो 20 भुजाएं थी उसमें शक्ति प्राप्त की थी, पर आपसे ही प्राप्त शक्ति से आपके ही निवास स्थान कैलाश को उठा के अपनी भुजाओं का जो पराक्रम है वो आपको बताने चले, आपकी ही शक्ति का प्रदर्शन आपके पास किया। ये साधक को समझ जाना चाहिए कि ज्ञान रूपी शक्ति कोई भी गुरुजनों के पास, कोई भी शास्त्र वेद के पास हम ये शक्ति ले तो उसका उपयोग एटलीस्ट इतना तो दिमाग नहीं चलता कि उसके सामने तो मत कीजिए, बाहर किसी के सामने तो करना ही नहीं है, पर ये बुद्धि कितनी कुबुद्धि हो जाती है, उसके सामने भी तो है परमात्मा, मेरी कुबुद्धि से अगर मैं ऐसा करूं, पुष्पदंती जी कहते हैं, तो मुझे आप क्षम्य करना। तो यहां रावण का जो है वो दृष्टांत देके कहते हैं कि आपके ही ऊपर आपकी शक्ति का प्रयोग हुआ, तो हुआ क्या है परमात्मा, शंकर भगवान समाधिस्थ बैठे थे कैलाश के ऊपर, तो उन्होंने पैर का जो अंगूठा है वो थोड़ा ही दबाया, अपने आसन के ऊपर ही ऐसा ही दबाया, और रावण जो है 200 भुजाओं वो पर्वत के बीच में आके चकनाचूर हो गए, रावण वहीं रख गए। परमात्मा क्या करते हैं पता है, अब ये रावण का भी, रावण भी क्या सोच रहा है, उसके मन का कारण भी परमात्मा है। रावण मुझे उठाने वाला है ऐसा शिवजी को नहीं पता होगा क्या, तो पहले से ही बता देते ना, पहले से ही वजन इतना कर देते कि रावण उठा ही नहीं सकता, पहले से पैर क्यों नहीं दबाया। नहीं, शिष्य के भीतर, सच्चे परंपरा के जो गुरु है, शिष्य के भीतर उसका मैक्सिमम जितना अहंकार है ना वो लाने की चेष्टा करते हैं, शांत बैठे रहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार में इतने से भी काम हमारा अटक जाएगा, ये आके खड़ा रह जाएगा अहंकार जो छोटा रखा है, तो गुरुजन हमारे ऊपर अति कृपा करते हैं, उठने देते हैं अहंकार, उठने देते हैं, उतने तक उठने देते हैं कि ये तो पर्वत उठा के चला गया, खुद के आसन से भी हला दिया तो भी चुप रहे गुरु। तो अभी क्या हुआ, इतना कर लेने दे, उसका पूरा जो अहंकार, पूरा जहर निकाल लिया, गुरु कृपा करते हैं, ये कृपा दिख नहीं रही है, पूरा जहर निकाल लिया अर्जुन रावण का, और फिर एक अंगूठा दबा के प्रभाव रख दिया कि भाई बैठ जा, ये मेरे ही प्रभाव से तेरी भुजाओं में बल है, तू भूल गया रावण, तो जरा यहां सो के याद कर ले, यहां दबा दबा मेरे पैर के नीचे दबा दबा भी तू याद कर ले मेरे प्रभाव को। तो हे परमात्मा, ऐसी गलती मुझसे, पुष्पदंत जी कहते हैं कि परमात्मा रावण ने जो गलती की वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं वाकिफ हूं ये गलती से। देखिए अब हम भी वाकिफ हो गए हैं ये गलती से, अब सजा डबल होगी, रावण को तो इतनी सजा हुई, फिर छूटा भी, हम तो छूटेंगे नहीं, फिर बेटर लक नेक्स्ट बर्थ, वो उसमें भी आ रहा नहीं है, उसका कोई यही नहीं है। पुलिस जब कुछ गुनाह करते हैं तो सजा ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि रूल्स मालूम है, रावण को ये पता नहीं था, ये तो बाद में रचा गया। तो पुष्पदंत जी कहते हैं कि मुझे पता है आपके वैभव का, इसलिए मैं ये गलती करने वाला नहीं हूं। तो ऐसे रावण का प्रभाव बताने के बाद अभी बाणासुर जो है, ये रावण बाणासुर क्या है, अलग अलग अहंकार की सब चेष्टाएं हैं, अलग अलग अहंकार के रूप है, अहंकार हमारे भीतर बहुरूपिया बन के आता है, वो बहुत अच्छा बन के आता है, सज दत्त के आता है, बंठन के आता है,
तो ये जो बहुरूपिया जो है, जो अहंकार जो है, वो मुखौटा हटाने के लिए ये स्तोत्र, ये स्तुति, ये परमात्मा का नाम भजन आपके अहंकार के मुखौटों को हटाने के लिए श्रेष्ठ साधन होते हैं। इसीलिए भक्ति, नाम स्मरण, चिंतन करने कहे गए हैं। तो ऐसे ही परमात्मा की भक्ति करते करते धीरे धीरे उनके सगुण निर्गुण साकार रूप में डूबते डूबते उन तक हम पहुंच जाए, ऐसी ही परमात्मा और गुरुजनों से प्रार्थना है।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 12.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Istri ne jali dal khila di, laga hua chawal khila diya to vairagya ho gaya. Ka sansar aisa hi hai. और क्या हुआ? कहा पहुंच गए हरिद्वार, कहा छोड़ो संसार, वैराग्य तो हुआ लेकिन पुत्र पहुंच गया। उसने कहा पिताजी क्षमा करो, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। कहा स्वामी जी घर जाऊंगा। कहा क्यों? आप तो कह रहे संसार मिथ्या है, संसार ऐसा ही है। कहने लगे चलो अपने ही तो हैं, पुत्र है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। फिर आ गए। तो ये क्या है? हमारा लगाव बैठा हुआ, हमारा अध्यास, इसी को अध्यास कहते हैं, अभिनिवेश कहते हैं। और अभिनिवेश कब तक रहता है? जब तक कच्चापन है। नारियल में कच्चापन है तब तक वो गिरी, उससे चिपकी हुई। लेकिन वही जल समिट करके उस गिरी में पहुंच गया, और समिट करके गिरी में पहुंचा, परिपाक उसका हुआ, इसी को अभ्यास कह दिया है। अभ्यास न तो कौन थे वैराग्य, बगैर अभ्यास के वो पकता नहीं। और कोई भी चीज है संकेत किया, काले न पच्यते विद्या सस्य में, वो जैसे फसल जो है आज बो दो आज नहीं पकेगी। किसान को छह महीने, दो महीने, तीन महीने जैसी फसल है वैसी प्रतीक्षा करनी पड़ती, और जो है उसकी रखवाली करता, उसके विकारों को निकालता रहता, उसमें जल देता रहता, उसमें खाद्य पदार्थ देता रहता, तब जाकर के जो है वो फसल पकी उसे मिलती है, तब उसका लाभ। ऐसी विद्या भी जो है, हम जो है उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परिपाक करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, और जब पक जाती है तो जैसे जल जब समिट करके गिरी में पहुंच गया, और गिरी में समिट करके जल जब पहुंच जाता है तो फिर उसमें और परिपाक होता है, उससे एक हो जाता है, जैसे ही एक होता है तो तैल रूप बन जाता, और जब तैल रूप बन गया तो वही गिरी जिसको चाकू से निकाल रहे थे लेकिन फिर भी बड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन अब उस गोले को यूं हिलाते हो तो उसमें रहते रहते, और वो उससे अलग हुआ हुआ है, उसी में रहते रहते क्या है, अलग हुआ। तो ये खोपड़ा समझ लो, स्थूल शरीर, ठीक है ना, और उसमें जो है तैलादि वैराग्य समझ लो, और उसमें जो है गिरी है वही कारण शरीर समझ लो, ठीक है ना। तो ये तीनों में एकता वहां पर हो जाती है, और एकता हो जाती तो अलग हुआ हुआ हो जाता। जनक आदि के उदाहरण सुनते हो, पृथु आदि के उदाहरण सुनते हो, उनके जीवन में ये आया, उन्होंने इस व्यक्तिगत ज्ञान को प्राप्त किया, और जब व्यक्तिगत ज्ञान उनके जीवन में आया तो उनकी भी ऐसी स्थिति हो गई। उनको छोड़ करके गुफा में बैठना नहीं पड़ा, उनको छोड़ करके संगम में बैठना नहीं पड़ा है। अपरे गिरीणाम संगमे नदी नाम दियो दिया विप्रो अजायत, यह विप्रत बुद्धि कब प्राप्त होती है? तो कहा नदियों के संगम में है, गुफाओं में बैठ करके एकांत में बैठ, लेकिन यह यहीं पर भी हो जाती, लेकिन कब होगी? तो उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो ये संकेत किया। तो ये जो है वैराग्य, ऐसा हमारा वैराग्य होना चाहिए, और वो ऐसी जब स्थिति परिपाक की हो जाती है तो तीनों से ही वैराग्य हो जाता है, उसे न स्थूल में अभिनिवेश रह जाता है, न सूक्ष्म में अभिनिवेश रह जाता है, और न कारण में अभिनिवेश रह जाता है, तीनों से ही। और इसका कसौटी इसकी क्या है, कैसे जानोगे? तो देखो इस स्थूल में आपको पता चल जाता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ी सुंदर चर्चा की। अर्जुन के प्रश्न के अनुसार किम प्रभासित किम आसित इत्यादि जब उसने प्रश्न किए तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, यदा माने जिस काल में प्रजाहात त्याग देता है, कहा किसको, सर्वान कामान संपूर्ण कामों, ये स्थूल रूप से संकेत कर दिया। लोक में हम देखते हैं कि जैसी स्थिति मिल गई वहीं पर सो गया तो कोमल कठोरता का उसे बहन ही नहीं रहा, वैराग्य हो गया स्पर्श, और जो खाने में सुपाच्य मिल गया तृप्ति हुई तो। तो ऐसे स्थूल कामों का त्याग तो लोक में देखने में आता है, लेकिन सूक्ष्म जो काम, और सूक्ष्म का पता स्थूल से चलता नहीं, उसकी रहनी सहनी से पता चलता, वो पता कब चलता, जब आपको ही, आपके बाहर के त्याग को तो स्थूल त्याग को तो दूसरा भी जान सकता है, लेकिन आपका जो सूक्ष्म त्याग है उसे दूसरा, उसे कौन जानता, उसे आप ही जान पाओगे कि अभी त्याग हुआ कि नहीं। वो कैसे, यदि स्वप्न आ रहा है तो समझ लेना अभी सूक्ष्म का त्याग नहीं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, जब कह दिया सर्वान कामान प्रजाति, सारे कामों का त्याग कर दिया, फिर रह क्या गया, लेकिन फिर भी क्या बोले, पार्थ मनोगत, मन में रहने वाले, अंतःकरण में रहने वाले, सूक्ष्म शरीर में रहने वाले, उनका त्याग कब पता चलेगा, स्वप्न आना भी बंद, क्योंकि स्वप्न है क्या, अविद्या काम कर्म संस्कारों से ही तो स्वप्न आता, यदि अविद्या काम कर्म की निवृत्ति हो गई तो स्वप्न आएगा ही नहीं, तो स्वप्न। और कहने लगे कारण की कसौटी क्या, चलो सूक्ष्म खा तो अपने को पता चल गया, कारण रूप तो इसके लिए तो उदाहरण ही आता है, क्या उदाहरण, जैसे जड़ भरत, जड़ भरत के अंतर्गत सूक्ष्म और स्थूल काम नहीं किंतु कारण रूप काम पड़ा हुआ था, जिसके कारण उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा, तो पुनः जन्म होता है और स्मृति आपको बनी रही तो समझ लेना कि कारण रूप काम बना। तो इसलिए बीज सूक्ष्मा ध्याम सह प्रजहाती, जहां पर बीज रूप, कारण रूप, सूक्ष्म रूप और सह शब्द का अर्थ कर दिया स्थूल, तीनों का त्याग हो जाता है, तब कह दिया स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, वही क्या है, स्थित प्रज्ञ, क्यों, आत्मन्येव आत्मना संतुष्टा, बोझ उस व्यक्तिगत ज्ञान में ही अब एकत्व को प्राप्त हो गया, ये संकेत कर दिया, तो ये वैराग्य की बात आ गई। तो यहां पर संकेत जो किया गया कि ऐसे जो बृहस्पति हैं, ब्रह माने ज्ञान और उसके पति माने स्वामी, उस पर प्रभुत्व रखने वाले, उसको जानने वाले, ऐसे वह बृहस्पति मेरा कल्याण करें, अर्थात वह बल दें, जैसे उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया वैसा ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो, अर्थात दूसरे रूप में उनको गुरु माना गया, तो मने गुरु में पठन पाठन की प्रक्रिया होती है, अर्थात वो अपनी शिक्षा के द्वारा मुझे सुशिक्षित करें और सुशिक्षित करके उस ज्ञान वाला बना, ये प्रार्थना की गई। आगे शब्द आया विष्णु रुक क्रमा, विष्णु शब्द व्यापक शक्ति का परिचायक, उरु माने महान, क्रम माने पूर्व पर की व्यवस्था, पूर्व और पर की व्यवस्था, जन्म, जीवन, स्थिति, ये क्या है, एक क्रम है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये भी क्या है, एक क्रम है, एक व्यवस्था है, है? बाल्य, तरुण, वृद्धा, ये भी क्या है, एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था कौन कर रहा है, विचार करो, इस व्यवस्था को देने वाला कौन है, जो अहंकार करते कि करे ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि इस व्यवस्था देने वाला कौन है, बाल्यावस्था और बाल्या से तरुण का आ जाना और तरुण से वृद्धा का आ जाना, आप तो नहीं चाहते कि वृद्धावस्था आ जाए, हैं? कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता कि वृद्धावस्था आ जाए, हाय राम काहेउ भयउ हम डुकरा, याद बुढ़ापा कबहू न कीनो, तबहू आए गयो ससुरा, हाय राम काहेउ भयउ हम डुकरा, नहीं चाहते, हैं? लाठी टेक चलत पग थाके, बालापन के भुनरा, हाय राम काहेउ भयउ हम डुकरा, तो ये सब नहीं चाहते कि बाल सफेद हो जाए, नहीं चाहते कि झुर्रियां पड़ जाएं, लेकिन ये सब हो रहा है, ये कौन सी व्यवस्था के अनुसार हो रहा, और वो व्यवस्था किसकी है, विचार करो, ये क्रम जो है देने वाला कौन है, ये व्यवस्था देने वाला कौन है, जो देने वाला है वही क्या है, और ये कैसी व्यवस्था है, महान व्यवस्था कह दिया, इसमें कोई परिवर्तन कर सकता, ग्रीष्म, वर्षा, शरद है? और जो है शिशिर, हेमंत, बसंत, ये क्रम किसने बताया, ये शीतोष्ण का क्रम किसने किया, कालों का रात्रि दिन संवत्सर आदि ये सब क्रम कहां से है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था देने वाला जो है, इस क्रम की श्रृंखला को प्रवाहित करने वाला जो है वो कहां कर वो करके कर रहा, तो कहा वो सर्वत्र विद्यमान है, उसी अवस्था में भी बैठा हुआ है, पूर्व की अवस्था में भी बैठा हुआ है, पर की अवस्था में भी उसकी सत्ता है, पूर्व पर की अवस्था न रहे मध्य की अवस्था रह जाए लेकिन वह वहां पर भी अवस्थित है, इसलिए उसकी सर्वव्यापकता। तो विष्णु कैसा है का सर्वव्यापक, ऐसे उस विष्णु की यह श्रेष्ठ व्यवस्था है और उसकी व्यवस्था से ही ये सारी सृष्टि चल रही। हम सुनते तो हैं, यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम, क्या कहा, जिसने ब्रह्मा को माने सृष्टि के रचयिता को क्या है सबसे पहले निर्मित किया, और निर्मित करके फिर क्या किया, क्योंकि वो निर्माण करने में व्यवस्थित कर सके तो क्या किया, तो कहने लगे कि यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम वेदांश प्रहेणोत, उसी में क्या है वेद ज्ञान का प्रहेणन भी कर दिया, क्योंकि बगैर ज्ञान के कोई कर्म नहीं होते। पहले नियम है जानात इच्छति करोति, पहले ज्ञान होता है फिर इच्छा होती है और इच्छा होने पर फिर प्रयत्न व्यापार होता है, ये नियम है। तो इसलिए पहले उसने उस ब्रह्मा को बनाया, और बनाया क्या, तो इसको भी समझ लो वेद क्या कहता है, हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे, जो ये हिरण्यगर्भ है वो उससे भी पहले विद्यमान है, वर्तते माने विद्यमान, उसकी विद्यमानता उसकी सत्ता है, और वही क्या हुआ हिरण्यगर्भ हो गया। हिरण्यगर्भ क्यों कहा, तो बड़ी मोटी भाषा में समझ लो, हमारे अंदर अहम जो है ये क्या हिरण्य रूप है, और ये कहां आया, तो ये चिदाभास कहां आया, तो चिद में ही आया है ना, तो हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे, और वैसे ही समष्टि की दृष्टि से सोच लो, इसे ब्रह्मा आदि हिरण्यगर्भ कहते, समवर्ताग भूतस्य जातः, वही क्या करने वाला है सारे प्राणियों को सारे भूतों को उत्पन्न कर, भूतस्य जा पति रेक आसी, वो केवल एक ही पति, यहां तो अनेक बतला दिए, गुण विशेष को लेकर के इंद्र भी कह दिया, वरुण भी कह दिया, मित्र भी कह दिया, एक एक देश विशेष के एक एक गुण विशेष के देवता, लेकिन इन सबका भी जो है संयमन करने वाला, सब में भी जो व्यापक रहने वाला, सबको भी ये सामर्थ्य देने वाला वो कौन है, तो कहने लगे वो व्यापक शक्ति है, उस व्यापक शक्ति को विष्णु नाम दे दिया, और वो ही इस सब में ये सब करवा रही, उसके बल से ही ये सब हो रहा। तो ऐसी जो व्यापक शक्ति है वो व्यापक शक्ति से फिर प्रार्थना करने लगा ऋषि कि विष्णु रुक्रमा, वो विष्णु है क्या करें हमारा कल्याण करें, अर्थात कल्याण करें, कल्याण कब होगा, जो हमारे अंदर उससे विपरीतता है उसकी निवृत्ति हो जाए और परीतता आ जाए तो कल्याण हो जाए, तो वो शक्ति हमारे अंतर्गत दे दें, ये संकेत किया। अब और विचार कर लो, इस व्यवस्था को आप विचार करके देखें, जैसे कह दिया जन्म जीवन और मृत्यु और सर्व की सत्ता प्रतीयमानता, ये क्या है पूर्व पर की जो व्यवस्था है कैसे होती, तो वेद में इस बात को लेकर के बड़ा सुंदर मंत्र आया शुक्ल यजुर्वेद में, और भगवान ने उसको सरल ढंग से गीता में कहा। तो वेद में मंत्र आया त्वा मौषधि सर्वा शोम, और दूसरे कृष्ण यजुर्वेद को लेकर के थोड़ा परिवर्तन भी किया, वहां संकेत किया त्वा मिमा मौषधि विश्वाह त्वं आपाह अजनयस त्वं गा, ये संकेत त्वं आतंतोर वंतरिक्षम बवर्थ तम ज्योतिषा वितमो ववर्थ, ये मंत्र आया वेद में, क्या मतलब है इसका, तो संकेत किया उसी विष्णु की तरफ सर्वव्यापक शक्ति की तरफ, कहा तुम आप ही क्या हो, इमा ये जितनी भी औषधियां हैं वो औषधि तुम, और वहां साथ में वनस्पति को भी ग्रहण कर ली। औषधि और वनस्पति में फर्क क्या है, तो हर वेद शास्त्र में इसकी चर्चा आई। क्या कहा? फल पक्वांता औषधया, जो पौधा फल दे करके और फल उसका पक जाए और पकने पर पौधा नष्ट हो जाए तो उसका नाम क्या है? औषधि। औषधि। और जो पौधा फल दे, पक जाए, फल तो गिर जाए लेकिन पौधा बना रहे तो उसे क्या कहते हैं? वनस्पति। उसे क्या कहते हैं? तो ये औषधियां और वनस्पतियां यही क्या है? यही सारी सृष्टि का जीवन है। इन्हीं को लेकर के सारी सृष्टि होती। आप गीता में पढ़ते हो, अन्नात् भवन्ति भूतानि। किससे होते? कहा अन्नात् भवन्ति भूतानि, संकेत कर दिया। अब वो अन्न क्या है? तो कहा त्वामिमा है औषधि विश्वाह तम आपाह अजनयस्त्वंगा। क्रम दे दिया, मने ये सारी औषधियां तुम हो। और वहां नाम ले दिया क्या? सोम। क्या नाम ले दिया? सोम। अब सोम शब्द का अर्थ भगवान शिव का परिचायक भी है, सोम शब्द का अर्थ जो है चंद्रमा का भी है ना। चंद्रमा को भी सोम शब्द से कहते, भगवान शिव को भी सोम कहते, और लता विशेष के रस का नाम भी सोम। यज्ञों में सोम रस निकालना, ये सब चलता। तो अब ये जो है यहां पर सोम नाम दिया, और सोम नाम देकर के संकेत किया कि हे सोम इमाह, ये सब औषधियां जो हैं वो कौन है? कहा तुम हो। इसमें सब में तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी सत्ता के बगैर ये कोई भी औषधि हो सकती नहीं, और औषधि नहीं होगी तो जीव कहां से होगी? अन्नाद भवंत भूतानि। और आगे कह भी दिया, कहा औषधि भी कब होती है? तो वहां पर
2: ओम नमः शिवाय।
0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरा अध्याय का छठा मंत्र है। कहा ये छठा मंत्र है? अग्निर्यत्राभिमच्छते वायुर्यत्राधिरुज्यते सोमो यत्रा अतिरिच्यते तत्र संजायते मनः। अग्निर्यत्र अभिमच्छते वायुर्यत्र अधिविद्यते सोमो यत्र अतिरिच्यते तत्र संजायते मनः। मनः कुत्र संजायते, प्रश्न हुआ। मन कहाँ प्रवृत्त होता है? मन की प्रवृत्ति कहाँ होती है? तो कहते हैं तत्र, वहां पर होता। तत्र माने वहां पर। कहाँ पर? अग्निर्यत्र अभिमच्छते है। यत्र माने जहां पर अग्नि का मंथन होता है। वायुर्यत्र अभिरुध्यते है, जहां वायु रुक जाती है। सोमोयत्र अतिरिच्यते, जहां सोम यत्र अधिच्यते, यहां सोम की अधिकता होती है। सोम माने सोमरस, समझ लेना। वहां पर मन जाना लग जाता है। मतलब क्या है? ये ध्यान की विधि बता रहा है। पहले ध्यान की विधि बताया था, अभी ध्यान कहाँ करना चाहिए ये फल बता रहा है। कहाँ ध्यान करना चाहिए? तो अग्नि, इसका दो अर्थ करेंगे। एक मंत्र के अनुसार अर्थ करेंगे और एक भाष्यकार ऋषि का दूसरा ढंग से अर्थ करेंगे। हाँ तो कल यहां तक हो गया था, कहां तक ख्याल है? अच्छा दूसरा पैराग्राफ है, अग्निर यात्रा अभिमत्य। हाँ ये है, यहां तक हुआ था। अग्निर यात्रा अभिमत्यते इति अत्र अपरा व्याख्या, ये दूसरा व्याख्या करते हैं भाष्यकार। हाँ अपर माने दूसरा। हाँ क्या है कि अग्नि परमात्मा अग्नि यत्र अभिमिच्छते, तो अग्नि को अलग कर दो, तो अग्नि कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा को अग्नि कह दिया तो कहो परमात्मा तो हमारे भीतर रहता, हमारे को जलाता क्यों नहीं? जलाता है, क्या जलाता है? अग्नि रूपी जो परमात्मा है, वो अग्नि रूपी परमात्मा हमारी अविद्या रूपी अज्ञान रूपी लकड़ी को जलाता है। अग्नि को परमात्मा का अग्नि बतलाया, अग्नि का काम क्या है? अग्नि अग्नि अग्नि जथैव भुवनम प्रविष्टः, जैसे भूमंडल के अंदर प्रविष्ट होकर के अग्नि व्याप्त हो गया, पर व्याप्त अग्नि व्यापक अग्नि को सामान्य अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो मासिस से घर्षण करके प्रकट करोगे उसका विशेष अग्नि नाम है। तो विशेष अग्नि तुम्हारा काम करेगा, सामान्य अग्नि नहीं करेगा। समझ गए नहीं? सामान्य अग्नि व्यापक है, सुप्त है, तो सुप्त अग्नि को प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन करना पड़ता है। हमारे अंदर जो परमात्मा है वो सामान्य रूप में है, व्यापक रूप में है। हाँ सामान्य रूप में व्यापक रूप में है, पर वो परमात्मा से हमारा अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, हमारा अज्ञान का नाश नहीं होगा। तो हमारे अज्ञान के नाश करने के लिए विशेष अग्नि चाहिए। विशेष अग्नि माने विशेष रूप में परमात्मा को विशेष रूप में प्रकट करना पड़ेगा, सामान्य परमात्मा से नहीं, ब्रह्म से नहीं, कूटस्थ से नहीं, तदाकार वृत्ति करनी पड़ेगी, ब्रह्माकार वृत्ति करनी पड़ेगी, याद रखना। जब वृत्ति आरोह हुए बिना तुम्हारे अज्ञान का नाश नहीं करेगा। अज्ञान के नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए यहां कहते अग्नि परमात्मा जथई ढंग से समिद्योग्नि भस्मसात कुरुति अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुति तथा, आया कि नहीं? गीता में आया ना, जथई ढंग से समिद्योग्नि जिस प्रकार से समृद्ध अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है, अग्नि के साथ जीता है, याद रखना। अग्नि ऐसे नहीं, काली कराली मनोज अबासा सुलहिताय सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिने विश्व ऋषि देवी लीलायमान इति सप्त जीवा। हाँ ये अग्नि ऐसे नहीं, क्यों? सप्त जीवा वाला अग्नि में जब तुम आहुति डालोगे ना, तब जब वो आहुति को जलाएगा, भस्म करेगा। तो आहुति क्या करेगा? ऐसी आहुति जब प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालोगे, वो आहुति देवी बन करके तुमको मरने के बाद में ले जाएगा उपस्य लोक में। तम आहुतया यही यही तम आहुतया सुवर सरस बसती, ये आहुतियां आपको बुलाते हैं, चलिए चलिए चलिए, आपके लिए आपका जो है ना रूम बुक हो गया है। स्वर्ग में भी रूम बुक होता है, याद रखना। जैसे आप लोग लोनावाला जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं भी जाते हो ना, विदेश में जाओ, देश में जाओ, घर छोड़ करके, तो वहां पहले रूम बुक कराते कि नहीं कराते? तो जाते ही आपको चाबी देते, जाइए आपका फलाना रूम है, चले जाइए। ऐसे स्वर्ग में भी रूम बुक होता है। हाँ जब आप यहां से जाएंगे तो आपकी जो आहुतियां हैं हाँ ये देविया बनकर के आपको स्वागत करके आपको रूम में ले जाएगा। जैसे यहाँ है ना, एक बार मैं वहाँ वो प्रेम कुटीर में कथा करता था, बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले, तो वहाँ घूमने जाता था वो समुद्र के किनारे, तो वहाँ एक ओबेरॉय होटल है, ओबेरॉय होटल वहां से कांस लगाया हुआ था, बाहर से सब दृश्य दिखता था। तो चाय देने आते ना तो बैठे, आप बैठे तो आपको चाय देने के लिए आएगा, ऐसे ऐसे नाश्नस करके आएगा, तो देगा फिर जाएगा नाश्नस करके, तो आपको इतना स्वागत क्यों करता है? आपको जो स्वागत करते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, क्यों करते हैं? समझे कि नहीं? तो जैसे वहां स्वागत के द्वारा आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करने वाली हाँ रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा। इसी प्रकार योग्यता के अनुसार, कर्म के अनुसार देवलोक में भी जो जाते हैं उनके लिए व्यवस्था होती है। कर्म जहां भी होगा कर्म के तारतम्य रहेगा, ये गांठ बांध लेना, समझे कि नहीं। कर्म जहां भी होगा कर्म का तारतम्य के अनुसार व्यवस्था होती है। हमारे आश्रमों में जाओगे, आप लोग जाओगे, जैसे हमें गिरीश भाई जाएगा कहां पर, वृंदावन में जाएगा, पूरमपुरी अगरनंद जी महाराज के आश्रम में, तो उनके लिए फर्स्ट क्लास रूम खुलेगा, पहले गलीचा बिछाया हुआ मिलेगा, गर्म पानी नरम पानी की व्यवस्था होगा, एयर कंडीशन खुल देगा, नुकर चाकर जाकर के बस बैठ गया गिरिजन जी महाराज। और हम जाएंगे तो थर्ड क्लास के कमरा कौन सा है जिसमें पंखा भी नहीं होगा, बिजली भी नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा, संडस भी ऐसा होगा, उसमें देंगे नहीं, क्योंकि तारतम्य है, ऐसा नहीं आपके योग्यता नहीं, जो जो जहां जाते योग्यता के अनुसार। हाँ तो स्वर्ग में भी ऐसा है, देवराज इंद्र जहां रहेगा वहां कुबेर रहेगा, अग्निदेव रहेगा, पवनदेव रहेगा, वरुणदेव रहेगा, बड़े बड़े देवता की व्यवस्था होगी। और जो यहां से कर्म करके जाए वो स्थायी देवता है, याद रखना, तैतरी उपनिषद में आप लोग बोले ना वहां स्थायी देवता है, अजान अजाब देव, वो देव एक देवता स्थायी देवता और एक कर्म के द्वारा कर्मदेव, कर्म करके जो देवता बन करके जाता है तो उसका अलग व्यवस्था होगी, बाहर से आया चले जाएगा जान दो, जाना पड़ेगा। तो आहुतियां बुलाते हैं, यही यही तम आहुत सुवर्ष, आह्वान करके बुला करके मीठी मीठी वाणी के द्वारा बुला करके ले जाएगा, स्थान देगा, बदलेगा। ऐसे अग्नि के सात जिह्वा है, वो सात जिह्वा जब प्रज्वलित होगी, लीलायमान जिह्वा, लीलायमान धक धक धक धक करके ऊपर की तरफ जाएगा, उस समय आहुति डालनी चाहिए। मंद अग्नि में कभी आहुति डालना नहीं चाहिए, वो अग्नि को बुझा देगा। मंद अग्नि में आहुति डालोगे ना वो आहुति अग्नि को बुझा देगा, तो तुमको क्या ले जाएगा? जब स्वयं बुझ गया तो जजमान को क्या ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा। ये लिए अग्नि ऐसे ज्ञान अग्नि है, ज्ञान अग्नि भस्मसात कुरुते तथा, ज्ञान रूपी अग्नि तुम्हारे कर्म को तो जलाता है, अविद्या और अज्ञान, अविद्या के आवरण सब को जला करके तुमको शुद्ध करेगा, मर्थन करेगा। ये बात क्यों बता रहे थे? अग्नि परमात्मा अविद्या तत्कार्येश दाहकत्वात्, तो कहा भाई इनके नाम अग्नि परमात्मा का नाम अग्नि क्यों रखा है? अग्नि इसीलिए रखा, अविद्या और अविद्या के कार्य जो राग द्वेष हर्ष शोक शोक दुख, अथवा अविद्या के कार्य अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि जो पंच क्लेश है, पंच क्लेश को जला करके भस्म कर देता है। अविद्या का कार्य क्या है? अविद्या के बाद अस्मिता आती, राग आता है, द्वेष आता है, अभिनिवेश आता है, ये सब के सब खत्म कर देता है। क्यों? कारण नाशात कार्य नाश। कारण क्या है? अविद्या। तो अविद्या नाश हो गया तो अविद्या का परिवार भी परिवार खत्म कर देगा। तो कारण नाशात कार्य नाश है बात। तो कहते अविद्या, अविद्या का जो कार्य है वो कार्य के दाहक माने जलाने वाला होने के कारण तो अग्नि का नाम परमात्मा रखा। परमात्मा भी यही करते ही। परमात्मा जो है ना, परमात्मा ने परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, याद रखना नाम अनेक है। दाहकत्वात् उक्तम शो, कहा भी है गीता में बतलाया, देखो अहम अज्ञान तम तम नाशयामी आत्मभावस्तु ज्ञान दिवीन भाष्वता। भगवान गीता में बतलाया अहम अज्ञान अदम तम, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला हो तम माने अंधकार है, उस अंधकार को क्या करता हूं? नाश करता हूं। नाशयामी कैसे? तो कहते नाशयामी आत्मभावस्थो, आत्मा में स्थित रह करके, आत्मा में माने शरीर में रह करके, अंतकरण में रह करके। तो कैसे करते हो? तो ज्ञान दीपी न भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक। अभी देखो गीता में बतलाया अपि चेतसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्यमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेतसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्यमः, तू पाप करता है बोला हाँ, तो तू पापी है बोला हाँ। कौन सा नंबर का पापी है? एक नंबर। तो उसने पूछा, भक्त ने पूछा, महाराज पापियों में भी क्या नंबर लगता है क्या? बोले क्यों नहीं, गोहत्या करने वाला पाप, भ्रूण हत्या करने वाला पाप, ब्रह्म हत्या करने वाला पाप, धोखा देने वाला पाप, विश्वासघाती पाप, सबसे बड़ा विश्वासघात पाप बताया। विश्वास प्रतिबन्नेशु ये सभी विश्वासघाती नेजंती नरकम घोरम ताज्यमाना जमान हो गई। तो विश्वास दिलाकर जो विश्वासघात करता है उससे बढ़कर के पाप ही नहीं है। कर सब पापों का नाश होता है पर विश्वासघाती का उद्धार नहीं होता, ऐसा शासन में लिखा है। विश्वास प्रतिबन्नेशु ये सभी विश्वासघाती न ये जानते नरकम घोरम ताज्य माना यमानुग। यमदूतों के द्वारा ताड़ित होकर के चाबुक मार मार करके ले जाते हुए चाबुक मारता है। नरकम घोरम, सामान्य नरक नहीं है, कुछ नरक तो यहां है ना, कुछ नरक हुआ है याद रखना। शास्त्र में लिखा है, पूछा गया महाराज नरक तो हम तो बोलते हैं ना सब स्वर्ग है नरक है सब यहाँ है, बनने के बाद कुछ भी नहीं है, ये धोखा में मत रहना, ये धोखा है जो कहते ना आपको सब यहाँ है वहां नहीं है, ये धोखा है। यहां भी नरक है और वहां भी नरक है, याद रखना। जैसे समझो हम कुछ काम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, फलाना करते हैं, मारते हैं, तो सरकार हमको पकड़ करके जेल में देते हैं कि नहीं? तो यहां का जेल खाना भी तो एक नरक है, जेल भुगते कि नहीं? और जेल खाना में, जेल के कोठियों में भिन्न भिन्न है कि नहीं? एक नंबर कैदी, दो नंबर कैदी, तीन नंबर कैदी, फलाना कैदी, कुछ कैदियों को कितना रखते हैं? पैर में हाथ में जंजीर लगा करके, बेड़ी लगा कर देखा था कि नहीं? देखा कि नहीं देखा? उन्हें देखा तो सिनेमा में, ये टीवी में देखे ही ना, टीवी में देखा था, पैर में, गला में, पैर में, हाथ में बेड़ियां पड़ी हुई है और कुछ खुला मैदान में घूम रहा है, घूमता है कि नहीं? और किसी को जो है ना बेड़ी है ने ऐसे कैदगाना में रखा, कोटेज में बंद करके रखा, जहां मच्छर है, खटमल है, फलाना है, काटता है, नींद नहीं आती है, आधा कच्चा भोजन देता है, ये भी तो नरक है। तो जैसे सरकारी काम को ना करने से, धोखा देने से, चोरी करने से, बेईमानी करने से अनि बात सरकार पकड़ करके कैदखाना में डाल देता है, तो यहां तो है कुछ नरक। परंतु परमात्मा ये जो शास्त्र में लिखता है, जो शास्त्रीय संविधान को नहीं मानते हैं और मनमानी काम करते हैं, सब कुछ यहां हुआ नहीं है, उसके लिए मरने के बाद नरक है। कुछ नरक वहां है, वहां भी कैदखाना का भिन्न भिन्न कैदखाना है। असीपत्र नरक, वैतरणी नरक, कुंभिभाग नरक आदि भयंकर भयंकर नरक है, और छोटा छोटा नरक है। छोटा छोटा नरक भी है माने दुख भोगने का। असीपत्र नरक तलवार के जैसे धार वाला वृक्षों के नीचे ढकल देता है, इधर से उधर चिल्लाता त्राही त्राही त्राही त्राही करता है, पर कोई त्राही नहीं होता है, वहां भोगना ही पड़ता है। कुंभभाग नरक में डाल देता है, कुंभिभाग नरक, वैतरणी नरक, अग्निकुंड नरक, कई किस्म के नरक है, भयंकर भयंकर पापों का नरक है। तो जैसे यहां जेल का नाम है, जेल में डाल देते हैं, किस्म किस्म के दुख भोगाता है नहीं कौन देखते नहीं, ऐसे जेल खाना में रहने वाला जो पुलिस है कैसे मारता है, तो ऐसे वहां भी जेल खाना में रहने वाला जमदूत है, वो मार मार करके कर्म भोगाएगा। अब पुराणों में इसके विषय में प्रसंग आया है, वहां है कैसे मालूम पड़ता है, तो तो क्यों ये पशुओं को मारता है ना, वो पशु भी उसको कभी कभी मार करके आया है। जस्मा स देन स जथा स जथा स जच्च तस्मा स तेन स तथा स तथा स तच्च, इस शास्त्र में लिखा जिसने जहां पर जिसके साथ जैसा व्यवहार किया, उसको उसी जन्म में उसी समय में उसी जगह में जाकर को कर्म का फल भोगना पड़ता है। आनी बात उसी को उसी में ले जाकर के भोगाएगा।

0: है धर्मात्मा है, सत्संग करते हो, सब कुछ करते हो, नाम है, प्रतिष्ठा है, समाज में है, प्रतिष्ठा है, पर यदि कोई गलती हो गई, जरा सा कहीं हो गया तो कलंक लग गया, अपवाद आ गया, तो आपको सीट झुका करके चलना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? सम्मानित व्यक्ति के जीवन में यदि कोई लांछन आ गया है, यदि कृष्ण के जीवन में लांछन आ गया था सामंत मणि चुराने का, एक मणि चुराने का लांछन लगा कि नहीं? अभी भी आप लोग करते हैं ना, भादव के चतुर्दशी के दिन, चतुर्थी के ना चतुर्दशी के दिन, भादव महीना के चंद्रमा को मत देखो, गणेश चतुर्थी के उस दिन चंद्रमा को मत देखो, क्यों कलंक लगेगा? कृष्ण को छोड़ा नहीं, तुमको क्या छोड़ेगा? अगर देख लिया तो दूसरे के घर में पत्थर मारो, ऐसा वो आप शब्द है। तो कलंकित जीवन एक प्रकार का नरक है, बदनाम जीवन कलंकित जीवन, एक जीवन एक एक नरक है, रोगी शरीर ऐसा बताया। 24 घंटा बिछौना में पड़ा रहना, मल मूत्र त्याग करना, दूसरे की वजह रहना, कुछ पता नहीं चलना, रोगी शरीर को भी नरक बताया।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। इन ऑर्डर टू मेक दीज एक्सटेंसिव रिसोर्सेज मोर एक्सेसिबल एंड बेनिफिशियल टू अवर रेडियो लिसनर्स, वी हैव रीऑर्गनाइज्ड अवर प्रोग्राम शेड्यूल। तिरुमुरै म्यूजिक एंड तिरुमुरै डिस्कोर्सेज विल बी ब्रॉडकास्ट ऑन तिरुनिरिय तमिळोसै। Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
2: ஓம் சிவாய நம. நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சிவ கீர்த்தனைகள். இதில் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் பாடல் பித்தம் தெளிய. பாடியிருப்பவர் ஆலத்தூர் சகோதரர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நம.